0: सिमरत वेद पुराण पुकारन पोतिया।
1: पुकारना की है, पुकार जदों को करदा ना उची करदा। बोलते हाँ सहज नाल भी, पर जदों पुकारना है ना पोती पढ़दा ही नहीं, पोती ने पुकारदा, पोथियां दा वास्ता पाउंदा पिया। जेड़े बंदे सिमरतियां नूं उची उची पुकारदे ने, पोथियां नूं उच्चा उच्चा पुकारदे ने, वेदां नूं उच्चा उच्चा पुकारदे ने, सुनाउंदे ने दूसरियां नूं, पर जदों पढ़न तों बाद आप ही गल्लां करदे ने, गल्लां उहनां दीआं बड़ियां उच्चियां होंदियां। जदों पढ़न तों बाद होया कि उड़ारी ते बड़ी उच्ची, गुरु नानक देव जी ने व्याख्या कीती है, कहिंदे ने इल उच्ची ते बड़ी ओडी उच्ची, कमाल कर दित्ती, इन्नी उच्ची तारियां लाउंदी आसमान दे विच, फिरदी फिरदी दह दिशा बल पर्वत बन पर्वत बन राए, जिथे डिठा मृत को इल बैठी यार। बागां ते नहीं उतरी, बाग लंघ आई, समुद्रां तो लंघ आई, पहाड़ां तो लंघ आई, जिथे मुरदार सी उथे आके गिर गई। उड़ारी ते बड़ी उच्ची है, गल्लां ते बहुत उच्चियां, धर्म दियां गल्लां ऐसियां ऐसियां उच्चियां, बंदा हैरान हो जाए। बाद विच उहनां बंदियां दा जीवन वेख्या गया, गल्लां ते करदा सी अजा मल दुनिया नूं हैरान कर दिंदा, चतुर्वेदी खट शास्त्री, गल्लां करदा सी रावण चतुर्वेदी खट शास्त्री। हुण होया कि झूठ नूं सच बनाउणा और धर्म ग्रंथां चों बनाउणा, श्री गुरु ग्रंथ साहिब विचों प्रमाण तुहाडे सामने रखा, वड्डी लै के हक गवाए, वड्डी लै के किसे दा रिश्वत लै के हक गवा देना, जिसका नहीं उहनूं दे दित्ता, जिसका सी उह खाली रह गया, ते जे किसे पुछिया ते कुरान दी आयत पढ़ के सुना दित्ती, जे कोई पुछे तां पढ़ सुनाए। मैं सी एक कथा पढ़ी, तेली ते जुड़ा ए दा झगड़ा, ते ओ केस लग गया काजी कोल। केस की सी, ओ प्लाट से जुलाहे दा, ते तेली कहन लगा बैल दो दिन बन लवा। कहन लगा बन लै, कोई गल नहीं, बैल बन लिया, उन्हें खुरली चुक बनाई, उत्थे कब्जा ही कर गया। वो काजी कोल गया, काजी साहब ये थां मेरा। हुण किसे सियाने ने कहा जे थां तेरा ते एक कम कर, आई वधिया पग कोई है? कहन लगा है। कहन लगा काजी साहब नूं दे आवें। वो दित्ती। कहन लगा जी ध्यान रखियो। कहन लगा वे केस बड़े आउंदे ने, मुकदमे याद नहीं रहिंदा, ते जदों तेरा केस लगे ना अपने पग ते हाथ रख के आके गरीब की पग वल काजी साहब ध्यान रखियो, ते मैनू याद आ जाएगा कि पग दे के गया। हुण गया ते तेली नूं पता लग गया कि पग दे आया, वह बैल ही जाके काजी दे घर बन आया कि बैल ही महाराज तुहाडा। हुण जदों आखे ना गरीब की पग वल ध्यान रखियो, वह कहन लगा पग दा की है, किली नाल टंग छड्डी, बैल नूं ते थां चाहीदा ना, बैल ते किते बन्नना। एक सियाणा कोर सी, कहन लगा तेरी पग नूं बैल खा गया, जा आनंद लै, हुण तेनूं कख नहीं लभना। ये सच जे वड्डी लै के हक गवाए, जे को पुछे तां पढ़ सुनाए। ये पता नहीं रिश्वत कदों दी चली है ते कदों तक चलदी रहेगी। कबीर साहब जी दे वेले भी यह है सी, 6000 साल पुराना चीन दा ग्रंथ, वो कहंदा चोरियां वध गईयां, रिश्वत वध गई। मैं पंक्ति एक सुना दिया कबीर साहब की, वो कहंदे ने डोरी पूरी मापे ना ही बहु विस्ताला लेही, विस्ताला विस्ता वड्डी, पूरी गरीब कश है, गरीब कश है, पूरी डोरी ते मापदे ने, ये वड्डी बड़ी लेंदे ने, रिश्वत लेंदे ने। रहतनामे च लिखे है, वड्डी लैके न्याओ ना करिए, झूठी साख ना कबहू भरिए, झूठी गवाही ना दईए, वड्डी लैके न्या ना करिए, जे को पुछे ता पढ़ सुना। पंक्तियां याद कर लईयां, पढ़ के सुना दित्तियां। पंक्तियां ते धर्म ग्रंथियां याद कर रहनियां ते कला हो जांदियां, कोई मुश्किल नहीं, लेकिन नाम निदान उन्हां दे विच्चों मिले ते अपने हिरदे च वसे, असल काम ते ए है। नाम बिना सब कूड़ गाली ओछियां ओछियां गल्लां। पर मैं देखिया नाम निदान दे गाहक भी बड़े घट ने, सिख ते गाहक चाहीदा ऐसा। एक बेनती करां,
2: ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਉੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅਰਥ ਗਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਤਰਕ ਤਰਕ ਨੂੰ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਯੋਗ ਮਤ ਦੇ ਕੁਛ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਅਰਥ

सारे सिद्ध जोगी कठे होके बाबे नानक जी नू कहंदे, आप जी इथों चले जाओ। मेरे दादा जी कहन लगे, ना बे, इंज असा नहीं जाना। जिन्ना चिर तुहानू सच दा मार्ग नहीं ना दिस जांदा, असी इथों जाना। जोगी कहंदे ने, इह धरती साडी है, ये गोरख मत

नहीं साड़ी है। धरती को नो पुछ लवो के भी है, मेरे बाबा नानक जी मुस्कुराए ते हस के कहंदे ने वे जे धरती बोल रही है ते पुछ लवो। जोगिया ने एक अडंबर रचया होया, एक डूंगा टोआ कुटके ना

आज इस गोरख मते ते सच दा झंडा चलाया, नानक मते दा झंडा चलाया, इस सारी धरती नू सारे प्रेमी नानक मता कह के पार लगे। हां भई ये धरती नानक दी है, जोगियां ने फुलां बख्शाइयां, ई जेड़ा बालका टोए दे विच बिठाया सी ना, जदों का फूस परे मिट्टी।

जिन्हें मेर कीती है ना ओदे गुण गाइए रवाब बजा। मरदाने ने रवाब बजाई, मेरे बाबे नानक ने किसे अलाही सुर दे विच कीर्तन कीता, ते ए मिठी ते मधुर आवाज सुन के सारे जोगी अपनियां झुग्गियां तो बाहर आ गए। देख के हैरान जिस पिपल दे थले बैठे ने ते सुका ये हरिया भरिया किवें हो गया, इनू करुंबला किवें फुट पईआं, धूनी भी पई बलदी ना, असां लकड़ां दित्तियां ते ना आग दित्ती, रात ऐनी तेज अंधेरी बगी मीं भी पिया, असां सारी रात ठंड विच कटी ते इन्हां दी धूनी पई बलदी। फिर की करदे ने जो

सारणहारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी हर एको पुरख समाणा एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चोज बिडाणा तू आपे दाता आपे भुगता जी हाओ तुद बिनवर न जान तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख बखाणा जो सेव है जो सेव है तुद जी जन नानक तिन कुरबाणा हर ध्याव है हर ध्याव है तुद जी से जन जुग मैं सुखवासी से मुकत भय जन हर ध्याया जी तैन तूटी जमकी फासी जिन निरपाओ जिन हर निरपाओ त्याया जी तिनका पाओ सब गवासी जिन सेव्या मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से तन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर

पढ़े हैं बहु स्मृत शास्त्र जी, कर क्रिया खट कर्म करंता, से भगत भले जन नानक जी, जो भाव है मेरे हर भगवंता, तू आद पुरख परंपर करता जी, तुद जेवड़ वरना कोई, तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी, तू ने चल करता सोई, तुद आपे पावे सोई वरत जी, तू आपे करहें सोई, तुद आपे

है का जानोई आस्था महला चौथा। तू करता सजार मैं डांसाई जो तो भावे सोई थीसी जो तू देहे सोई हम पाई राव। सब तेरी तू सबनी त्याया जिसनो कृपा करहे तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मन मुख गवाया तुद आप विछोड़िया आप मिलाया। तू दरियाओ सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे। जी जंत सब तेरा खेल बिजोग मिल बिछड़िया सरजोगी मेल। जिसनो तू जाना है सोई जन जाने हर गुण सद ही आख बखाने। जिन हर सेव्या तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद बिन दूजा वरना कोए। तू कर कर वेखे जाने सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आस्था महला पहला तित सरबरड़ पहले निवासा पानी पावक तनहे किया। पंकज मोह पग नहीं चाले हम देखा तै डूबियले। मन एक न चेत समूढ़ मना हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाऊ। ना हो जति सती नहीं पड़िया मूर्ख मुगदा जन्म पया। प्रणवत नानक तिन की शरणा जिन तू नाही विसरिया। आस्था महला पंजवा पई प्राप्त मानुख देहुरिया गोविंद मिलन की।

शरण परे की राखो शर्मा। पातशाही दसवीं कव्योवाच बेनती चौपई, हमरी करो हाथ दे रक्षा। पूर्ण होए चित की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा। अपना जान करो व्रत पारा, हमरे दुष्ट सब तुम काबो हो। आप हाथ

करे हैं, सब बैरन को आज सिंगरे हैं। पूर्ण होई हमारी आशा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम्हें शाड कोई अवर न त्याऊं, जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सतर हमारे मारी है। आप हाथ दे मुझे उभरे आए, मरण काल का त्रास निवरे आए। हू जो सदा हमारे पछा, सरिया सर जो करे हो रक्षा। राख ले हो मोह राखन हारे, साहेब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो बुरी चल

हर नानक कंठ मजारे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। सोहिलारा गौड़ी जी की महला पहला। प्रसाद जय कर कीर्ता की जय करते गावे विचार। उदित कर गावो सुहिला सिर सृजनहार। तुम गाओ मिल मेरे को का सुहिला हूँ। अर्जुन सुहिला थोड़ा सुख हो रहाओ। नित नित जीअड़े संभालियन देखा करी गुणहार। तेरे दाना किमत ना पवे तिसराते कवन समार। संबत साह लिखिया मिलकर पावो तेल। देह सजना सी सड़िया जो है सहब समेल। कर करे हो पहुंचा सदड़े नत पवन। सदनहारा सिमरिया नानक सिधि अवन। राग आसा महला पहला। छे कार छे गुर छे उपदेश। गुर गुरे कोवे सनेक। बाबा जय कर करते कीर्त होए। सो कार राख बड़ाई तोय राव। विश्व जसें कड़िया पहरा थिती वारी मां। सूरज कुरत नेक नानक करते के देवे। सौराग तनासरी महला पहला। गगन मैथाल राव चंद दीपक बने। तारिका मंडल जनक मोती। धूप माल्या नलो पवन चबरो करे। सगल बंधाई फुलंत ज्योति। कैसी आरती होए पव खंडना तेरी आरती। अनहत शब्द वाजंत तेरी राव। सहस तब नैन नन नैन है तोहे का। सहस मूर्त नन एक दोही। सहस पद बिमल नानेक पद गंध दैन। सहस तब गंध चलत मोही। सब मैं जो ज्योत है सोए। तिसद चानण सब मैं चानण होए। गुर साखी ज्योत प्रगट होए। जो तिस पावै सो आरती होए। हार चरण कबल मकरंद लोभित मनो। अन जनो

0: हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना
1: करो करे तेरा कार्य सब
0: सवारना सब ना गला सुमरत स्वामी सो

काम नहीं है। काम रस जितने पदार्थों का रस है सब काम रस है। ये गल वखरी है, कुछ अखां का काम रस है, कुछ कन्नां का काम रस है, कुछ नास्ता का काम रस है, कुछ जेबा का काम रस है, कुछ खलड़ी का काम रस है। आम एक बहुत बड़ा भुलेखा है कि जो खलड़ी का रस है यही काम रस है, बाकी रस कुछ होर में नहीं। जो भी रस है सब काम रस है। ये गल वखरी है, उस रस नू किधरे कोई अखां दे राही मानदा है। कहिंदे ने पतंगा उसे ही काम रस नू अखां दे राही मानदा है, भौरा उसे ही काम रस नू नासका दे राही मानदा है, हाथी उसे ही काम रस नू खलड़ी दे राही मानदा है, और मछली उसे ही काम रस नू जेबा रसना दे राही मानदी है। ए ते अलग अलग ढंग है, और इसे ही काम रस नू हिरन कन्ना दे राही मानदा है। गंडेड़े दा नाद सुन के मुग्ध हो जांदा है, लीन हो जांदा है, ऐसा लीन हो जांदा है जैसे कोई खलड़ी दी स्पर्शता विच काम रस विच लीन होंदा है। हो बहु उसे ढंग नाल हिरन भी लीन होंदा है। इंद्रियां दा सारे दा सारा रस काम रस है। बदकिस्मती है, ना समझी है कि कुछ लोग सिर्फ एक इंद्रिय नूं ते काम रस कह देणगे ते बाकी दे इंद्रियां नूं कुछ होर रस कह देणगे। नहीं, सारियां इंद्रियां दा रस ही काम रस है, और इस काम रस दी प्राप्ति धन तो बिना नहीं है। चाहिदा अखां दा रस, चाहिदा कन्नां दा रस, चाहिदा रसना दा रस, चाहिदा खलड़ी दा रस, चाहिदा नासका दा रस। सुंदर तो सुंदर, चंगी तो चंगी सुगंधी चाहिए, परफ्यूम चाहिए, धन तो बिना कित्थे। चंगे तो चंगा नाद चाहिए, आवाज चाहिए, धन तो बिना कित्थे। चंगे तो चंगा रूप चाहिए, धन तो बिना कित्थे। काम की पूर्ति धन आश्रित है, और मोक्ष की प्राप्ति धर्म आश्रित है। पर उत्थे प्रश्न खड़ा होवेगा, किवें प्राप्त करिए धर्म नूं, किवें प्राप्त करिए धन नूं। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा है, मेरा जिहड़ा सिख है वो किरत करे, और मेरा जिहड़ा सिख है वो कीर्ति करे। कीर्ति करके धर्म नूं कमावे, किरत करके धन नूं कमावे। जो किरत नहीं करदा, सतगुरु ते कहिंदे सने हराम दी खांदा है। इसका खाना पीना हराम है। किरती ही हलाल दी रोटी खांदा है। किरती दाई सब कुछ हलाल है। और दूर क्यों जाइए, परमात्मा भी किरत कर रहे हैं। सूरज बन के रोशनी बन रहे हैं, हवा बन के भ्रमण कर रहे हैं, पानी बन के बहाव जारी है। चारों पासे देखिए, ओ काम विच जुटे हुए है, वो किरत विच जुटे हुए है। शेख सादी साहब तो इत्थे तक कहिंदे ने, अबरो बादो मा वफलक खुर्शीद दरकारन, तातो नाने बकफ आरी वा बखर गफलत न खुरी। शेख सादी साहब बड़े बाकमाल ढंग नाल कहिंदे ने, मैं देखदा सूरज गर्दिश विच है, समीन गर्दिश विच है, हवा गर्दिश विच है, दरियावां दा पानी गर्दिश विच है, चंद्रमा गर्दिश विच है, ग्रह नक्षत्र गर्दिश विच ने, बदल गर्दिश विच ने, जो सब कुछ चल रहा है, सब कुछ गर्दिश विच है। ऐ मनुख, सब कुछ चल रहा है, फिर तेरे जिस्म विच श्वास पे चल रहे ने, प्राण पे चल रहे ने, नबस पे चल रही है, दिल पे धड़कदा है। तो जब सब कुछ चल रहा है तो तेरे हाथ भी चलने चाहिए, तेरे पैर भी चलने चाहिए। कई मनुख प्राण चलते रहन ये तो मंग करते ने, श्वास चलते रहन ये तो चाहत रखते ने, दिल की धड़कन चलती रहे ये तो उन्हां दी चाहत है, पर पैर चलते रहन हाथ चलते रहन इथों सुस्त हो जाते, इथों काहल हो जाते, इथों आलसी हो जाते। तो होंदा की है, हाथ खाली रह जाते ने ते पैरां नूं टिकण लई चंगी जमीन नहीं मिलती, क्योंकि चले ही नहीं, पैर चले ही नहीं। इसलिए आलसी दी दिलिदरी दी बहुत निंदा है। आलस नूं एक पासे रखो, आलस बहुत वड्डा औगण है। आलसी मनुख
अपना लोक नहीं सवार सकेगा, आलसी मनुख पर लोक नहीं सवार सकेगा। आलस का त्याग लाजमी है। मनुख जिथे खड़ा है उसमें बहुत अगां जा सकता सी। इतने समय इसे जीवन जिथे खड़ा है बचपन जिथे खड़ा है जवानी जिथे खड़ा है बुढ़ेपे इस तू हजारा वाट अगे जा सकता सी। इस तरह हजारा बुलंदियां नू होर उच्चा छू सकता सी। पर आलस ने नहीं जान दिता, आलस ने कुछ कर नहीं दिता। अज दे कम नू कल ते सुटदा रहा और कल ते क्यों सुटदा रहा? आलस दलिद्री आलसी मनुख दा लोक बिगड़ जांदा है, आलसी मनुख दा परलोक बिगड़ जांदा है। तो सिख साहब जी साहब समझाते हैं जो सब कुछ चल रहा है तो तेरे हाथ चलने चाहिए, तेरे पैर चलने चाहिए। स्वास्थ्य धन गुरु नानक देव जी महाराज ने किरत करना सिख लई पहला उपदेश संदेश दिता। जगत की झोली विच एक पहला संदेश पहला उपदेश किरत करना वंड छकना नाम जपना। इसे ही तो सिख धर्म नु खड़ा किया, इसे ही तो गुरमत की बुनियाद आपने रखी। किरत करना वंड छकना नाम जपना। किरत कर, बहुत किरत कर, पर जगत विच कुछ ऐसे भी ने जिन्हां कोल हथ नहीं पैर नहीं किरत नहीं कर सकते। जगत विच कुछ ऐसे भी बच्चे भी ने जिन्हां कोल मां बाप दे हथ पैर नहीं रह गए। यतीम आखिर एक मासूम बच्चा प्यो दे पैरां नाल चलदा है, मां दे हथां नाल खांदा है। इस यतीम बच्चे ने इन समझ लो पैर भी कोई नहीं हथ भी कोई नहीं, तो तू उसके हाथ बन जा, तू उसके लिए पैर बन जा। इसलिए किरत करना वंड खाना, तू तो किरत कर रहे हैं तो ये दस वंड कढ वंड के खा। क्यों? जगत विच बेशतर बहुत सारे ऐसे ने जिन्हां कोल पैर नहीं जिन्हां कोल हाथ नहीं, ना हाथ कम कर दें ना पैर कम कर दें। जगत विच बहुत सारे ऐसे बच्चे यतीम ने मां दे हथां तो वांझे रह गए, फिर दे पैरां तो पिता दे पैरां तो मोहताज रह गए। भाई साहब भाई गुरदास जी कहंदे ने कुछ भी पड़ोसी प्यार करे पर प्यो वर्गा प्यार औलाद में नहीं मिल सकता। भाई गुरदास महान दार्शनिक संत कहंदे ने पिता का प्यार ना पड़ोसी से पाई। तू बन जा किसे लई पैर, पिता दी सेवा निभा। तू बन जा किसे लई मां, मां दी सेवा निभा। किरत करना वंड छकना तू उसार धर्म मंदिर किसे नु आत्मिक शांति मिले। तू दे किसे नु कपड़ा अन्न ढकिया जाए, तू दे किसे नु अन्न दुख किसे दे मिटे। अन्न दान ते महादान जो है मनिया गया। किरत करना वंड छकना इहदे नाल लोक सवरदा है, नाम जपना इहदे नाल परलोक सवरदा है। नाम जपण नाल मनुख जोगी बन जांदा है, किरत करन दे नाल मनुख राजा बन जांदा है। जो आलसी है किरत नहीं करदा राजा होण तो रह जाएगा, और जो नाम नहीं जपदा योगी नहीं बन सकेगा। योगी ते राजे नूं धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने इकट्ठा किया। तदी ते नंद लाल ने बड़े कीमती बोल धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज बारे कहे ने, हक हक अंदेश गुरु गोबिंद सिंह, बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह। आप कहंदे ने मैं दरवेश देखे सन वो बादशाह नहीं सन, मैं बादशाह देखे सन वो दरवेश नहीं सन। रूहे जमीन ते ऐसा एक मनुख मैं देख रहा जो दरवेश भी है बादशाह भी है। ऐसा दरवेश है, ऐसा महान तपेश्वर है कि मैदान जंग विच भी जिसकी समाधि लग जाती है। और कोई दुश्मनों नु पानी पिलाए तो उन्हें मरम की डब्बी भी दे देंदा नहीं, जख्मां ते मरम पट्टी भी कर लिया कर। असी दुश्मनी के जज्बे के तहत नहीं लड़ते। जैसे कोई डॉक्टर जैसे कोई जर्रा नस्त्र लेके चीरा फाड़ करता है और थोड़िया नु कटदा है मवाद कटदा है, तो इस डॉक्टर का शस्त्र चलाना ऑपरेशन करना
मरीज नु कतल करना नहीं है, मारन लई नहीं है। एक शस्त्रां दे चों चाकुआं दे चों डॉक्टर किसे मरीज दी जिंदगी लब रहे है। कातल उसी छुरे दे चों किसे दी मौत लब रहे है। जद संत धनुष बाण चुक लेंदा है, जद कोई योगी त्रिशूल चुक लेंदा है, जद कोई गुरु तलवार चुक लेंदा है, तो दरअसल कौम दी जिंदगी लबण लई, देश दी जिंदगी लबण लई। तो जद कोई जावर जालम तलवार चुक लेंदा है, तो जगत दी मौत लई, जगत नू कबर बनाण लई। इतना प्यार कि मरम दी डब्बी भी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज भाई कन्हैया नू देंदे ने। तदी ते नंद लाल कहंदे ने, रूहे जमीन ते मैं वो पुरुष देख रहा जो दरवेश भी है, जो राजा भी है। राजा होना किरत करण ते खड़ा है, योगी होना कीर्तन करण ते खड़ा है, नाम जपण ते खड़ा है। किरत ते कीर्ति नू यकजा कीता है गुरु नानक ने, किरत ते कीर्ति नू यकजा कीता है धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने। लौकिक जीवन अलग सी, परलौकिक जीवन अलग सी। ए इस तरह से किसे ने एक लत नू परे सुट दिता सी, किसे ने एक बाह नू परे सुट दिता सी, किसे ने एक कन विच रोई पा ली सी, किसे ने एक अख नू बंद कर दिता सी या कढ दिता सी। इस तरह की अधूरी जिंदगी जी गया सी। गुरु नानक ने, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने आख्या, जब पूर्ण जीवन दिता है परिपूर्ण परमात्मा ने, तो फिर पूर्ण जीवन जीवो, अधूरी जिंदगी क्यों जी रहे हो, अधूरा जीवन क्यों बतीत कर रहे हो। दो कन ने तो दोहां दी वरतों करो, तो जब दो शरीर ने थोड़े को एक तन है एक मन है, तो दोहां दी जिंदगी जीवो। तन लई जेड़े सुख लभे गए मन नू उसे ही गलतान कर दिता गया, संसार दे पदार्थां विच मन नू गलतान कर दिता गया, ते होया कि जीवन सारा अंधकारमयी हो गया। क्योंकि पदार्थ ते तन लई सन, मन लई नहीं सी। पदार्थ तन लई ने, मन लई परमात्मा। मन ते उदों प्रसन्न होवेगा। और कहिंदे ने मन टिकदा नहीं, मन टिकदा नहीं, ते पदार्थ मन दी थां नहीं है, ते घर मन दी थां नहीं है। मन दा सिंघासन ते परमात्मा है, मन दा सिंघासन ते ईश्वर है। एक बहुत बहुत सुंदर धार्मिक जगत दी बोध कथा है। एक बादशाह किसी दरवेश की कुटिया विच दरवेश के दर्शन करने लई गया है। देव ने दरवेश अपनी कुटिया विच नहीं सी, उसके सेवक ने बादशाह लई बार दरी बिछाई, पर टुटी हुई दरी, पाटी हुई दरी, थां थां तो टाकियां लगी हुई। बादशाह टहल डा रहा, उस दरी से बैठा नहीं, मुद्दा डा दिता उस सेवक ने। दरवेश का जो सेवक सी, बादशाह ने कहा आप इससे बैठ जाओ। टहल डा रहा बादशाह, बैठिया नहीं। कुटिया के अंदर जो फकीर की चौकी सी, जो फकीर का सिंघासन सी, इस सेवक उसने चुक के लिया है, दरखत दे थले रखे है। बादशाह ने कहा बैठ जाओ, आप बिरा जाओ। लेकिन बादशाह फिर भी टहलदा रहा, बैठिया नहीं। सोची पै गया कि सेवक कि बादशाह टहलदा पे है, बैठदा नहीं। इतने दरवेश आया, बादशाह ने टहलदा हुआ देखा और सामने खड़े सेवक ने देखा। बादशाह ने सजदा भी किया, पर सेवक एकदम बोल पाया, फकीर साईं एक बैठदा ही नहीं, एक टहलदा पे, एक खड़ा है। मैं बैठन लई आपकी चौकी भी दिती, आपकी दरी भी दिती, टाट भी दिता, मुड्डा भी बैठन नू दिता, लेकिन एक बैठदा ही नहीं। इस फकीर ने कहा कि बादशाह दे बैठन लई थां नहीं सी। जिस तरह के सिंघासन से बैठदा है और जिस तरह के सिंघासन का यह आदि है, यह अस्थान उसके लायक नहीं सी, इसलिए यह नहीं बैठा। मन नहीं टिकता, मन नहीं बैठता, इसलिए नहीं बैठता। उसके बैठने लिए जगत विच कोई थान नहीं, कोई पदार्थ, कोई रंग, कोई रूप उस विच मन शरीर ही नहीं बैठ सकता। मन बैठ सकता है परमात्मा दे, मन बैठ सकता है परमात्मा के नाम विच, मन सदैव टिक सकता है ईश्वर दे नाम विच। मन दा सिंघासन है परमात्मा दा नाम,
तन दा सिंघासन है जगत दे पदार्थ तन नु पदार्थ मिल जान सारे दे सारे लोक सवर गया मन नु परमात्मा मिल जाए पर लोक जो है सवर गया और गुरबाणी कहंदी है इक्को समय दोहां नु सवारना इंज ना होवे कि तेरे को लोकल जिंदगी होवे पर लोक दी ना होवे कि परलोकक जीवन तो प्राप्त करें पर तेरे को लोक दा ना होवे तो अधूरा रहेगा। सदियां तो भारत मुखलिस हो गया परलोकक जिंदगी इथे लोकक जिंदगी बिगड़ गई और अनंत काल तो पश्चिम देखदे पया अंदरों कंगाल रह गया। गुरमत ने ये नवी सोच नहीं दिती और आख्या नहीं तू राज विच राजा बन जा योग विच महायोगी बन जा राज में राज जोग में जोगी तप में तपीसल ग्रस्त में भोगी हलत सुख फलित सुख नित सुख सिमरनो नाम गोविंद का सदा लीजे मिटे कमाने पाप चिराने साध संगत मिल मोया दीजे ए लोक सुखिए पर लोक से हेले नानक हर प्रभ आपे मेले।

सार खेम कुशल सहज आनंद वाहिगुरु जी का नाम जो रक्षा करन वाला है, वाहिगुरु जी का नाम जो सुख शांति देन वाला है, वाहिगुरु जी का नाम जो सहज आनंद विच पूर्ण टिकाओ देन वाला है और वाहिगुरु जी का नाम जो सदा आनंद चित करन वाला है, गुरमुखा प्यारियां दी संगत विच जपो ते इस परम आनंद नू प्राप्त कर लवो। खेम कुशल सहज आनंद साध संग भज परम आनंद नरक निवार उधारो जियो। अपने जीव दा उधार कर लवो ता जो नरक गामी ना होवो। गुण गोबिंद अमृत रस पियो, वाहिगुरु दे नाम दा अमृत पियो। नानक अमृत मने माए पाई है गुर प्रसाद। चित चितवो नारायण एक, एक रूप जांके रंग अनेक। अपने चित विच अपने मन विच नारायण दा चिंतन करो जो एक रस है ते अनेका रूपा कारण ओ सारे थाए व्यापक है। गोपाल दमोदर दीन दयाल, जो पालनहारा है, जो प्रित पालक है, जो माया दा स्वामी है, जो दीना बंधु है, गरीबा ते दयालु है, उस वाहिगुरु जिसका नाम दुख भंजन है, जिसकी कृपालता सब जिया ते पूर्ण है, जो दया मेर करन वाला है, उस वाहिगुरु दा नाम जपो। सिमर सिमर नाम बारंबार, स्वास स्वास चौबीसों घंटे दिन और रात, उठदियां बैठदियां हर वेले वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु नाम जपो। भाई रे राम कहो चित लाए, नानक जी का यह आधार। गुरु साहिब फरमाउंदे ने जिया का यही आधार है कि वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु

थे उत्तम श्लोक साध के बचन जिन्ना गुरमुखा ने सतगुरु दा वचन मन के नाम दी कमाई कीती है उना दे वचन मिठे हो गए हन उत्तम हो गए हन। अमलीक लाल ए रतन ए वचन अमोलक हन ते रतना जैसे कीमती हन। सुनत कमावत होत उदार इना गुरमुखा दे वचन सुन के जे नाम दी कमाई कीती जावे वाहिगुरु जी दा नाम जपया जावे ता जीव दा उधार हो जांदा है। आप करे लोका निसार ए गुरमुख प्यारे आप ते नाम जपदे ने दूजे नूं ही जपाउंदे।

रंग इन्हां गुरमुखां दा अपना जीवन ते सफल है। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु नाम हर वेले जपदे हन, स्वास स्वास जपदे ने। इन्हां दी संगत विच जिहड़ा आउंदा है उसका मन भी वाहिगुरु के नाम नाल रंगिया जांदा है। जय जय शब्द अनाहद वाजै, सुन सुन आनंद करे प्रभ गाजै। जय जय शब्द अनाहद वाजै, गुर मंत्र दे सदके जाइए, वाहिगुरु जी का शुक्र करिए। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु बोलिए, वाहिगुरु सुनिए, वाहिगुरु जी का दर्शन पाउण दी चाओ मन विच रखिए। जिस वाहिगुरु ने कृपा करके शब्द अमृत बख्शिया है उन्हां तो सदके जाइए, जिन्हां दी कृपा नाल वाहिगुरु जी दी अनाहत बाणी सुन दी है। मन जिस बाणी नूं सुन के शीवा हुंदा है और मन अपना आप खो देंदा है। मन दी मत गिरदी है ते गुरां दी मत आउंदी है। गुरां दी मत जदों आउंदी है ते मन आत्म स्वरूप विच स्थित होके आत्म आनंद मानन लग पैंदा है। इउं मन दा मरना हो जांदा है जीवदियां ही ते वाहिगुरु जी दा नाम प्राप्त हो जांदा है। कबीर कहंदे ने जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूर्ण परम आनंद। वाहिगुरु नाम तो सदके जाइए, जिन्हां दे जपण नाल वाहिगुरु जी दी वाणी सुनी गई, वाहिगुरु दी वाणी सुन के मन मुक गया, मन दी मत गिर गई, असी गुरु मत वाले हो गए ते गुरां दे स्वरूप आत्म स्वरूप स्थित होके सहज आनंद विच लीनता हासिल करके परम आनंद नूं मानन लग पे।

प्रभु उस्तद करो संत मीत। गुरु साहिब फरमाउंदे ने ऐ मेरे प्यारे मित्रो, गुरु के सिखो वाहिगुरु जी दा नाम जपो। सावधान एकाग्र चित, माया वलो सावधान होके ते सुरत नूं शब्द विच ला के एकाग्र चित होके वाहिगुरु जी दा नाम जपो, तां जो मन डोलन तो रहित हो जावे। सुखमणि सहज गोबिंद गुण नाम, वाहिगुरु दा नाम ही सुखां दी मणि है, सुख देण वाला है। मन नूं तिन्ना गुणा विचों रहित करके सहज पद विच टिकाउण वाला है।

सुखमणि सुख वाहिगुरु का नाम है और मन जदों अडोल हुंदा है सहज विच टिकदा है उदों ही वाहिगुरु नाम सुखदाई हुंदा है कि उसके मन विच वसदा है जिसके मन विच वाहिगुरु की मेहर हुंदी है जिसके मन विच वाहिगुरु का नाम वस जांदा है उनू नाम की दौलत प्राप्त हो जांदी है। सर्व इच्छा ताकी पूरन होए प्रदान पुरख परगुट सब लोए। सारियां इच्छा उस गुरसिख दियां भगती करन वाले दियां पूर्ण हो जांदियां ने ते ओ सारी थाई वाहिगुरु नाम दे कारण वड्डा हो जांदा है प्रगट हो जांदा है।

निदान जपै मन कोए। ए वाहिगुरु नाम दी दौलत जड़ा नाम जपदा है उसनु ही प्राप्त हुंदी है। सब युग में ता की गत होए, किसे भी युग में जिस वाहिगुरु दा नाम जपिया जिस प्राणी ने उसकी गति हो गई है, मोक्ष पद मिल गया है। गुण गोबिंद नाम तुन बाणी, वाहिगुरु दा नाम ते वाहिगुरु दी बाणी दी तुन उन्हां गुरमुखां नूं प्राप्त होई है। सिमरत शास्त्र वेद विखाणी, सिमरतियां शास्त्रां ते वेद भी जिस नाम दी महिमा गाउंदे ने ओ नाम दी महिमा उन्हां गुरमुखां नूं प्राप्त होई है। सगल मतांत केवल हर नाम, सगलिया मतां विच जो वाहिगुरु जी का नाम ही उत्तम है उस नाम नू उन्हां गुरमुखा ने भगती करके प्राप्त कीता है। गोविंद भगत कै मन विश्राम, इहा जिहा वाहिगुरु जी का नाम जो सब तो उत्तम है ओ भगता दे मन विच हुंदा है ते भगती करन वालियां नू ओ प्राप्त हो जांदा है। कोट अपराध साध संग मिटै, ऐसा जे नाम जपन वाले गुरमुख प्यारे हो जांदे ने ते उना दी संगत विच कोई पापी भी आ जावे तो ओ पाप मुक्त हो जांदा है। संत कृपा ते जम ते छुटै, जमा दी मार नहीं पैंदी जो सतगुरु दी शरण विच रह के वाहिगुरु जी दा नाम जपदा है। जाके मस्तक कर्म प्रभ पाए, जिन्हां दे भागां विच वाहिगुरु जी ने दया मेहर कीती है, जिन्हां दे भागां विच सतगुरां ने लिख दिता है वाहिगुरु जी दा नाम, उही गुरु के प्यारे सतगुरां दी मेहर नाल साध संगत विच आउंदे ने ते नाम दे दौलत नूं प्राप्त कर

सुख माने, जिस मन बसे सुने लाए प्रीत, जिस ते वाहिगुरु मेहर कन, मन विच वाहिगुरु दे दर्शना दी प्रीत उपजे, वाहिगुरु नाम जपे ते वाहिगुरु जी दा दर्शन पा लवे, तिस जन आवै हर प्रभ चीत, उस दे चित विच वाहिगुरु जी दा नाम वस जांदा है। जन्म मरण ताका दुख निवारे, वाहिगुरु जी दे नाम दे कारण ओ जन्म मरण तो रहित हो जांदे हन। दुलब दे तत्काल उधारे, ए अमोलक जन्म दा उधार हो जांदा है। जीव ते वाहिगुरु जी दीआं बख्शिशां हो जांदियां ने, ते राम नाम उरमे गयो जाके सामने कोए, जे सिमरत संकट मिटे दर्श सुहारो होए। निर्मल सोबा अमृत तां की बाणी, वाहिगुरु जी दे नाम जपन वालियां दी सोबा उच्ची निर्मल ते उना दी बाणी अमृत जैसी मिठी हो जांदी है। एक नाम मन माहे समाणी, जदों वाहिगुरु जी दा नाम मन विच समा जांदा है, प्रगट हो जांदा है। दुख रोग बिन सह पै परम, तन दा दुख मन दा रोग ते मन दा अज्ञानता कारण जो पै और परम है ओ सब दूर हो जांदे हन। साध नाम निर्मल तां की करम, जिस मन विच वाहिगुरु जी दा नाम वस जांदा है ओ गुरमुख गुरसिखड़ा हो जांदा है ते उस दी रहनी निर्मल हो जांदी है। सब ते उच्चता की शोभा बनी, वाहिगुरु जी आप ही उच्चे ने, आप ही शोभा दे मालिक ने। वाहिगुरु नाम जिस विच प्रगट हो जांदा ओ जीव भी वाहिगुरु जैसा ही स्वायमान हो जांदा है। नानक ए गुण नाम सुख मणि, सतगुरु जी फरमाउंदे ने सुखां दा मणि जो वाहिगुरु दा नाम है, ए जिस जन दे मन विच आके टिक जांदा उस दीवी उच्च करने वाला ते सुभायमान हो जांदा। वाहिगुरु जी दा नाम जो है एही सुखां दी मणि है, सुखां दी मणि वाहिगुरु जी दा नाम है ते ए भगतां दे मन विच ही वसदा है। इसलिए भगती करो, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु नाम जपो, वाहिगुरु दा नाम ही सुखां दी मणि है, सारे सुख देन वाला है। जिन्हां प्यारियां ने प्रेम नाल वाहिगुरु जी दा नाम जपिया है उना दा मन ते तन सुखी हो गया है। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, सुखमणि सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना के मन विश्राम। सुखां दी मणि वाहिगुरु जी दा नाम है, भगतां दे हिरदे विच वसदा है। भगती करन वाले नूं इस सुख दी प्राप्ति हो जांदी है जदों वाहिगुरु जी दा नाम मन विच प्रगट हो जावे।

ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ। ਹਰੀ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਮੇਰਾ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲਾ ਕਰ, ਮੇਰਾ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲਾ ਕਰ। ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਨੂੰ ਧਨ ਬਣਾ, ਮੇਰੇ ਪਰਲੋਕ ਨੂੰ ਅਗਮ ਬਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਮੂਹ ਜਗਤ ਸਮੂਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੀਵਿਆ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹਿਆ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨੀਆਂ, ਇਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਉਦਮ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸੁੱਕ ਗਈਆਂ, ਕੁਮਲਾ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਮਲਾਉਂਦਿਆਂ ਫੁੱਲ ਕੁਮਲਾ ਗਏ। ਇੱਕ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਲਸ਼ ਜੋ ਲੱਗੇ ਸਨ ਗੁੰਬਤਾਂ ਦੇ, ਫਲਕ ਬੋਸ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦੀ ਚਾਹਤ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਇਹ ਕਲਸ਼ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੀ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਬੁਨਿਆਦ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਰਖਤ ਨੇ ਗਗਨ ਨੂੰ ਚੁੰਮਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪਾਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਮੰਦਰ ਨੇ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨੀਂਹ ਪਾਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਐਸਾ ਮੰਦਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਤਾਲ ਦੀ ਵੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਲਸ਼ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਲਗਨ ਐਸੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਗਾਹੋਂ ਓਹਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨੀਮ ਨੂੰ। ਨੀਮ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ, ਨੀਮ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਐਸੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਲਸ਼ ਧਰਾਤਲ ਹੋਏ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਗਿਰੇ। ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੋਂ ਲੰਗੜਾ, ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੋਂ ਅੰਧਾ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਲੰਗੜਾ ਜੀਵਨ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਹਿਰਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਭੋਜਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਫਿਲਟਰ ਸੁਧਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਤਲਾਬਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਉੱਦਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਉਸਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੰਧਾਂ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਲੇਪਾ ਪੋਚਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮਕਾਨ, ਇਹ ਛੱਤਾਂ, ਜੋ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੌਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੂਫਾਨ ਆਉਣ ਤੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਲੋਕਿਕ ਜੀਵਨ ਲੰਗੜਾ ਜੀਵਨ ਸੀ, ਲੰਗੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ। ਪਸ਼ਚਿਮ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੰਧਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚੱਲਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਤਿੱਖਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲੰਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅੰਧਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਅੰਧਕਤਕੀ ਕਰਕੇ ਟਕਰਾਅ ਬੜਾ, ਇਸੇ ਅੰਧੇਪਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ। ਅਖਰੰਧਾ ਮਨੁੱਖ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ? ਔਰ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਗਿਰੇਗਾ ਵੀ ਸਹੀ, ਚੋਟ ਵੀ ਖਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਅੰਧਾ, ਇੱਕ ਲੰਗੜਾ। ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਜਗਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਧਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਲੰਗੜਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਦੌੜ ਗਏ, ਪਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨਿਕਲਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ। ਇੱਕ ਦੇ ਪੈਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਣ? ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਜੋ ਲੰਗੜਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੈਰ ਨਾਕਾਰਾ, ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਉਸਨੇ ਅੰਧੇ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਸੀਧ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ
ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਚਲੀਏ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਅਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰਸਤਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਚੱਲ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ, ਤਾਂ ਕਿ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਏ, ਇਸ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਬਚੀਏ। ਐਸਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਸ਼ਚਿਮ ਅੰਧਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲੰਗੜੇ ਤੇ ਅੰਧੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਬੋਝ ਫਿਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਲੰਗੜਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਅੰਧਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਚੱਲ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆਈ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ, ਰਾਜੇ ਬਣੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾੜ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੂਰਜ ਕਦੀ ਗਰੂਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਚੱਲਣ ਦੀ ਜਾਚ, ਚੱਲਣ ਦੀ ਜਾਚ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਨ ਗਿਆਨ ਸਾਹਿਤ ਯੋਗਾ ਅਭਿਆਸ ਪ੍ਰਾਣਾਯਮ ਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਜੋ ਰਾਜਾ ਸੀ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਜੋ ਯੋਗੀ ਸੀ ਯੋਗੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਐਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਰਾਜ ਖੜਾ ਹੈ ਧਨ ਤੇ, ਰਾਜ ਖੜਾ ਹੈ ਸੰਪਤਾ ਤੇ, ਰਾਜ ਖੜਾ ਹੈ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੇ, ਯੋਗ ਖੜਾ ਹੈ ਧਰਮ ਤੇ, ਯੋਗ ਖੜਾ ਹੈ ਮੋਕਸ਼ ਤੇ। ਜਿਸਦੇ ਕੋਲ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਯੋਗੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ, ਕਾਮ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਖਰ ਦਾ ਧਨ ਅੱਜ ਪੱਛਮ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਧਨ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਪੱਛਮ ਅਤਿਅੰਤ ਕਾਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤਿਅੰਤ ਕਾਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਸਨਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਧਨ ਮੌਜੂਦ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼, ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼, ਔਰ ਅੰਦਰੀਨੀ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਮਾਲਾਮਾਲ ਇਹ ਮਹਾਂਯੋਗੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੋਕਸ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਧਰਮ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਰਸ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਬਹੁਤ ਤਬਕਾ ਅੱਜ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ ਤੇ ਪੱਛਮ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਔਰ ਲੱਗਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਤ ਵੀ ਸਵਾਰ, ਪਲਤ ਵੀ ਸਵਾਰ, ਲੋਕ ਵੀ ਸਵਾਰ, ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਸਵਾਰ, ਇਸ ਜਹਾਨ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰ, ਉਸ ਜਹਾਨ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰ। ਜਦ ਤੈਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਦੋ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਦੋ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਨ ਦੋ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਦੋ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪੈਰ ਦੋ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਤਰ ਸਾਰੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਵੀ ਦੋ ਬਣਾ ਲਏ, ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ ਸੁਰਗੁਣ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕੇਗਾ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੇਂਗਾ ਅਧੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਆਖੇ ਬਸ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੈਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਅੱਖ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਕੌੜਾ ਬਚਨ ਲੇਕਿਨ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਕਾਣਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਤਲ ਤੋਂ ਅਧੂਰਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਅਧੂਰਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਥ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਧੂਰਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੈਰ ਹੈ, ਇਹ ਅਧੂਰਾਪਨ ਉਸਨੂੰ ਜੀਵਨ ਭਰ ਖਟਕਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਅਟਕਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਖਾਂ ਦੋ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਨ ਦੋ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪੈਰ ਦੋ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਦੋ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦ ਲੋਕ ਦੋ ਨੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਲੋਕ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤਲ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਤੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤਲ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਤੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤਲ ਤੇ ਐਸਾ ਜੀ ਜੈਸੇ ਕਿ ਰਾਜਾ, ਤੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤਲ ਤੇ ਐਸਾ ਜੀ ਜੈਸੇ ਕਿ ਯੋਗੀ। ਰਾਜ ਯੋਗੀ, ਰਾਜ ਮੇ ਰਾਜਾ, ਯੋਗ ਮੇ ਯੋਗੀ,
तप में तपेसर ग्रस्त में भोगी। धन गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी महान बाणी। आपके मन परमात्मा ही राजयोगी है। ये शब्द परमात्मा बारे गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी ने राज में राज, राजन में तू राजा कही है, तू राजा देखो महाराजा है, राजन के राजा महाराजन के महाराज गुरु गोविंद सिंह जी महाराज फरमान पे कर देने। भगत कबीर भी कहते ने को हर समान नहीं राजा, ए भूपत सब देश राज चार के झूठे करते दे राजा। राजा रज गया त्रिपद, बहुत कुछ है बहुत कुछ है। राजा होना परमात्मा दे एक स्वभाव है, उसका एक गुण है, उसकी एक होंद है, पर गजब की गल है। और जर्रे जर्रे नाल जुड़े हुआ है, अपनी सारी कायनात नाल जुड़े हुआ है, अपनी सारी प्रकृति नाल जुड़े हुआ है। रेत के जरिया विच ओ, सूरज दियां किरणां विच ओ, बरखा दियां बूंदां विच ओ, सागर दियां लहरां विच ओ, फुल्लां विच ओ, जड़ां विच ओ, बनस्पति विच ओ, पशुआं विच ओ, पंखियां विच ओ, और समुची कायनात मनुखां विच ओ, खंडा ब्रह्मंडा ग्रह नक्षत्रां विच ओ, सूरज चंद तारियां विच ओ, उते जुड़े हुआ है, उते महाजोगी है, किसी तो भी टूटे होया नहीं। जोगी जो जुड़ गया, राजा जो रज गया, राज योगी। लोक दा सारा रजेवा धन दे आसरे ते खड़ा है। सोने वस्त्र चाहिए ने, चंगा भोजन चाहिए, चंगा मकान चाहिए, चंगी पैरों दी जुत्ती चाहिए, सुंदर असवारी चाहिए, धन तो बिना कित्थे। पर मन विच एक खेड़ा चाहिदा है, खुशी चाहिए, आनंद चाहिदा है, सुकून चाहिदा है, प्रकाश चाहिदा है, तो धर्म तो बिना कित्थे। किसी भी संस्कार का बंधन नहीं चाहिदा, किसी भी कर्म का बंधन नहीं चाहिदा, किसी भी अवगुणा का बंधन नहीं चाहिदा, तो धर्म तो बिना कित्थे। धर्म तो बिना मोक्ष नहीं, धन तो बिना काम नहीं। काम रस जितने पदार्थों का रस है सब काम रस है, एक गल वखरी है। कुछ अखां का काम रस है, कुछ कन्नां का काम रस है, कुछ नाश्ता का काम रस है, कुछ जेबा का काम रस है, कुछ खलड़ी का काम रस है। आम एक बहुत बड़ा भुलेखा है कि जो खलड़ी का रस है यही काम रस है, बाकी रस कुछ होर में नहीं। जो भी रस है सब काम रस है, एक गल वखरी है। उस रस नो किधरे कोई अखां दे राही मानदा है। कहंदे ने पतंगा उसे ही काम रस नो अखां दे राही मानदा है, भौरा उसे ही काम रस नो नासका दे राही मानदा है, हाथी उसे ही काम रस नो खलड़ी दे राही मानदा है, और मछली उसे ही काम रस नो जेबा रसना दे राही मानदी है। ए ते अलग अलग ढंग है, और इसे ही काम रस नु हिरन कन्ना दे राही मानदा है, गंडेड़े दा नाद सुन के मुगध हो जांदा है, लीन हो जांदा है, ऐसा लीन हो जांदा है जैसे कोई खलड़ी दी स्पर्शता विच काम रस विच लीन होंदा है। हू बहु उसे ढंग नाल हिरन भी लीन होंदा है। इंद्रियां दा सारे दा सारा रस काम रस है। बदकिस्मती है, ना समझिए कि कुछ लोग सिर्फ एक इंद्रिय नूं ते काम रस कह देंगे तो बाकी दे इंद्रिया नूं कुछ होर रस कह देंगे। नहीं, सारिया इंद्रियां दा रस ही काम रस है, और इस काम रस की प्राप्ति धन तो बिना नहीं। चाहिदा अखां दा रस, चाहिदा कन्नां दा रस, चाहिदा रसना दा रस, चाहिदा खलड़ी दा रस, चाहिदा नासका दा रस। सुंदर तो सुंदर, चंगी तो चंगी सुगंधी चाहिए, परफ्यूम चाहिदा, धन तो बिना कित्थे। चंगे तो चंगा नाद चाहिए, आवाज चाहिए, धन तो बिना कित्थे। चंगे तो चंगा रूप चाहिए, धन तो बिना कित्थे। काम की पूर्ति धन आश्रित है, और मोक्ष की प्राप्ति धर्म आश्रित है। पर इत्थे प्रश्न खड़ा होवेगा किवें प्राप्त करिए धर्म नो, किवें प्राप्त करिए धन नो। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा है मेरा जिहड़ा सिख है वो किरत करे, और मेरा जड़ा सिख है वो कीर्ति करे। कीर्ति करके धर्म नू कमावे, किरत करके धन नू कमावे। जो किरत नहीं करदा
सतगुरु ते कहंदे सने हराम भी खांदा है। इसका खाना पीना हराम है। किरती ही हलाल दी रोटी खांदा है। किरती दाई सब कुछ हलाल है। और दूर क्यों जाइए, परमात्मा भी किरत कर रहे है। सूरज बन के रोशनी वंड रहे है, हवा बन के भ्रमण कर रहे है, पानी बन के बहाव जारी है। चारों पासे देखिए ओ कम विच जुटे होया है, ओ किरत विच जुटे होया है। शिक्षादी साहब तो इत्थे तक कहंदे ने अबरो बादो मां वा फलक खुर्चीद दरकारन तातो नाने बकफ आरी वा बख गफलत न खुरी। शिक्षादी साहब बड़े बाकमाल ढंग नाल कहंदे ने मैं देखदा सूरज गर्दिश विच है, जमीन गर्दिश विच है, हवा गर्दिश विच है, दरियावां दा पानी गर्दिश विच है, चंद्रमा गर्दिश विच है, ग्रह नक्षत्र गर्दिश विच ने, बदल गर्दिश विच ने, जो सब कुछ चल रहा है, सब कुछ गर्दिश विच है। ऐ मनुख सब कुछ चल रहा है, फिर तेरे जिस्म विच श्वास पे चल रहे ने, प्राण पे चल रहे ने, नबज पे चल रही है, दिल पे धड़कदा है। तो जब सब कुछ चल रहा है तो तेरे हाथ भी चलने चाहिए, तेरे पैर भी चलने चाहिए। कई मनुख प्राण चलते रहन ये तो मंग करते ने, श्वास चलते रहन ये तो चाहत रखते ने, दिल की धड़कन चलती रहे ये तो उन्हां दी चाहत है, पर पैर चलते रहन हाथ चलते रहन इतों सुस्त हो जाते, इतों काहल हो जाते, इतों आलसी हो जाते। तो होंदा की है, हाथ खाली रह जाते ने ते पैरां नूं टिकण लई चंगी जमीन नहीं मिलती, क्योंकि चले ही नहीं, पैर चले ही नहीं। इसलिए आलसी दी दलिद्री दी बहुत निंदा है। आलस नूं एक पासे रखो, आलस बहुत वड्डा औगण है। आलसी मनुख अपना लोक नहीं सवार सकेगा, आलसी मनुख पर लोक नहीं सवार सकेगा। आलस दा त्याग लाजमी है। मनुख जिथे खड़ा है इस तो बहुत अगां जा सकता सी, इतने ही समय विच, इसे जीवन विच, कि जिथे खड़ा है बचपन विच, ते जिथे खड़ा है जवानी विच, ते जिथे खड़ा है बुढ़ेपे विच, इस तो हजारां वाट अगे जा सकता सी, इस तो हजारां बुलंदियां नूं होर उच्चा छू सकता सी। पर आलस ने नहीं जान दिता, आलस ने कुछ कर नहीं दिता। अज दे कम नूं कल ते सुटदा रहा, और कल ते क्यों सुटदा रहा है? आलस दलिद्री आलसी मनुख दा लोक बिगड़ जांदा है, आलसी मनुख दा परलोक बिगड़ जांदा है। तो सिख साधी साहब समझांदे ने जे सब कुछ चल रहा है तो तेरे हाथ चलने चाहिए ने, तेरे पैर चलने चाहिए ने। इस वास्ते धन गुरु नानक देव जी महाराज ने किरत करना सिख लई पहला उपदेश संदेश दिता। जगत की झोली विच ये पहला संदेश, पहला उपदेश, किरत करना, वंड छकना, नाम जपना। इसते ही तो सिख धर्म नु खड़ा किया, इसते ही तो गुरमत की बुनियाद आपने रखी। किरत करना, वंड छकना, नाम जपना। किरत कर, बहुत किरत कर, पर जगत विच कुछ ऐसे भी ने जिन्हां कोल हथ नहीं, पैर नहीं, किरत नहीं कर सकते। जगत विच कुछ ऐसे भी बच्चे भी ने जिन्हां कोल मां बाप दे हथ पैर नहीं रह गए। यकीन आखिर एक मासूम बच्चा प्यो दे पैरां नाल चलदा है, मां दे हत्थां नाल खांदा है। इस यतीम बच्चे ने इन समझ लो पैर भी कोई नहीं, हथ भी कोई नहीं, तो तू उसे हथ बन जा, तू उसके लिए पैर बन जा। इसलिए किरत करना वंड खाना, तो किरत कर रहे हैं इहदे च दसवंध कद्द वंड के खा। क्यों? जगत विच बेशतर बहुत सारे ऐसे ने जिन्हां कोल पैर नहीं, जिन्हां कोल हथ नहीं, ना हथ कम कर दें ना पैर कम कर दें। जगत विच बहुत सारे ऐसे बच्चे यतीम ने मां दे हथां तो वांझे रह गए, फिर दे पैरां तो, पिता दे पैरां तो मोहताज रह गए। भाई साहब भाई गुरदास जी कहंदे ने कुछ भी पड़ोसी प्यार करे
पर प्यो वर्गा प्यार औलाद नु नहीं मिल सकता। भाई गुरदास महान दार्शनिक संत कहंदे ने पिता का प्यार ना पड़ोसी से पाई। तू बन गया किसे लई पैर पिता दी सेवा निभा। तू बन गया किसे लई मां मां दी सेवा निभा। किरत करना वंड सकना तू उसार धर्म मंदिर किसे नु आत्मिक शांति मिले। तू दे किसे नु कपड़ा तन ढकिया जाए। तू दे किसे नु अन्न दुख किसे दे मिटे। अन्न दान ते महादान जो है मनिया गया। किरत करना वंड सकना एदे नाल लोक सवरदा है। नाम जपना एदे नाल परलोक सवरदा है। नाम जपन नाल मनुख जोगी बन जांदा है। किरत करन दे नाल मनुख राजा बन जांदा है। जो आलसी है किरत नहीं करदा राजा होण तो रह जाएगा। और जो नाम नहीं जपदा योगी नहीं बन सकेगा। योगी ते राजे नो धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने इकट्ठा किया। तदे ते नंद लाल ने बड़े कीमती बोल धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज बारे कहे ने हक हक अंदेश गुरु गोबिंद सिंह बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह। आप कहंदे ने मैं दरवेश देखे सन तो बादशाह नहीं सन। मैं बादशाह देखे सन वो दरवेश नहीं सन। रूहे जमीन ते ऐसा एक मनुख मैं देख रहा जो दरवेश भी है बादशाह भी है। ऐसा दरवेश है ऐसा महान तपेश्वर है कि मैदान जंग दे चीज की समाधि लग जाती है। और कोई दुश्मनों नू पानी पिलाए तो उन्हू मरम की डब्बी भी दे देंदा नहीं जख्मां ते मरम पट्टी भी कर लिया कर। असी दुश्मनी के जज्बे के तहत नहीं लड़ते। जैसे कोई डॉक्टर जैसे कोई जर्रा नस्तर लेके चीरा फाड़ करता है और थोड़िया नू कटदा है मवाद कटदा है। उस डॉक्टर का शस्त्र चलाना ऑपरेशन करना मरीज नू कतल करना नहीं है मारन लई नहीं है। एक शस्त्रां विचों चाकुआं विचों डॉक्टर किसी मरीज की जिंदगी लभ रहा है। कातल उसी छुरे विचों किसी की मौत लभ रहा है। जब संत धनुषबाण चुक लैंदा है जब कोई योगी त्रिशूल चुक लैंदा है जब कोई गुरु तलवार चुक लैंदा है तो दरअसल कौम की जिंदगी लभण लई देश की जिंदगी लभण लई कि जब कोई जावर जालम तलवार चुक लैंदा है तो जगत की मौत लई जगत नू कबर बनाउण लई। इतना प्यार कि मरम की डब्बी भी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज भाई कन्हैये नू देंदे ने। तभी तो नंद लाल कहंदे ने रूहे जमीन ते मैं वो पुरुष देख रहा जो दरवेश भी है जो राजा भी है। राजा होना किरत करन ते खड़ा है योगी होना कीर्तन करन ते खड़ा है नाम जपन ते खड़ा है। किरत ते कीर्ति नू यकजा कीता है गुरु नानक ने। किरत ते कीर्ति नू यकजा कीता है धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने। लौकिक जीवन अलग सी परलौकिक जीवन अलग सी। इस तरह से किसी ने एक लत नू परे सुट दिता सी किसी ने एक बाह नू परे सुट दिता सी किसी ने एक कन्न विच रोई पा ली सी किसी ने एक अख नू बंद कर दिता सी या कढ दिता सी। इस तरह की अधूरी जिंदगी जी रहा सी। गुरु नानक ने गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने आख्या जब पूर्ण जीवन दिता है परिपूर्ण परमात्मा ने तो फिर पूर्ण जीवन जी रहे अधूरी जिंदगी क्यों जी रहे हो अधूरा जीवन क्यों बतीत कर रहे हो। दो कन्न ने तो दोहां दी वरतों करो। जब दो शरीर ने थोड़े को तन है एक मन है तो दोहां दी जिंदगी जीव। तन लई जेड़े सुख लभे गए मन नू उसे ही गलतान कर दिता गया। संसार दे पदार्थां विच मन नू गलतान कर दिता गया ते होया कि जीवन सारा अंधकारमयी हो गया। क्योंकि पदार्थ ते तन लई सन मन लई नहीं सी। पदार्थ तन लई ने मन लई परमात्मा मन ते उदों प्रसन्न होवेगा। और कहंदे ने मन टिकदा नहीं मन टिकदा नहीं। ये पदार्थ मन दी थां नहीं है ये घर मन दी थां नहीं है। मन दा सिंघासन ते परमात्मा है मन दा सिंघासन ते ईश्वर है। एक बहुत बहुत सुंदर धार्मिक जगत दी बोध कथा है। एक बादशाह किसी दरवेश दी कुटिया विच दरवेश दे दर्शन करन लई गया है। देव ने दरवेश अपनी कुटिया विच नहीं सी उसके सेवक ने
बादशाह लई बार दरी बिछाई पर टुटी हुई दरी पाटी हुई दरी थां थां तो टाकियां लगी हुई। बादशाह टहल डा रहा उस दरी ते बैठा नहीं मुड्ढा डा दिता। उस सेवक ने दरवेश का जो सेवक सी बादशाह नु कहा आप इस ते बैठ जाओ। टहल डा रहा बादशाह बैठिया नहीं। कुटिया के अंदर जो फकीर की चौकी सी जो फकीर का सिंघासन सी ते सेवक उसनों चुक के लिया दरखत दे थले रखे ते बादशाह ने कहा बैठ जाओ आप बिरा जाओ। लेकिन बादशाह फिर भी टहल डा रहा बैठे नहीं। सोची पै गया कि सेवक कि बादशाह टहल डा पे है बैठदा नहीं। इतने दरवेश आया बादशाह ने टहलदा होया देखा और सामने खड़े सेवक ने देखा। बादशाह ने सजदा भी किया और सेवक एकदम बोल पाया फकीर साईं इत बैठदा ही नहीं इत टहलदा पे कि खड़ा है। मैं बैठने लई आपकी चौकी भी दिती आपकी दरी भी दिती टाट भी दिता मुड्ढा भी बैठने नूं दिता लेकिन इत बैठदा ही नहीं। इस फकीर ने कहा कि बादशाह दे बैठने लई थां नहीं सी। ये जिस तरह के सिंघासन ते बैठदा है और जिस तरह के सिंघासन का यह आदि है यह अस्थान उसके लायक नहीं सी इसलिए यह नहीं बैठा। मन नहीं टिकता मन नहीं बैठता इसलिए नहीं बैठता। उसके बैठने लई जगत विच कोई थां नहीं कोई पदार्थ कोई रंग कोई रूप उस दे मन सदी भी नहीं बैठ सकता। मन बैठ सकता है परमात्मा दे मन बैठ सकता है परमात्मा दे नाम विच मन सदी भी टिक सकता है ईश्वर दे नाम विच। मन दा सिंघासन है परमात्मा दा नाम तन दा सिंघासन है जगत दे पदार्थ। तन नूं पदार्थ मिल जान सारे दे सारे लोक सवर गया मन नूं परमात्मा मिल जाए पर लोक जो है सवर गया। और गुरबाणी कहिंदी इक्को समय दोहां नूं सवारना इंज ना होवे कि तेरे को लोकल जिंदगी होवे परलोक दी ना होवे कि परलोकक जीवन तो प्राप्त करें पर तेरे को लोक दा ना होवे तो अधूरा रहेगा। सदियां तो भारत मुफलिस हो गया परलोकक जिंदगी इत्थे लोकक जिंदगी बिगड़ गई और अनंत काल तो पश्चिम देखदे पया अंदरों कंगाल रह गया। गुरमत ने यह नवी सोचनी दी और आख्या नहीं तू राज दे राजा बन जा योग विच महायोगी बन जा। राज में राज जोग में जोगी तप में तपीसर ग्रस्त में भोगी हलत सुख पलत सुख नित सुख सिमरनो नाम गोविंद का सदा लीजे मिटे कमाने पाप चिराने साध संगत मिल मोया दीजे। ए लोक सुखिए पर लोक सुहेले नानक हर प्रभ आते मेले।

बंधक होए बंद सुध लहै, पब्बा पेदे पेद मिलावा, अब पौ पान परोसो आवा, जो बाहर सो पीतर जानिया, पया पेद पूपत पहचानिया, मम्मा मूल गया मन माने, मरमी होए सो मन को जाने, मत कोई मन

लिव मन लावे, अनत न जाए परम सच पावे, अर जो तहा प्रेम लिव लावे, तो अल्लह लह लह चरण समावे। वव्वा बार बार विष्ण समार ना आवे हार, बल बल जे विष्णु तना जस गावे, विष्णु मिले सभी।

कर सो दो, कट पर चा की बात निरोधो, कट पर चै जो उपजय पाओ, पूर रहा तै त्रिभुवन राओ। खखा खोज पर है जो कोई, जो खोज है तो बहुर न होई, खोज बूझ जो करे बिचारा, तो पवजल तरत न लावे बारा। ससा सो सह सेज सवार है, सोई सही संदेह निवार है, अल्प सुख छाड़ परम सुख पावा, तब ए त्रिय ओ कंत कहावा। आहा होत होए नहीं जाना, जब ही होए तब है मन माना, है तो सही लख जो कोई, तब ओही ओह इहो ना होए। ल्यो ल्यो करत फिरे सब लोग, ता कारण जापे बहु सोग, लक्ष्मी बरस्यो जो ल्यो लावे, सोग मिटे सब ही सुख पावे। खखा खिरत खपत गए केते, खिरत खपत

ने सत का शब्द कबीरा कहे, पंडित होए सो अनपैर है। पंडित लोगे को व्यवहार, ज्ञानवंत को तत विचार, जाके जी जैसी बुद्ध होई।

साधक सिद्ध लखे जो पियो आपे करता आपे देओ चित्ती अमावस में आस निवारो अंतर जामी राम समारो जीवत पावो मोख द्वार अनपो शब्द तत निज सार चरण कमल गोविंद रंग लागा संत प्रसाद पै मन निर्मल हर कीर्तन में अन दिन जागा रहाओ प्रिवा प्रीतम करो विचार कट में खेले अकट अपार काल कल्पना कदे न खाए आद पुरख में रह समाए द्वितीया दो कर जाने अंग माया ब्रह्म रमे सब संग ना ओ बढ़े न कटता जाए अकुल निरंजन एक कह पाए तृतीया तीने सम कर ल्यावे अनद मूल परम पद पावे साध संगत उपजे विश्वास बाहर पीतर सदा प्रगास चौथे चंचल मन को गहो काम क्रोध संग कबहु न बहो।

लेहो परवान छूटे संसार मिट जाए दुख सुन सरोवर पावो सुख अष्टमी अष्ट तात की काया ता मैं अकुल महानिद्राया गुरुदम ज्ञान बतावे पेद उल्टा रहे अपंग अछेद नौमी नवे द्वार को साध बैती मनसा राखो बांध लोभ मोह सब भीतर जाहो जुग जुग जीवो अमर फल खाहो दसवीं दह दिस होए अना

राग गौड़ी वार कबीर जियो के सत, बार बार हर के गुण गावो, गुरगम पेड़ तो हर का पावो, रहाओ आदित करे भगत।

कर छोड़े बाहर जिन जाए नातर खरार सहराए बुधवार बुध करे परदास हृदय कमल में हर का वास गुर मिल दो एक सम करे उर्द पंक ले सूदा करे बृहस्पत बिखिया दे।

बाहर पीतर पया प्रगास, तब हुआ सगल कर्म का नाश। जब लग कट में दूजी आन, तौलो महल न लाबे जान। रमत राम क्यों लागो रंग, कह कबीर तब निर्मल।

तारी अले राम कहत जन कस न करे रहाओ तारी ले गन का बिन रूप कुबजा ब्याद अजामल तारी अले चरण बद्धिक जन तेउ मुक्त भये हों बल बल जिन राम कहे दासी सुत जन बिदर सुदामा उग्र सैन को राज दिए जप हीन तप हीन कुल ही।

आती, मेरा कर्म कुटल सा जन्म को भांती, राम गुसैया जी के जीवना मोहे न बिसारो मैं जन तेरा रहाओ। मेरी हरो विपत जन करो सुभाई, चरण न छाडो शरीर कल जाई, कहो रविदास परो तेरी सांबा, बेग मिलो जन करना बिलांबा। बेगमपुरा शहर को नाओ, दुख अंधो नहीं ते ठाओ, ना तस्वीर खिराज ना माल, खौफ ना खता

मेहरम महल ना को अटकावे, कह रविदास खलास च मारा, जो हम सहरी सो मीत हमारा एक ओंकार। सतगुरु प्रसाद गौड़ी बैरागण रविदास जियो, कट अब घट डूगर घना, एक निर्गुण बैल हमार, रमैये क्यों

मैं राम नाम तन ला दिया बिखला दी संसार। उरवार पार के दानिया लिख लियो आल पताल मोहे जम

न बूझ, ऐसे मेरा मन बिखिया बिमोया, कछ आरा पार न सूझ। सगल पवन के नायका एक छिन दर्श दिखाए जी, रहाओ मलिन पई मत माधवा, तेरी गत लखी न जाए, करो कृपा प्रम चूकई।

कवन कर्म ते छूटी है जे सादे सब सिद्ध होए। कर्म अकर्म विचारी है शंका सुन वेद पुराण, संसा सद हृदय बसै कौन हिरै अभिमान। बाहर उदक पखारी है फट पीतर विविध विकार, खुद कमन पर होए वो सुच कुंज।

उन मन मन मन ही मिले छुटकत बज्र कपाट। भगत जुगत मत सत करी प्रम बंधन काट विकार। सोई बस रस मन मिले गुण निर्गुण एक विचार। अनक जतन निग्रह किए तारी न करे प्रम पास प्रेम।

सो दर तेरा के हा सो कर के हा जित वह सर्व संभाले वाजे तेरे नाद अनेक असंखा केते तेरे वावन हारे केते तेरे राग परिस्यों कही है केते तेरे गावन हारे गावन तुदनो पौन पानी बै संतर गावे राजा धर्म दुआरे गावन तुदनो चित गुपत लिख जानवे लिख तरम विचारे गावन तुदनो ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सवारे गावन तुदनो इंद्र इंद्रासन बैठे देवतिया दर नाले गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर गावन तुदनो साध विचारे गावन तुदनो जति सती संतोखी गावन तुदनो वीर करारे गावन तुदनो पंडित पड़े रखी सर।

दिल सुरत कमाई, सब कीमत मिल कीमत पाई, ज्ञानी त्यानी गुर गुर हाई, कह न जाई तेरी तिलवड़ियाई, सब सत सब तप सब चंगियाईया, सिद्धा पुरखा किया वड़ियाईया, तुद विण सिद्धी किने न पाया, कर्म मिले नाई ठाक रहाईया, आखण वाला क्या बिचारा, सिफती परे तेरे भंडारा, जिस तू दे तिसे क्या चारा।

दुख तित भूखे खाए चलिए दुख तो क्यों विसरे मेरी माए साचा साहिब साचे नाए रहाओ साचे नाम की तिल वड्याए आप थके कीमत नहीं पाई जे सब मिलके आखन पाए बड़ा न होवे काट न जाए।

गुर प्रसाद वसे मन आए, दुख अनेरा विचों जाए। साच प्यारा आप करे, अवरी को साच न दे, जे किसे देव

सो दिन परवान दर्शन देखिए दया न होए लय दिते बिन रहे न कोए राजा न्याय करे हथ होए कह खुदाई ना माने कोए मानस मूरत नानक नाम करनी कुत्ता दर फुरमान गुर प्रसाद जाने मेहमान ता किस दरगे पावे मान आसा महला पहला जेता शब्द सुरत तो

कल कल वाली माया मद मीठा मन मत वाला पीवत रहे आपे रूप करे बहु पांति नानक बपड़ा एव कहे आसा मेला पहला वाजा मत पखावज पाओ होए आनंद सदा मन चाहो एहा भगत एहो तपताओ इत रंग नाचो रख

इत रंग नाचो रख रख पाओ। पाओ फेरी होवे मन चीत, बहिंदिआं उठदिआं नीता नीत, लेकण लेट जाने तन सुआहा, इत रंग नाचो रख रख पाओ। सिख सभा दीख्या का पाओ, गुरमुख सुनना साचा नाओ, नानक आखण वीरा वीर, इत रंग नाचो रख रख पैर। आसा मैला पैला पौन उपाय तरी सब तरती, जल अग्नि का बंद किया, अंदुलै दै दिस मूंड।

जी उपाय जुगत हथ कीनी काली नाथ क्या वड़ा भया। कितू पुरख जोरू कौन कही है सर्व निरंतर रव रया। नाल कुटम साथ वरदाता ब्रह्मा पालन सृष्ट गया। आगे अंत न पायो ताका कंस छेद क्या वड़ा भया। रतन उपाय तरे खीर मथया और पखलाए।

आप गया मन मानिया, अपना कारज आप सवारे, होरन कारज ना होई। जित कारज सत संतोख दया धर्म है, गुरमुख बूझै कोई। पनत नानक सबना का फिर एको सोए, जिसनो नजर करे सा सुहागण होए। आसा मैला पहला ग्रियो बन समसर सह सुबाए, दुर्मत घट पई कीरत ठाए। सच पौड़ी साचो मुखनाओ, सतगुर सेव पाए निज खाओ। मन चूरे खट दर्शन जान, सर्व ज्योत पूरन भगवान। रहाओ अधिक त्यास तेक बहु करे, दुख बिखिया सुख तन पर हरे। काम क्रोध अंतर तन हिरे, दुबदा छोड़ नाम निस्तर। सिफत सलाहन सहज आनंद, सखा सैन प्रेम गोविंद। आपे करे आपे बख्शिंद, तन मन हर पै आगे जिंद। झूठ विकार महा दुख दे, देख वरन दीसे सबके। जो पुजे सो आवे जाए, नानक अस्थिर नाम रजाए। आसा मेला पहला एको सर्वर कमल अनूप, सदा विदास है परमल रूप। उजल मोती चूगे हंस, सर्व कला जगदी से अंश। जो दीसे सो पुजे बिन से, बिन जल सर्वर कमल ना दीसे। रहाओ बिरला बूझे पावे पेद, साखा तीन कहे निसबेद। नाग बिंद की सुरत समाए, सतगुर सेव परम पद पाए। मुक्तो रातो रंग रवांतो, राजन राज सदा बिकसांतो। जिसु राखे कृपा तार, बूढ़त पाहन तारे तार। त्रिभुवन में जोत त्रिभुवन में जानिया, उल्ट पई कर कर में आनिया। एनक भगत करे लिवलाए, नानक तिन कह लागे पाए। आसा मेला पहला गुरमत साची हुज्जत दूर, बहुत ज्ञान लागे तूर। लागी मैल मिटे सचनाए, गुर प्रसाद रहे लिवलाए। है हजूर हाजर अरदास, दुख सुख साच करते प्रभ पास। रहाओ कूड़ कमावे आवे जावे, कहन कथन वारा नहीं आवे। क्या देखा सूझ बूझ ना पावे, बिन नामे मन तृप्त ना आवे। जो जन्मे से रोग व्यापे, हों मैं माया दुख संतापे। से जन बाचे जो प्रभ राखे, सतगुर सेव अमृत रस चाखे। चल तो मन राखे अमृत चाखे, सतगुर सेव अमृत शब्द पाखे। साचे शब्द मुक्त गत पाए, नानक विच्चों आप गवाए। आसा मेला पहला जो तिन किया सो सच किया, अमृत नाम सतगुरु दिया। हृदय नाम नाही मन पंग, अंदर नाल प्यारे संग। हर जियो राखो अपनी सरनाई, गुर प्रसादी हर रस पाया। नाम पदार्थ नौ निद पाई रहाओ, कर्म धर्म सच साचा नाओ। ताके सद बलिहारे जाओ, जो हर राते से जन परवान। तिन की संगत परम निधान, हर वार जिन पाया तन नारी। हर क्यों राती शब्द विचारी, आप तरह संगत कुल तारे। सतगुरु सेव तत विचारे, हमरी जात पथ सच नाओ। कर्म तर्म संजम सत भाओ, नानक बख्शे पूछ न होए। दूजा मेटे एको सोए, आसा महला पहला। इक आवे इक जावे आई, इक हर राते रह समाई। इक तरन गगन में ठौर न पावे, से कर्महीन हर नाम न त्यावे। गुर पूरे ते गत मित पाई, एहो संसार बिखवत अत पौजल।

जो जल अम्ब ऊपर कमल निरारे, बुरा पला को किसनो कही है, दिशे ब्रह्म गुरुमुख सच लही है, अकथ कथो गुरुमत विचार, मिल गुर संगत पावो पार, शास्त वेद सिमरत बहु पेद, अठ मज्जन हर रस रेद, गुरुमुख निर्मल मैल न लागे, नानक हृदय नाम वडे तुर पागे, आसा महला पहला, निव निव पाए लगो गुर अपने, आत्म राम निहारिया, करत विचार हृदय हर रविया, हृदय देख विचारिया, बोलो राम करे निस्तारा, गुर प्रसाद रतन हर लाभे, मिटे अज्ञान होए उजियारा रहाओ, रमनी रवे बंधन नहीं टूटे, विच हों मैं परम न जाई, सतगुर मिले ता हों मैं टूटे, ताको लेखे पाई, हर हर नाम भगत प्रिय प्रीतम, सुख सागर उर्धारे, भगत वचन जग जीवन दाता, मत गुरमत हर निस्तारे, मन स्यों जूझ मरे प्रभ पाए, मनसा मने समाए, नानक कृपा करे जग जीवन, सहज पाए लिव लाए, आसा महला पहला, किसको कहे सुनावे किसको, किस समझावे समझ रहे, किसे पढ़ावे पर गुण बूझे, सतगुरु शब्द संतोख रहे, ऐसा गुरुमत रमत शरीरा, हर पज मेरे मन गहर गंभीरा रहाओ, अनत तरंग भगत हर रंगा, अंदिन सूचे हर गुण संगा, मिथ्या जन्म साकत संसारा, राम भगत जन रहे निरारा, सूची काया हर गुण गाया, आत्म चीन रहे लिवलाया, आद अपार अपरंपर हीरा, लाल रता मेरा मन धीरा, कथनी कह कह से मुए, सो प्रभ दूर नाही प्रभ तू है, सब जग देख्या माया छाया, नानक गुरमत नाम ते आया।

स्कंद। खान जीवन की बहुती आस, लेखे तेरे सास गिरास। ऐनक अंधले दीपक दे, पौजल डूबत चिंत करे। कहे सुने जो माने ना हो, हौ बलिहारे ता कह जाओ। नानक एक कह अरदास, जियो पिंड सब तेरे पास। जा तू दे जपी तेरा नाओ, दरगे बैसन होवे थाओ। जा सुध पावे ता गुरमत जाए, ज्ञान रतन वसे मन आए। नदर करे ता सतगुरु मिले, प्रणवत नानक पौजल तरे। आसा मेला पहला पंच पदे, दुध दिन तेन पंख बिन पंखी।

अंध जीव रस नाही, कन्नी पवन न वाजे, चरणी चले पजूता आगे, दिल सेवा फल लागे, अखर बिरख बाग पोए चोकी, सिंचित पाव करे ही।

नहीं कीमत पाए, अष्टदशी चौ भेद न पाया, नानक सतगुरु ब्रह्म दिखाया। आसा मैला पहला सेवक दास भगत जन सोई, ठाकुर का दास गुरमुख होई, जिन सिर साजी तिन फुन गोई, तिस बिन दूजा वरना कोई, साच नाम गुरु

साने मन्ने हुकुम सो प्रगट जाए सचनी साने ठाक न पाए पंडित पढ़े वखाने वेद अंतर वस्त न जाने तेद गुरबिन सो जी।

उत्तर क्यों करिए, बिन हर गुर पार न पाई, तुझ बिन अवर न कोई मेरे प्यारे, तुझ बिन अवर न कोई हरे, सर बिरंगी रूपी तू है, किस बख्शे जिस नजर

वो हर गुर कृपा के नजर तरी आप विचार मार मन देखा तुम सा मीत ना आवर कोई जो तू राखे तिर ही रहना दुख सुख देवे करे सोई आशा मन का दो विनाश त्रिगुण आस निराश सही तुरिया अवस्था गुरुमुख पाई है संत सभा की ओट लही ज्ञान ज्ञान सगले सब जप तप जिस हर हृदय अलख वेवा नानक राम नाम मन राता गुरमत पाए सहज सेवा आशा महला पहला पंच पदे मोह कुटुंब मोह सबकार मोह तुम तजो सगल वेकार मोह अर परम तजो तुम वीर सात नाम हृदय रवै शरीर रहाओ सच नाम जानव निध पाई रोवै पूत ना कल्पै मां।

रहाओ मन मुक्ति मत पूर्व आपी बिन हर सिमरन पाप संतापी दुर्मत त्याग लाहा किस लेवो जो उपजे सो अलखा देवो ऐसा हमरा सखा सहाई गुरु हर मिलिया भगत दिलाई सगली सौ।

अर्चना विषय की चिंता हो रही मोटे से केवल कंबली हो गई टुटी हुई झोंपड़ी भी रहा हो गई तन के कपड़े फटे हो साधु कहते जे उसके मन में संतोख है छपड़ी रहा होया झोंपड़ी रहा होया संतोखी है गुरु अर्जुन देव साहब कहने मैं समझना उस सगली सृष्टि का राजा है जे कोई राज सिंघासन से बैठे उनके चौगिर्द सुखों के साजो समान ने उसके सामने हुक्म तारीफ करने लिए हुक्म मनन अहंकार खलोते ने जो कुछ जबानू कटता है उनकी जबान का हर शब्द हर हुक्म मनिया जाता है पर जे योजे मनुख दे योजे राजे दे मन में संतोख नहीं अजे मन रजिया नहीं तो हर कहने मैं समझना वो राजा नहीं योजे राज का की सुख होया जिस राज में आके भी मन रजे ना जे मन अजे भुखा है जिंदगी में एक गल हैरान हो सकना गुरु अर्जुन देव साहब जी दे

अजय नहीं रचे हैं। मन राज कर करके भी नहीं रचता, लोभ किसी चीज का भी हो जाए लोभ पाप नाल जुड़ जाए। जिंदगी लोभ किसी चीज का समा जाए तो लोभ मनुख नूं पाप लई प्रेरणा दिंदा। हजूर ने बाणी लोभ संस्कृति लोभ नूं मुखातब कीता ते कहिंदे

सारी सृष्टि नालों दुखी राजा है। सुनने वाला हैरान हो यार, राजे नु सब तो सुखी समझने ते तुसी आखदे हो राजा सारे संसार विच दुखी है। ते फिर जे संसार विच राजा दुखी है तो तुसी आप ही अपनी रस्ते तो आखदे हो जदों रब बहुत रहमत विच आउंदा है उदों किसे गरीब नु राज दे दिंदा है।

जितनी देर पार को अंधड़ा हो गए उन्नी देर तो खा खा गए। जिस दिन पारखों को पछाण हो जाए उस दिन खोटे ते खरे परखे जाते, सच्चे ते झूठिया की परख हो जाती। और दुनिया में कुड़ियारो झूठ नाल संबंध रखने वाले हो, तुसी झूठ नाल संसार नू गुमराह कर सकते हो, दुनिया के लोगों नू भुलेखा पा सकते हो, पर रब की दरगाह विच तां सच ते झूठ की पछाण हो जाती है। रब का तो सुभाव हजूर ने बाणी चाखी।

0: घट घट के अंतर की जान से।
1: पुत्र अंदर भी आवाज न पहचान ले, आप पुरातन समय में कुछ ही करके है दुपड़े रुपए हम देते हैं, ऊपर साई मोर लगी हुई है। बाजार में जनों की दुकान से पुराने समय का दुपड़ा रुपया लेके जाई जाती, पर दुकानदार केवल मोर नहीं सी सकता, केवल शकल नहीं सी देखता, उसने उंगली से रख के टनकाउंदा सी कि जिंदे को पूछिए भी सही मोर तो लगी हुई है, टनकाउंदा तेन की लाभ जवाब दिंदा सी, कई बार उपरों शकल ठीक होंगी है, सही मोर लगी होंगी है, पर अंदर भी आवाज खोटी होंगी, अंदर भी आवाज कई बार मनुख से बाहर दे धूप नू निखार के रख देंगे। कई बार देखने विच मनुख सिख दिसदा है, डेरा भी खुला होंदा है, पग भी नीली बनी होंदी है, पर पता उदो लगदा है जदो कुड़ियार कुड़ियारी जाए रहे बड़ी गल बन जाए, जदो अंदर भी आराम पकड़ा है, जब अंदरों बोलना है उदो पता लगना है कि हंस है या बगला है, खोटा है या खरा है। ये टनकाउन वाले नु आवाज अंदर भी खोटी प्रतीत होवे ता फिर दुकानदार रुपया नहीं सी रखता, वापस मोड़ दिंदा। हजूर ने यो गलबाणी चाखी।

क्योंकि गुरुकुल सच है ते जिन्ना का मन कूड़ा हो जाता जिन्ना संगत कुड़ियारों की हो जाती है उन्होंने सुभाव बदल जाते। पुराने जमाने की एक कहावत बनी हुई है भी जे काले को तौला बह जाए रंग नहीं मिटाउंदा पर मत ले जाए सुभाव बदल जाए। तुम तकते हो तौले ते काले इकट्ठे हुए तौले का आखिरी अर्थ की चिट्टे चिट्टियां पग्गां वाले चिट्टियां टोपियां वाले चिट्टे कपड़े वाले चिट्टे चिट्टे खद्दर वाले ते कालियां पग्गां वाले इकट्ठे हुए रंग कालियां पग्गां वाले का नहीं बदले रंग नीलियां पग्गें गिरियां रंग कालियां पग्गें गिरियां पर सुभाव बदल गए। पुरानी कहावत साढ़े सामने सच हो गई काले को तौला बह लै रंग नहीं मिटाउंदा मत लै इकट्ठे बैठे बैठन की देर सी रंग नहीं मिटाया पता नहीं इसके लिए अजे तक पंथक सरकार कूकी जाते केवल काली झंडी की पग रहा तो पंथक सरकार ने भी जिस गुरु का पंथ ना हो पंथ का आखिरी अर्थ तो रस्ता है पंथ रस्ते नु कहने पथ तो पंथ शब्द बने पथ रस्ते नु आखते हैं पंथ भी रस्ते नु आखते ते पत्थर उस मुसाफर नु आखते हैं जो उस पथ ते राह ते चल रहा हो इसे तरह पंथक भी उस मनुख नु आखते हैं जो गुरु ते राह ते चल रहा हो। गुरु ने कोई पंथ कायम किया इसके लिए गुरु गोबिंद सिंह साहब ने आख्या कह लगे मैनू रब ने मुखातब करके यूं कहा

परम कार्योग गुरु की साजी नवाजी गुरु सवारी गुरु खालसा साध संगत सारे गज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अपने बहुत वड्डे भाग युगो युग अटल शब्द अवतार कलयुग दे जहाज गुरता गद्दी दे मालिक साहिब कमाल धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी निघी गोद विच बैठ के गुरबाणी दे कीर्तन दा आनंद माण रहे हां। सचखंड वासी ब्रह्म ज्ञानी महान तपस्वी महान त्यागी महान पवित्र आत्मा ब्रह्म देष्टी ब्रह्म वक्ता ब्रह्म स्रोत्री धन धन जहदार संत बाबा महेंद्र सिंह जी महाराज उन्हां दी पवित्र याद विच ये समागम चल रहा है। आज इस समागम का आखिरी दिन है। सारे दिनों का रिजल्ट जिन्हें तात्पर्य लुबे लुबाब कहते हैं वो अज निकलना है। कृपा की वाहगुरु ने मनुखा दे बखी नाल दी नाल गुरबाणी गुरु की कृपा हुई मनुख मात्र नूं प्रेरणा दित्ती जिस वखर को लैंड को आया राम नाम संतन घर पाया। विचार करिए केड़ी वखर केड़ी वस्तु है जेरी संतां तो बिना होर कितों प्राप्त नहीं हुंदी। वो है नाम धन। हर पूंजी संच करो हो व्यवहार इहां सुख दर गए जयकार इहां खार चलो हर लाहा आगे वसम सहेला। लाभ लेहो हर हृदय आराधो छुटके आवन जानी।

कर रखे थारी। सही तुझ लोंगा वह जो तुझ पावन रते तेरे भगत रसाले। होर केते गावन से मैं चेतना आवन नानक क्या बिचारे। सोई सोई सदा सच साहिब साचा सच नाई। है भी होसी जाए न जासी रचना जिन रचाई। रंगी रंगी पाती कर कर जिन सी माया जिन उपाई। कर कर वेख किता अपना जिब तिस दी वड्याई। जो तिस पावे सोई करसी हुक्म ना करना जाई। सो पातशाह शाह पात साहिब नानक रहन रजाई। मुंदा संतोख शर्म पत जोड़ी ध्यान की करें बिपूत। हिंसा काल कुवारी काया जुगत डंडा प्रतीत। आई पंथी सगल जमाती।

भुगत गया दया भंडारण घट घट वाजह नाद आप नाथ नाथी सब जाके रिद सिद्ध अवरा साध संयोग बिजोग द्विकार चलावे लिखे आवे पाग आदेश तिथ आदेश आद अनिल अनाद अनाथ जुग जुग एक कोवेश एका माई जुगत व्याई तिन जिले प्रवान एक संसारी एक भंडारी एक लाई दीवान जिब तिस बावै तिवै चलावै जिब होवै फुरमान ओह वेखै ओना नदर ना आवै बहुता हे वडान आदेश तिथ आदेश आद अनिल अनाद अनाथ जुग जुग एक कोवेश आसन लोए लोए भंडार जो किस पाया सोए कावार कर कर वेखै सरजनहार नानक सचे की सची कार आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एक कोवेश एक दूजी पौ लख हो है लख हो लख वीश

कथना करड़ा सार जत पहारा तीर दिसनियार अहरण मत भेद हथियार पाओ खला अगन तपताओ पांडा पाओ अमृत तत टाल कड़ी जाए शब्द सची टकसाल जिनको नजर कर्म तिनकार नानक नजरी नजर निहाल। श्लोक पवन गुरु पाणी प्रताप माता तरत महत दिवस रात दुदाई दाया खिल सगल जागत चंगियाइया बुरियाइया वाच धर्म दूर करमी अपो अपनी के नेड़े के दूर।

के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काजय के सर्वत्र राजय के सर्वत्र सुखय के सर्वत्र पोखय के सर्वत्र त्राणय के सर्वत्र प्राणय के सर्वत्र देशय के सर्वत्र पेशय के सर्वत्र मानय सदैव प्रदानय के सर्वत्र जाप्यय के सर्वत्र थाप्यय के सर्वत्र पान्यय के सर्वत्र मान्यय के सर्वत्र इंद्रय के सर्वत्र चंद्रय के सर्वं कलिमय के सर्व परम महिमय के आकलो अलामय के सैव कलामय के हुसनल वजूहय तमाम अंदर जूहय हमेश सलामय श्री कृतमदामय गनीमल सकाशता गरीबल परस्ता है बिलंदल मकानय जमीनल जमानय तमीजल तमामय रुजवन दानय हरि फल अजीमय रिया यकीनय अनेक उलतरंग है पेद है पंग है अजी जल निवाज है गनीमल खराज है निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त भूत है पर भुक्त प्रवाह है सुजुक्त सुधा है सदैव स्वरूप है फिर अनूप है समस्त उपराज है सदा सर्वसाज है समस्त सलाम है सदैव काम है निर्बाध स्वरूप है गाद अनूप है ओं आद रूपे अनाद स्वरूप अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे त्रिवर्गं त्रिवादे गंधे गादे शुभं सर्वभागे सर्वानुरागे त्रिपुक्त स्वरूप स जय सूत है कि नरकं प्रणाश है पृथ्वी प्रवास है निरुक्त प्रवाह है सदैव सदा है विभुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है निरुक्त सदा है विभुक्त प्रवाह है अनुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है चाचरी छंद अपंग है नंग है पेख है लेख है अपर्म है कर्म है नाद जुगाद है अजय है अभय है भूत है दूत है अनाश है उदास है दंद है बंद है अभक्त है विरक्त है नाश है प्रकाश है नचंत है सुनंत है लेख है देख है अलेख है पेख है अटा है गह है असम है गम है नील है नाद है अनैत है सुनैत है जात है जाद है चरपट छंद तव प्रसाद सर्वं हंता सर्वं गंता सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं जुगता सर्वं मुक्ता रसावल चंद तव प्रसाद नमो नरकनाशे सदैव प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अभंगं भूते परमाथं प्रमाथे सर्वदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध भूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे निरभंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे ना पुत्र है ना पुत्र है ना सत्र है ना मित्र है ना तात है ना मात है ना जात है ना पात है निरसागं श्री गह मितो मीग है सदैव प्रवाह जय अजय भगवती शांत तव प्रसाद के जहा हजूर है के हाजर हजूर है हमेशा सलाम है समाज सुल कलाम है के साहब दिमाग है के उस नाल चिराग है के कामल करीम है के राज करीम है के सर्वं कली है के सर्वं दली है के सर्वत्र माने आए के सर्वत्र दाने आए के सर्वत्र गौन है के सर्वत्र पौन है के जहर जूर है के हाजर हजूर है हमेशा सलाम है सलीख समदाम है गनीमल सकाशता गरीबल परास्ता है के जहर जूर है के हाजर हजूर है हमेशा सलाम है समातल कलाम है के साहिब दिमाग है के उसन चिराग है के कामल करीम है के राज करीम है के रोजी देहद है के राज करहद है करीमल कमाल है के उसन जमाल है गनीमल खराज है गरीबल नवाज है हरी फुल सिकन है रासल पकन है कलंक प्रणास है समातल निवास है अगंजल गनीम है रजाय करीम है समातल जवा है के साहिब गराए के नरकंग प्रणास है वस्तुल निवास है के सर्वलगवान है में सुंदरवान है तमाम तमीज है समाज तल अजीज है परंग परमीश है समाज तल अधीश है अधेशल अलेख है में सुल अपेख है जमीन उल जमा है मई कुल माँ है करीमल कमाल है कि जरोज जमाल है के अचलंग प्रकाश है कि मित्र सुभाष है कि आज विस्वरूप है कि मित्र बपूत है क्या मित्रो पसा है कि आत्म प्रवाए के अचलंग नांग है कि मित्रो अपांग है मद पार छंद दव प्रसाद मुन मन प्रणाम गुणगन मुदाम हर बारिया गांजु हर नर पर पांजु अनगन प्रणाम मुन मन सलाम हर नारिया खांडू भर नारिया मांडू अनुभव नाश मुन मन प्रकाश गुणगन प्रणाम जल सर मुदाम अंश जंग आसन पंग
ਉਪਮਾ ਪਾਰ ਗਾਤਮੇ ਤਧਾਰ ਜਲ ਥਲ ਮਾਂਡਵ ਦਿਸ ਵਿਸਿਆ ਪਾਂਡਵ ਜਲ ਥਲ ਮਹਾਂਤਵ ਦਿਸ ਵਿਸ ਬੇਅੰਤ ਅਨ ਪਵਨਾਸ ਤ੍ਰਿਤ ਧਰ ਤੁਰਾਸ ਆ ਜਨ ਬਾਹਵ ਏ ਕੈ ਸਦਾ ਓਅੰਕਾਰ ਆਦੁ ਕਥਨੀ ਅਨਾਦ ਖਲ ਖੰਡ ਖਿਆਲੁ ਗੁਰਵਰ ਅਕਾਲ ਕਰ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਜਰਨ ਨਾਮ ਅੰਸ਼ ਜਗਾਤ ਜਿਜਨਾ ਬਾਤ ਆਣ ਟੁੱਟ ਭੰਡਾਰ

करुणालया है, अर्घालया है, कल खंडन है, मह मंडन है, जगदेश्वर है, परमेश्वर है, कल कारण है, सर्ववारण है, ऋत के धरण है, जग के करण है, मनमान्या है, जग जान्या है, सर्वंग पर है, सर्वंग कर है, सर्वपाश्य है, सर्वनाश्या है, करुणा कर है, विश्वम पर है, सर्वेश्वर है, जगदेश्वर है, ब्रह्मांड से है, कल खंड से है, परते पर है, करुणा कर है, अजप अजप है, सप अधप है, अकृता कृत अमृत अमृत है, अमृता मृत है, करुणा कृत है, कृता कृत तरणी धृत है, अमृतेश्वर है, परमेश्वर है, अकृता कृत अमृत अमृत है, अजबा कृत है, मृत अमृत है, नरनायक है, कल गायक है, विश्वम पर है, करुणालय है, नृपनायक है, सर्वपायक है, पाप भंजन है, अर्गंजन है, रिपतापन है, जप जापन है, अकलंकृत है, सर्वाकृत है, हृताकर है, हरताहर है, परमात्मा है, सर्वात्म है, आत्म वास है, जस के जास है, भुजंग पर्यात शंभ। नमो सूर्य सूर्य, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज राजे, नमो इंद्रेन्द्रे, नमो अंधकारे, नमो तेज तेजे, नमो वृंद वृंदे, नमो बीज बीजे, नमो राज संग दाम संग शांत रूपे, नमो परम ततंग ततंग स्वरूपे, नमो योग योगे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो मंत्र मंत्रे, नमो ध्यान ध्याने, नमो युद्ध युद्धे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो भोज भोजे, नमो पान पाने, नमो कले कर्ता, नमो शांत रूपे, नमो इंद्रेन्द्रे नादिंग विभूते, अलंकार रूपे अलंकार अलंके, नमो आस आसे, नमो बांक बांके, अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे, त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे, एक अक्षरी शंभ। अजय अलय पय वय अपू अजू अनास काश, अगंज पांज लख पख काल दयाल लिख पेख, अनाम काम का डाह नाथे ब्रह्माथे जो नियम मुनि, न रागे न रंगे न रूपे न रेखे, अकर्मंग वर्मंग गंजे लेखे, भुजंग प्रयात शंभ। नमास्तुल प्रणामे समास्तुल प्रणाशे, अगंजलो नामे समास्तुल निवासे, निरकाम भूते समास्तुल स्वरूपे, गोकर्मंग प्रणाशी सुधर्मंग भूते, सदा सच्चिदानंद सदरंग प्रणाशी, ग्रीमलक निंदा समास्तुल निवासी, अजायब भूते गजायब गनीमे, हरियंग करियंग करीमल रहीमे, चतर जकर भरती चतर जकर भुगते, सुयाम पव सुभंग सर्वदा सर्वजुगते,

कछ वेदना जानत। महादेव का कह सदा सेव, निरंकार का जीनत न पेव। आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत भिन भिन तो है तेती। तुमरा

वे जो घी उठ जाए जो कि पाना सोती है और करना क्या काला जाए आवरना करना जाए गुरु वस्तु खाइए सच खर सच रास जिनी सच मंजिया गुरपुरे सवास नानक वस्त पछाण सी सच दा जिस पास श्री राग महला पहला तांत मिले हुल तांत को सुखी सुख समाए लाल गुलाला गहवरा सच्चा रंग चढ़ाओ सच मिले संतोखियां हार जप एक पाए पाई रे संत जन की रेण संत स्वभाव गुर पाइए मुक्त दर सेन रहो ऊंचो थान सुहावना ऊपर महल मरार सच कर दी ले पाइए धरकर महल प्यार गुरमुख मन समझाइए आत्म राम विचार त्रिविद त्रिविद कर्म कमाइए आस अंदेसा होए क्यों गुर बिनत के त्रिकुटी छुटे छुट सी सहज मिलया सुख होए निज का मैल पछाणिए नजर करे मल धोए बिन गुर मैल मल ना उतरे बिन हर क्यों कर वास एको शब्द उचारिए त्यागे आस नानक देख दिया देख दिखाइए हो सब बलिहारे जास श्री हग महला पहला तग जीवन दो हगनी मुठी दूजे पाए कलर केरी कंध ज्यो एन सो कर टै पाए बिन शब्द सुख ना थिए फिर बिन सुख ना जाए मुंदे फिर बिन क्या सिंगार धार कर तो ही ना लह धर गए झूठ सवार राव आप सजान भुले सच्चा बड़क सान पहला तरती साधक सच नाम दे दान नाव निध पुजै नाम

सिद्धांत सिखाया। राव बिखे विकार दुष्ट कृपा विरखा करे इन ताज आत्मे हो त्याय जाप तप हुए जब लागे कमल विगत मद अशर्म आई वीर सप्ताह रो वैसरो संग्रह तीन खोड़ा नित काल सरे दस अठारह में परम्परो चीने कर गए नानक एक तारे फिर मोहन लवला का तीजा अमल करता ती बीज।

फिर आगम अल्लाह पहला करता था एक सुत जिते है जी सुत होना क्यों कोय ना की जिही सुत रहा तिन राहा लिखा को आओ जाओ काहे जी करे चतराई लेवे देवे टल न पाई।

काट काटे आपे हुक्म वसै हुक्मे करे विचार गुर सब दीसा लाहिए होमे विचो खोए सातन नावे बाहरी अवगण वंती रोए सच सलाही सच लगा सचै नाए तृप्त होए गुण विचारी गुण संग रहा अवगण कढ़ा तो कढ़ा तोए आपे मेल मिलायदा फिर वे छोड़ा ना होए नानक गुर सलाही अपना जिदू पाई प्रभ सोए श्री राग महला तीजा सुन सुन काम गहे लिए क्या चले बहाल उड़ाए अपना पिर ना पछाण ही क्या मोह देसे जाए जिन्नी सखी कंत पछाणया हो तिन कै लागो पाए तिन ही जैसी थी रहा सत संगत मेल मिलाए मुंधे कूड़ मुठी कूड़ियार फिर प्रभ साचा सोहना पाईए गुर विचार रहाओ मन मुख कंत ना पछाणई तिनक क्यों रहन विहाए गर्भ टिया तृष्णा जलहे दुख पावे दूजै पाए शब्द रतिया सुहागनी तिन विचो होमै जाए सदा पिर गावे अपना तिना सुखे सुख विहाए ज्ञान विहूनी पिर मुतिया पिर ना पाया जाए अज्ञान मति अंधेर है बिन पिर देखे भुख ना जाए आभो मिलो सहेलियो मैं पिर देहो मिलाए पूरे भाग सतगुर मिले फिर पाया सच समाए से सहिया सुहागनी जिनको नदर करे खसम पछाण है अपना तन मन आगे दे घर वर पाया अपना हो मैं दूर करे नानक सोभावंतिया सुहागनी आंदिन भगत करे श्री राग महला तीजा एक पिर राभे अपना हाओ कैदर पूछो जाए सतगुर सेवी पाओ कर मैं पिर देह मिलाए सब उपाय आपे वेखे किस नेड़े किस

रहाओ। नाम अमोलक रतन है, पूरे सतगुर पास, सतगुर सेवै लग्या कड रतन देवै परगास। धन वड भागी आ जो आए मिले गुर पास, जिन्ना सतगुर पुरख ना भेटियो से भागहीन वसकाल। ओए फिर फिर जोन पवाई है विच विष्टा कार विकराल, ओना पास दुआस ना पिटिय जिन अंतर क्रोध चंडाल। सतगुर पुरख अमृत सर वड भागी नाभे आए, उन जन्म जन्म की मैल उतरे निर्मल नाम दृढ़ाए। जन नानक उत्तम पद पाया सतगुर की लिव लाए। श्री राग महला चौथा गुण गावा गुण विथरा, गुण बोली मेरी माए गुरमुख सज्जन गुण कारिया। मिल सज्जन हर गुण गाए, हीरे हीर मिल बेदिया रंग चलू लैनाए। मेरे गोविंदा गुण गावा तृप्त मन होए, अंतर प्यार सर नाम की गुरु तुस मिला वै सोए। रहाओ मन रंग हो वड भागियो, गुरु तुठा करे पसाओ। गुर नाम दृढ़ाए रंग स्यो हो, सतगुर कै बल जाओ। बिन सतगुर हर नाम न लभई लख कोटि कर्म कमाओ। बिन भागा सतगुर ना मिलै घर बैठिया नित नित पास। अंतर अज्ञान दुख भरम है विच पड़दा दूर पयास। बिन सतगुर भेटे कंचन ना थी मनमुख लोह बूढ़ा बेड़ी पास। सतगुर बोहित हर नाव है कित बिद चढ़िया जाए। सतगुर कह भाण जो चले विच बोहित बैठा आए। धन धन वड भागी नानका जिन्ना सतगुर ले मिलाए। श्री राग महला चौथा हो पंथ दसाई नित खड़ी कोई प्रभ दसे तिन जाओ। जिन्नी मेरा प्यारा राव्या तिन पीछे लाग फिराओ। कर मिन्नत कर जोदड़ी मैं प्रभ मिलने का चाओ। मेरे भाई जना कोई मोको हर प्रभ मेल मिलाए। हो सतगुर विटो वारिया जिन हर

तुलसी गुर सतगुर पीछे पाए, सब जग जीवन जग आप है, नानक जल जलहे समाए। श्री राग महला चौथा, रस अमृत नाम रस, अत भला किस बिद मिले रस खाए, जाए पुछो सुहागनी तुसा क्यों कर मिलिया प्रभ आए। ओए वे परवाह ना बोलनी हो, मल मल धोवा तिन पाए, भाई रे मिल सज्जन हर गुण सार, सज्जन सतगुर पुरख है दुख कड्डे हो मैं मार। रहाओ गुरुमुखिया सुहागनी तिन दया पई मन आए, सतगुर वचन रतन है जो मन्ने सो हर रस खाए, से वड भागी वड जानी है जिन हर रस खादा गुर पाए। एहो हर रस वन तिन सबत है, भागहीन नहीं खाए, बिन सतगुर पल्लै ना पवै, मनमुख रहे बिल लाए। ओए सतगुर आग्ञा ना निभे, ओना अंतर क्रोध बलाए, हर हर हर रस आप है, आपे हर रस होए, आप दया कर देव सिंह, गुरमुख अमृत चोए, सब तन मन हरिया होया, नानक हर वस्या मन सोए। श्री राग महला चौथा, दिन सचड़ै फिर आथ वह रैन सबाई, जाए आप कटै नर ना बुझे, नित मूसा लाज टुकाए, गुड़ मिठा माया पसरिया, मनमुख लग माखी पचै पचाए। भाई रे मैं मीत सखा प्रभ सोए, पुत कलत मोह बिख है, अंत बेली कोय ना होए। रहाओ गुरमत हर लिवे उबरे, अलपत रहे सरनाए, उन्नी चलन सदा निहालिया, हर खर्च लिया पत पाए, गुरमुख दरजे मनिया, हर आप लय गल लाए, गुरमुख नो पंथ प्रगटा, दर थाक ना कोई पाए, हर नाम सलाहन नाम मन, नाम रहन लिव लाए, अनहद तुन अनहद तुनी।

सतगुर पुरख मिलाया इको सज्जन सोए हर जन का राखा एक है क्या मानस हूँ मैं रोए जो हर जन पावे सो करे दर फेर ना पावे कोए नानक रत्ता रंग हर सब जग महचानन होए श्री राग महला पांचवा मान बिलास बह रंग कणा दृष्ट भूल खुशिया छत्र धार बादशाहिया विच सहसे परिया भाई रे सुख साथ संग पाया लिख ले लिखिया लेख तिन पुरख विधात दुख सहसा मिट गया रहाओ जेते थान थनंतरा तेते भव आया धन पाती वड भूमिया मेरी मेरी कर परया हुक्म चलाए ने संग हुए वरतया फरिया सबको वसगत कर ले ओन बिन नावै था कर लिया कोट तेतीस सेवका सिरसा दिक दर खरिया गिरंबारी बड साहबी सब नानक सुपन थिया श्री राग महला पांचवा भलके उठ पपोलिए विण बुझे मुगद अजान सो प्रभ चेतना आयो छुट्टैगी बेबाण सतगुर सेती चित लाए सदा सदा रंग माण प्राणी तू आया लाहा लैण लगा कित कुफकड़े सब मुकदी चली रैण रहाओ कदम करे कुदम करे पशु पंखिया दिसे नाही काल ओते साथ मनुख है फाथा माया जाल मुक्ते से पालिए जे सच्चा नाम समाल सो कर छड गवावना सो लगा मन माहे जिथे जाए तो दुवर्तना तिस की चिंता नाहे फाथे से निकले जे गुर की पैरी पाहे कोई रख ना सकई दूजा को ना दिखाए चारे कुंडा पाल के आए पया सरनाए नानक सच्चे पात साहे दुबदा लया कढ़ाए श्री राग महला पांचवा कड़ी महत का पाहुना काज सवारण हार माया काम व्यापिया समझे नाही गावार उठ चलिया पछुताया परिया वस जंदार अंधे तू बैठा कंधी पाए जे होवी पूर्व लिखिया ता गुर का बचन कमाहे।

शरणाई सदा सुख पार ब्रह्म करतार। मन मेरे सगल उपाव त्याग गुर पूरा आराधनित एक सकील विलाग। रहाओ इको भाई मित इत इको मात पिता एक सकी मन टेक है जिन जियो पिंड दिता। सो प्रभ मनो ना विसरै जिन सब के वस कीता। घर इको बाहर इको थान थनंतर आप जियो जंत सब जिन किए आठ पहर ते सजाप। एक सेती रत्या ना होवी सोग संताप। पार ब्रह्म प्रवेख है दूजा ना ही कोय। जियो पिंड सब तिसका जो तिस पावै सो होए। गुर पूरै पूरा भया जप नानक सच्चा सोए। श्री राग महला पांचवा जिन्ना सतगुर सियो चित लाया से पूरे प्रधान। जिनको आप दयाल होए तिन उपजै मन ज्ञान। जिनको मस्तक लिखिया तिन पाया हर नाम। मन मेरे एको नाम ते आए सर्व सुखा सुख उपजे। दरगह पैदा जाए रहाओ जन्म मरण का पाओ गया पाओ भगत गोपाल। साधु संगत निर्मला आप करे प्रतिपाल। जन्म मरण की मल कटिए गुर दर्शन देख निहाल। थान थनंतर रव रहे अपार ब्रह्म प्रभ सोए। सबना दाता एक है दूजा नाही कोए। ते शरणाई छुटिए कीता लोड़े सो होए। जिन मन वस्या पार ब्रह्म से पूरे प्रधान। तिनकी शोभा निर्मली प्रगट पई जहान। जिनी मेरा प्रभ त्याया नानक तिन कुर्बान। श्री राग महला पांचवा मिल सतगुर सब दुख गया हर सुख वस्या।

जपिए अमृत नाम जन्म मरण दुख काटिए लागे सहज ध्यान मेरे मन प्रभ शरणाई पाए हर बिंदु जाको नहीं एको नाम ते आए रहाओ कीमत कहन ना जाइए सागर गुनिया था वड पागी मिल संगति सच्चा शब्द विसा कर सेवा सुख सागर।

छंद तन मन धन अर्पी सभो सगल वारिय एह जिंद देखे सुने हदूर सद घट घट ब्रह्म रविंद अकिरत घणा नो पालदा प्रभ नानक सद बख्शिंद श्री राग महला पंजवां मन तन धन जिन प्रभ दिया रखिया सहज सवार सर्व कला कर थाप्या अंतर जोत पार सदा सदा प्रभ सिमरी है अंतर रख और तार मेरे मन हर बिन अवर न कोय प्रभ शरण आई सदा रहो दुख ना व्यापै कोय रहाओ रत्न पदार्थ मानका सोना रूपा खाक मात पिता सुत बंद पा कूड़े सभे था।

दूर तृष्णा लागी रच रहया अंतर होमै कूर भगति नाम भी होणिया आभे बंझे पूर राख लिहो प्रभ करणहार जी जंत कर दया बिन प्रभ कोई ना रखनहार महाबिट जम पया नानक नाम ना विसरो कर अपनी हर मया श्री राग महला पंजवा मेरा तन अर तन मेरा राज रूप मैं देश सुत दारा बनता अनेक बहुत रंग अरवेश हर नाम विदय ना वसई कारज कित न लेख मेरे मन हर हर नाम ते आए कर संगत नित साधकी गुर चरणी चित लाए रहाओ नाम निधान ते आइए मस्तक होवे भाग कारज सब सवारिये गुर की चरणी लाग हाँ मैं रोग भ्रम कटिए ना आवे ना जाग कर संगत तू साधकी अड़सठ तीरथ ना जियो प्राण मन तन हरे साचा एहो न्याओ साचा एहो सुआओ ए ऐथे मिले वडाइया दरघे पावे थाओ करे कराया प्रभ सब किछ तिस ही हाथ मारे आपे जीवाल दा अंतर बाहर साथ नानक प्रभ शरणागति सर्व कटा के नाथ श्री राग महला पंजवा शरण परे प्रभ अपने गुर हुआ कृपाल सतगुर कै उपदेसी है बिनते सर्व जंजाल अंदर लगा राम नाम अमृत नदर निहाल मन मेरे सतगुर सेवा सार कर

रहाओ गुण गोविंद नित गावी यह अवगुण कटन हार बिन हर नाम न सुख होए कर डिठे विस्तार सहजे सिफती रत्या पवजल उतरे पार तीर्थ वर्त लस संजमा पाइये साधु तूर लूक कमा वह किस्ते जा वेख सदा हदूर थान थनंतर रव रहया प्रभ मेरा भरपूर सच पातशाही अमर सच सच्चे सच्चा थान सच्ची कुदरत धारियन सच सिरज्योन जहान नानक जपिय सच नाम हो सदा सदा कुर्बान श्री राग महला पंजवां उद्दम कर हर जापना वड भागी धन खाट संत संग हर सिमरना मल जन्म जन्म की काट मन मेरे राम नाम जप जाप मन इच्छे फल पुंच तू सब चुके सोग संताप रहाओ जिस कारण तन धारिया सो प्रभ डिठा नाल जल थल महियल पूरिया प्रभ अपनी नदर निहाल मन तन निर्मल होया लागी साच प्रीत चरण भजे ए पार ब्रह्म के सब जप तप तिन ही कीत जवाहर रतन जवेहर माणिका अमृत हर का नाओ सुख सहज आनंद रस जन नानक हर गुण गाओ श्री राग महला पंजवां सोई सासत सौन सोए जित जपिए हर नाओ चरण कमल गुर धन दिया मिलिया निथावे थाओ साची पूंजी सत्संजमो आठ पहर गुण गाओ कर कृपा प्रभ पेटिया मरण न आवण जाओ मेरे मन हर भज सदा एक रंग घट घट अंतर

संता संगत मन वसै प्रभ प्रीतम बख्सेंद जिन सेव्या प्रभ अपना सोई राज नरेंद्र अवसर हर जस गुण रमण जित कोट मजन इसनान रसना उचरै गुणवती कोई ना पुजै दान दृष्ट धार मन तन वसै दयाल पुरख मेहरवान जियो पिंड धन तिसदा हो सदा सदा कुरबान मिलिया कदे ना विछुड़ै जो मिलिया करतार दासा के बंधन कटिया साचे सृजनहार भूला मार्ग पायोन गुण अवगुण ना विचार नानक ते शरणागती जे सगल कटा आधार श्री राग महला पंजवां रसना सच्चा सिमरिए मन तन निर्मल होए मात पिता साख अगले तिस बिन अवर न कोए मेहर करे जे अपनी चसा ना विसरै सोए मन मेरे

मानता न पुखते अगली कोई आन मिला वह माए चारे कुंडा पालिया सह बिन अवर ना जाए ते त्यागे अरदास कर जो मेले करतार सतगुर दाता नाम का पूरा जिस भंडार सदा सदा सा लाहिए अंत ना पारा वार पर्वतगार सा लाहिए जिसते चलत अनेक सदा सदा आराध्य एहा मत विशेख मन तन मिठा तिस लगे जिस मस्तक नानक लेख श्री राग महला पांचवा संत जनहो मिल भाइयो सच्चा नाम समाल तोसा बंधो जी अकाय ऐथे ओथे नाल गुर पूरे ते पाईए अपनी नदर निहाल कर्म प्राप्त तिस होवे जिसनो होए दयाल मेरे मन गुर जेवड़े अवर ना कोए दूजा था उन ना को सूझ।

सेवड़ भागी माए गुर दाता समरथ गुर गुर सब मह रहया समाए गुर परमेसर पार ब्रह्म गुर डुबदा ले तराए केत मुख गुर सालाहिय करण कारण समरथ से मथे नहीं चल रहे जिन गुर तारिया हाथ गुर अमृत नाम पी आलिया जन्म मरण का पाथ गुर परमेश्वर सेविया पै भंजन दुख लाथ सतगुर गहर गंभीर है सुख सागर अघखंड जि

पेयड़ सह सेव तू साहुरड़ सुख वस गुर मिल चज अचार सिख तुद कदे ना लगे दुख सभना साहुरै वंजना सब मुक लावण हार नानक धन सोहागणी जिन सह नाल प्यार श्री राग महला पांचवां कर छेवां करण कारण एको ही जिन किया आकार तिसे त्यागो मन मेरे सर्व को आधार गुर के चरण मन मह त्याए छोड़ सगल सियाण पास आठ शब्द लेव लाए रहाओ दुख क्लेश ना पौ व्यापै गुर मंत्र हृदय।

की प्यारी पाहे। सात संगत मन वसै साच हर का नाओ, सेवड भागी नानका जिन मन एहो सुआओ। जिन मन एहो पाओ श्री राग महला पांचवा, सांच हर तन पूज सतगुर छोड़ सगल विकार। जिन तू साज सवारे

तो सगल तू है पसरिया पासार। कहो नानक गुर भरम काटिया सगल ब्रह्म विचार। श्री राग महला पंजवा दुकृत सुकृत मंधे संसार सगलाना। दुहू ते रहत भगत है कोई बिरला जाना। ठाकुर सर्वे समाना क्या कहो सुनो स्वामी तू वड पुरख सुजाना। रहाओ मान अभिमान मंधे सो सेवक नाही। तत समदर्शी संत है कोई कोट मंधाही। कहन कहावन हो कीरत करला कथन कहन ते मुक्ता गुरमुख कोई विरला। गत अविगत किस नदर ना आया संतन की एन नानक दान पाया। श्री राग महला पंजवा घर सतवा तेरे भरोसे प्यारे। मैं लाड लड़ाया भूले चुके बारिक तू हर पिता माया। सुहेला कहन कहावन तेरा बिखम पावन। रहाओ हाओ मान तान करो तेरा हाओ जानो आपा। सभी मद सभे ते बाहर बे सब ते सब ही मद सभे ते बाहर बे मोहताज बापा। पिता हो जानो नाही तेरी कवन जुगता। बंधन मुक्त संत है मेरी राखे ममता। भय किरपाल ठाकुर रहो आवन जाना। गुर मिल नानक पार ब्रह्म पछाणा। श्री राग महला पंजवा घर पहला संत जना मिल पाईया कटड़िया जमकाल। सच्चा साहेब मन बुठा हुआ खस।

पूरब लिखिया पाए सच करता सच करनहार सच साहिब सच टेक सचो सच वखाणिए सचो बुद्ध विवेक सर निरंतर रव रहिया जप नानक जीवै एक श्री राग महला पंजवा गुर परमेश्वर पूज।

तपस्या माया मोह सब चार, मेरे साजन हर हर नाम समाल, साधु संगत मन वसै पूरन होवे काल, रहाओ गुर समरथ अपार गुर वड भागी दर्शन होए, गुर अगोचर निर्मला गुर जेवड अवर ना कोए, गुर करता गुर करणहार गुरमुख सच्ची सोए, गुर ते बाहर किछ नहीं गुर कीता लोड़े सो होए, गुर तीरथ गुर पार जात गुर मनसा पूरन हार, गुर दाता हर नाम दे उधरै सब संसार, गुर समरथ गुर निरंकार गुर ऊंचा अगम अपार, गुर की महिमा अगम है क्या कथे कथन हार, जितड़े फल मन बाची है तितड़े सतगुर पास, पूर्व लिखे पावणे साच नाम दे रास, सतगुर सरणी आया बाहुड़ नहीं विनाश, हर नानक कदे ना विसरो एहो जियो पिंड तेरा सास, श्री राग महला पांचवा संत जनो सुन भाइयो, छूटन साचे नाए गुर के चरण सरेवने, तीरथ हर का नाओ आगे दरगे मनी है, मिले निथावे थाओ भाई रे साची सतगुर सेव, सतगुर तुठे पाईए पूरन अलख भेव, रहाओ सतगुर विट हो वारिया जिन दिता सच नाओ, अंदिन सच सलाहना सच्चे के गुण गाओ, सच खाना सच पहनना सच्चे सच्चा नाओ, सास गिरास ना विसरै सफल मूरत गुर आप, गुर जेवड अवर न देसई आठ पहर तिस जाप, नदर करे ता पाईए सच नाम गुण तास, गुर परमेसर एक है सब मैं रहया समाए, जिनको पूर्व लिखिया से नाम ते आए नानक गुर।

कोई जैसो सायर में लिए तेल ना पूजा भेरोए कीमत के नैना पाइया सब सुन सुन आखे सोए पीर पैकामर सालक साधक सोहदे सौर शहीद शेख मुसाय शेख मसाइक काजी मुल्ला दर दरवेश रसीद बरकत तनखो अगली पढ़ दे रहन दरूद पुछ ना साजे पुछ ना ठाहे।

है वैसे ही भगत सच्ची अरदास पत स्यो लेखा ने बड़े राम नाम पर गास ऊंचा ऊंचो आखिए कहो ना देखिया जाए जह देखा तह एक तू सतगुरु दिया दिखाए जोत निरंतर जानिए नानक सहज सुभाए श्री राग महला पहला मछली जाल ना जानिया सर खारा असगात सियानी सोहनी क्यों कीतो वेसाह कीते कारण पाकड़ी काल ना टले सिराह पाई रे यो सिर जानो काल जो मछी त्यो मानसा।

विकार हो तिनके बलिहारण दर सचे सचियार सी चाने जियो सी चाने जियो ओ पंखिया जाली बदिक हाथ गुर राखे से उबरे होर फाते चोगे साथ बिन नावे चुन सुटिए कोए ना संगी साथ सचो सचा आखिए सच्चे सच्चा थान जिन्नी सच्चा मन्या तिन मन सच ध्यान मन मुख सुचे जानिए गुरमुख जिना ज्ञान सात गोरे अगै अरदास कर साजन दे मिलाए साजन मिलिए सुख पाया जम दूत मुए बिख खाए नावे अंदर हो वसा नाओ वसै मन आए बाज गुरु बर गुबार है बिन शब्द बूझ ना पाए गुरमति पर गास होए सच रह लिवलाए।

बचे पोथिया ना बुझे विचार अनको मति दे चले माया का व्यापार कथनी झूठी जग पवै रहनी शब्द सोसार केते पंडित जोत की बेदा करे विचार वाद विरोध सलाहने वादे आवन जान बिन गुर कर्म ना छुटसी कहे सुन कहे कहे सुने आख बखान सब गुणवंती आखिए मैं गुण नाही कोए हर वर नार सुहावनी मैं पावे प्रभ सोए नानक शब्द मिलावड़ा नावे छोड़ा होए श्री राग महला पहला जप तप संजम साधी है तीरथ कीचे वास पुन दान चंगी आईया बिन साचे क्या तास जेहा राधे तेहा लुणे बिन गुण जन्म विनाश मुंधे गुण दासी सुख होए अवगण त्याग समाइये गुरमत पूरा सोए रहाओ बिन राशि वा पारिया तके कुंडाचार मूल ना बुझे अपना वस

रतन विचार वसल है घर अपने चले कार सार वन जा रहा स्यो वणज कर गुरमुख ब्रह्म विचार संता संगत पाइये जे मेले मेलनहार मिलिया होए ना बिछुड़े जिसे अंतर जोत अपार सच्चे आसन सच रह सच्चे प्रेम प्यार जिन्नी आप पछाणिया घर मह महल सुथाए सच्चे सेती रत्या सचो पल्ले पाए त्रिपवन सो प्रभ जानिए साचो साचे नाए सातन खरी सुहावनी जिन पिर जाता सांग महली महल बुलाइए सो पिर रावे रंग सच सुहागन सा पली फिर मोही गुण संग भूली भूली थल चढ़ा थल चढ़ डूगर जाओ बन मह भूली जे

हर जियो कृपा करो गुर मिलो या नानक हर तन पले जियो महाज महला चौथा मधुसूदन मेरे मन तन पुराना ओ हर बिन दूजा वरना जाना कोई सज्जन संत मिले वडभागी मैं हर प्रभु प्यारा दसे जियो हो मन तन खोजी पाल पलाई क्यों प्यारा प्रीतम मिले मेरी माई मिले सत संगत खोज दसाई विच संगत हर प्रभु वसे जियो मेरा प्यारा प्रीतम सतगुरु ख्वाला अम्बारक दीन करो प्रतपाला मेरा मात पिता गुर सतगुरु पूरा गुर जल मिल कमल वेखे जियो मैं बिन गुरु देखे नींदन आवे मेरे मन तन वेदन गुर विरों लगावे हर हर दया करो गुर मिलो जन नानक गुर मिल रहसे जियो माच महला चौथा हर गुण पढ़िए हर गुण गुणिए हर हर नाम कथा नित सुनिए मिल सत संगत हर गुण गाए जग पौ जल दुतर तरिए जियो आओ सखी हर मेला करेहा मेरा प्रीतम का मैं देव स्नेहा मेरा मित्र सखा सो प्रीतम पाए मैं दसे हर नर हरिए जियो मेरी वेदन हर गुर पूरा जाने और रह न सका मैं नाम विखाने मैं उकत मंत्र दीजे गुरपुरे मैं हर हर नाम उधरिए जियो हर हम चातरक दीन सतगुरु सुनाई हर हर नाम उदमुख पाई हर जल निद हम जल के मीने जन नानक जल बिन मरिए जियो माज महला चौथा हर जन संत मिलो मेरे पाई मेरा हर प्रभु दसे मैं भुख लगाई मेरी श्रद्धा पूर जग जीवन दाते मिल हर दर्शन मन पीजे जियो मिल सत संगत बोली हर बाणी हर हर कथा मेरे मन पाणी हर हर अमृत हर मन भावे मिल सतगुर अमृत पीजे जियो बड़ भागी हर संगत पावे भागहीन परम चोटा खावे बिन भागा सतसंग न लभे सतसंग न लभे बिन संगत मैल परीजे जियो मैं आए मिलो जग जीवन प्यारे हर हर नाम दया मन तारे गुरमत नाम मीठा मन पाया जन नानक।

सो गुर मिले महसिल कहना। प्रेम भगत जिसके मन लागे गुण गावे, अंदर ने तो जागी बाँ पकड़े ते स्वामी मिले जिसके मस्तक लेना। चरण कमल भगता मन बुठे, बिन परमेश्वर सले मुठे। सांझना की तूड़ नित बाशे, नाम सचे का गहना। ऊट वैत हर हर गाये, जिस सिमरत वर न चल पाइये। नानक को प्रभु हुए दयाला, तेरा कीता सहना। राग माच अष्टपतियां, महला पहला कर पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, शब्द गाए हुक्म सुभाए। सच्ची दरगाह मैल बुलाए, सच्चे दीन दयाल मेरे साहिबा। सच्चे मन पते आवणिया, ओ वारी जियो वारी शब्द सुहावणिया। अमृत नाम सदा सुख दाता, गुरमति मन वसावणिया। राहो ना को मेरा हो किसे तेरा, साचा ठाकुर त्रै गुण मेरा। हमें कर कर जाए कनेरी, कर अवगुण पशु तावणिया। हुक्म पछाने सो हर गुण वखाने, गुर के शब्द नाम निशाने। सबना का दर लेखा सज्जे, छूट से नाम सुहावणिया। मन कबूला ठौर न पाए, जमदर बद्दा चोटा खाए। भी नावे को संग न साथी, मुक्ते नाम ते आवणिया। साक्त कूड़े सच न पावे, दुबदा बादा आवे जाए। लिखा मेट लिखा लिख न मेटे कोई, गुरमुख मुक्त करावणिया। पेर दे पेर जातो नाही, झूठ विछुनी रोवे ताही। अवगुण मुठी मैल न पाए, अवगुण गुण बखशावणिया। पेड़े जिन जाता प्यारा, गुरमुख बुझे तत् विचारा। आवण जाना ठाकर हाय, सच्चे नाम सुवावणिया। गुरमुख बुझे कत कहावे, सच्चे ठाकर सच उपावे। नानक सच कहे बेनती, सच मिले गुण गावणिया। माच महला तीजा कर पहला, कर्म होवे सतगुरु मिलाए। सेवा सुत शब्द चित लाए, हमें मार सदा सुख पाया। माया मोह चुकावणिया, ओ वारी जो वारी सतगुरु ते बलिहारणिया। गुरमति प्रगास हुआ जी, अंदन हर गुण गावणिया। रहो तन मन खोजे तन नाव पाए, तावत राखे ठाक रहाए। गुर की वाणी अंदन गावे, सहजे भगत करावणिया। इस काहे अंदर वस

चंदन सदा रहे रंगराता दर सचे सो जी पावनिया पापन की सार न जाने दूजे लागे परम पलाने ज्ञानी अंधा मग न जाने फिर फिर आउन जाउनिया गुर सेवा ते सदा सुख पाया होमे मेरा ठाक राया गुरसाखी मिटिया देरा बजर कपाट खला बनिया होमे मार मन वसाया गुरचने सदा चित लाया गुर कृपा ते मंत्र निर्मल निर्मल नाम ते आवणिया जीवन मन सब तुदे ताई जिस बख्शे तिस ते वडियाई नानक नाम ते आए सदा तू जमन मन सवारणिया माज महला तीजा मेरा प्रभ निर्मल गम पारा बिन तकड़ी तोले संसारा गुरमुख होवे सोई बुझे गुण के सुनी सवामणिया हो वारी जियो वारी हर का नाम सावणिया जो सच लागे से अंदन जागे तर सच्चे सोभा पावणिया रहो आप सुने थे आपे वेखे जिसको जिसनु नजर करे सोई जन लिखे आपे लाए लय सो लागे गुरमुख सच कमावणिया जिस आप लाए सो किते हथ पाए पूर्व लिखिया सो मेटना ना जाए जिन सतगुरु मिलिया सेवड पागी पूरे कर्म लावणिया पेड़े धन अंदन सुते कंस सवारी अवगन मुती अंदन सदा फिरे बलाती बिन फिर नींद ना पावनिया पेड़े सुख दाता जाता हमें मार गुर शब्द प्रसादा से स्वामी सदा फिर रावे सच श्रृंगार बनावनिया लख चौरासी जी पाए जिसनु नद करे तिस गुर मिलाए चलो काट सदा जन निर्मल दर सच्चे नाम सुहावणिया लेखा मांगे ता किन दिए सुख नाही हुन तुए तिए आपे बख्श ले प्रभ सच आपे बख्श मिलावणिया आप करे ते आप कराए पूरे गुर के शब्द मिलाए नानक नाम मिले वड्याई आपे मेल मिलावणिया माज महला तीजा एको आप रे प्रसन्ना गुरमुख सीखे ता ए मन पिना तृष्णा तज सहज सुख पाया एको मन वसावणिया हो वारी जियो हाँ वारी जो वारी एक क्यों चित ला बनिया एक क्यों चित ला बनिया सहज सुख पाया एक मन बसाने वारी जो वारी जग फूला तै आप गुरमती ए जग फूला तै आप भुलाया एक विसाल दूजे लभाया अंग सदा सिरे परम भूला फैलावे दुख पावणिया जो जो रंग राते करम ताते गुस्से बाते जुगचारे जाते जिसनु आव दे वड़ियाई हर के नाम समावणिया माया मोए हर चेते नाही जम पर बंदा दुख सहाई अन्ना बोला किस नजर नावे मन मुख पाप बचावणिया एक रंग राते जो तुदु आप ले लाए पाए भगत नजर नावे मन मुख पाप बचावणिया एक रंग राते जो तुद आप ले लाए पाए भगत तेरे मन पाई सतगुर सेवन सदा सुख दाता सब इच्छा आप पजावणिया हर जियो तेरी सदा सरनाई आपे बख्शे दे वड़ियाई जमकाल सुख नेड़ न आवे जो हर हर नाम ध्यावणिया आंड

लाए पूर्ण पूरिया सब आपे गुरमती गुरमत नदरी आवनिया आपे आप निरंजन सोई जन सर जी तन आपे खोई नानक नाम समास तू सदा तू सहजे सच समावनिया माज महला तीजा से सच लागे जोत पाए सदा सच सेवे सह संभाए सच्चे शब्द सदा सलाही सच्चे मेल मिलावनिया हाँ वारी जियो वारी सच सलामनिया सच ध्यान से सच राते सच्चे सच समावनिया रहाओ जा देखा सच सभनी थाई गर प्रसादी मन मसाई तन सच्चा रचना सच राती सच सुन आख बखानिया मखानिया मन समाल सच समानियन एन मन तिथि सभा मन जानी सतगुर से विशदा मन चल नज कर वसा पावनिया करके शब्द रेडे दिखाया माया मोय शब्द जलाया सच्चो सच्चा वेख सलाही गुर शब्द सच पावनिया जो सच राते तन सच्ची लिव लागी हर नाम संभाले सेवन पागी सच्चे शब्द आमलाए सत संगत सच गुण गावनिया लेखा पढ़िए जे लेखे विच होवे ओ अगम गोचर शब्द सद होवे अंदन सच शब्द सलाही होर कोई न कीमत पावनिया पड़ पड़ थक थाके शां तनाई तृष्णा जाले सब न गाई बैख बिहाजे बैख मोह प्यासे कूड़ बोल वेख खां दिख सावनिया गुर प्रसादी इको जाना दूजा मार मन सच समान नानक इको नाम वरते मन अंतर गुर प्रसादी पावनिया माज महला तीजा वन रूप वरते सब तेरे मरमर जमे फिर पवे कनेरे तू इको नेचल अगम पारा गुरमती गुज बजावनिया हाँ वारी जियो वारी नाम नाम मन है वसावनिया तिस रूप न रेखा वर्णन कोई गुरमती आप बजावनिया रहाउ सब एका सब एका ज्योत जाने को जे कोई सतगुर सेवे प्रगट होई गुप्त प्रगटे वरते सरदाई ज्योति ज्योत मिलावनिया पिछना अगन जले संसारा लोभ सब मानो बहुत अहंकारा मर मर जन्मे पत गवाए आपे दलता जन्म गवाए गुर का शब्द को गरला बुझे आप मारे ता तरपम तरपम सूझे फिरो मरे न मरना होवे सहज सच मावनिया माया मह फिर चेतना लाई गुर के शब्द सदा रहे समाए सच सलाए सब कटे अंतर सचो सच समावनिया सच सलाई सदा हजूरे गुर के शब्द रहा पर पूरे गुर प्रसादी सच नदरे आवे सच्चे ही सुख पावनिया सच मन अंदर समाए सदा सच ने चलावे न जाए सच्चे लागे सो मन निर्मल गुरमती सच समावनिया सच सलाही वरन कोई जत सेविया सदा सुख होई नानक नाम रते विचारी सचो सच कमावनिया माज महला तीजा निर्मल शब्द निर्मल

सुखदाता सेवन सुख पायनं गर्मते मन वसावनिया हाँ वारी गाय जियो वारी सुख सह समाध लगावनिया जो हर सेवे से सदा सुख सोए सदा सोहे सुबा सुख सामनिया रहाओ सबको तेरा भगत कहाए से भगत तेरे मन पाए सचमानी दुदेश लाहन रंग राते भगत करावनिया सबको सच्चे हर जियो तेरा गुरमुख मिले ता चुके फेरा जत दावे ता नाए चरचावे तू आपे नाम जपावनिया करमती हर मन वसाया गर्म हर खुग सम हुए गवाया इच्छ्यों मिला लै लागे सद ही हर नाम मन वसावनिया भगत रंग राते सदा तेरे चाए नौनद नाम वस्या मन आए पूरे पाग सत गुर पाया शब्द मेल मिलावनिया तू सदयाल सदा सदाता तू आपे मेले गुरमुख जाता तू आपे देने ना वडाई नाम रते सुख पावनिया सदा सदा साचे तुद चलाही गुरमुख जाता दूजा को नाही एक स्यों मन रहा समाए मन मनिए मन मिलावनिया गुरमुख होवे सो चलाए साचे ठाकर वे परवाहे नानक नाम बसे मन अंतर गुर शब्दी हर मिलावनिया माज महला तीजा तेरे भगत सोए साचे दरबारे गुर के शब्द नाम सवारे सदा आनंद रहे दैराती गुण कह गुणी समावने।

ईश्वर विश्वर नाही कैजे सत समावणया रटे बार कुछ ना है तू कर कर्म देखे जाने सोए आपे करे कराए करता गुरमत आप मलावणया कामण कामण गणमंती हर पाए पै पाए श्रृंगार बनाए सतगर से सदा सुहागण सच उपदेश मावणया सदा विसार तिना ठो नठाओ परम भूले जो इन्ने करताओ हलत पलत निन तिनी दोवे हलत पलत तिनी दोवे ना कोई गवाए दुख दुखे दुख पावे हावनिया लिखद्या लिखद्या कागज मस्त खोई दूजे पाए।

सुख पाए न कोई, कूड़ लिखे तै कूड़ कमावे, जल जावे कूड़ चितला वनिया, गुरमुख सचो सच लिख विचार, लिखे विचार से जन सच्चे पावे मुख द्वार, सच कागद कलम सुम समानी, सच लिख सच मिले वड़े, सच मसमानी मसमानी सच लिख सच समावनिया, मेरा प्रवंतर भी बैठा वेखे, गुर प्रसादी मिले सोई जन लेखे, नानक नाम मिले वड़ियाई, पूरे गुरते पावनिया, माज महला तीजा आत्म राम प्रगास करते होवे, हमे मैं लागी गुर शब्दी होवे, मन निर्मल अंदन भगती रता, भगत करे हर पावनिया, हाँ वारी जियो वारी आ भगत करने वरा, भगत करावनिया तिना भगता, तिन भगत जना को सदा नमस्कार, कीजे आंदन हर गुण गावनिया, रहाऊ आपे करता कारण कराए, जित पावे तित करे लाई, पूरे पागुर सेवा होवे, गुर ते सेवा ते सुख पावनिया, मर मर मर मर जीवे तं कुछ पाए, गुर प्रसादी हर मन वसाई, सदा मुक्त हर मन सदा मुक्त हर मन वसाई, सहजे सहज समावनिया, बहु कर्म कमावे मुक्त न पाए, दे संतर पवे दूजे पाए खुआए, गथा जन्म गवाया कपटी, बिन शब्द दुख पावनिया, तावत राखे ठाकर हाई, गुर प्रसादी परम पद पाए, सतगुर आपे मेल मिलाए, मिल प्रीतम सुख पावनिया, एक कूड़ लागे कूड़ फल पाए, दूजे पाए विरथा जन्म गवाए, आप डुबे सगले कुल डुबे, कूड़ बोल दिख सावनिया, इस तन में मन को गुरमुख देखे, पाई भगत जहां में सुखे, सहज साधक मोण तारी रहे लिवलाए, दिन पीतन में मन ना दिखावनिया, आप कराए करता सोई, होर क्या करे कीता कीते क्या होई, नानक जिस नाम देवे सो लेवे, नामो मन सावनिया, माज महला तीजा इस गुफा में अखट भंडारा, तिस विच वसे हर हर लख पारा, आपे गुप्त प्रगट है आपे गुर शब्दी आप मजा हनिया, हाँ वारी जियो वारी अमृत नाम मन सावनिया, अमृत नाम महारस मीठा, गुरमत अमृत पिया वनिया, रहाउ हमें मार बजर कपाट खुलाया, नाम मूल गुर प्रसादी पाया, बिन शब्द नाम न पाए कोई, गुरमुख मन सामनिया, गुर ज्ञान अंजन सच नेत्री पाया, अंतर चानन ज्ञान अंधेरे अंधेर गवाया, ज्योति ज्योत मिली मन मानिया, हर दर्श बा पावनिया, शरीर शरीर पालन को बार न जाए, नाव न लहे बहुत दिगार, दुख पाए मन मखंदे सूजे नाही, फिर कराए गुरमुख विथ अत पावनिया, गुर प्रसादी सच्चा हर पाए, मन तन वेखे होमे मैल जा मैल जाए, बैस स्थान सदा हर गान गाए, सच्चे शब्द समावनिया, नौदा ठाके ताप चढ़ाए, दसवें निज कर वासा पाए, उथे आनंद शब्द वजे, दह राती गुरमती शब्द समावनिया, बिन शब्द अंतर अनेरा, ना वस लहे ना चूके फेरा, सतगुर हथ कुंजी होर दर खुले ना, गुर पूरे भाग मिलावनिया, गुप्त प्रगत दूसमने ताई, गुर प्रसादी मिल सोजी पाई, नानक नाम सलाई सदा तू गुरमुख मन मसावनिया, माज महला तीजा गुर मिले मिलाए अपे, काल जूहे दुख न संताते, हमें मार बंधन तब तो या बंधन सब तोड़े, गुरमुख शब्द सुहावनिया, ओ वारी जियो वारी हर हर ना सुहावनिया, गुरमुख गावे गुरमुख नाचे, हर चेती चित लामनिया, रहाउ गुरमुख जीवे मरे परवान, आज न सीजे शब्द पिछान, गुरमुख मरे न काल न खाए, गुरमुख सच समावनिया, गुरमुख हर दर सूजा सूबा पाए, गुरमुख विचों आप गवाए, आप तरे कौशलत सगले तारे, गुरमुख जन सवार हनिया, गुरमुख दुख कदे ना लागे, गुरमुख दुख कदे न लगे शरीर, गुरमुख में चुप चुके पीर,
ਗੁਰਮੁਖ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਲਾਗੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਹਿਜ ਮਾਵਣਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾ ਮਿਲੇ ਵਡਿਆਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਸੁਭਾ ਪਾਈ, ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਦਾ ਰਹੇ ਦੈ ਰਾਤੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਕਰਾਵਣਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਆਨੰਦਨ ਸ਼ਬਦੇ ਰਾਤਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਜੁਗ ਚਾਰੀ ਹੈ ਜਾਤਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਸਦਾ ਨਿਰਮਲ, ਸ਼ਬਦੇ ਭਗਤ ਕਰਾਵਣਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਅੰਧਹੰਧਾਰਾ, ਜਿਮਕਾਲ ਗਾਠੇ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰਾ, ਅੰਡਾ ਰੋਗੀ ਬਿਸਤਾ ਕੇ ਕੀੜੇ, ਬਿਸਤਾ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਪਾਵਣਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਾਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦੇ ਮਿੱਠਾ।

न पछाणे मोह व्यापिक सूझना ही गुर सबदी हर पावने वेद पकारे त्रै बद माया मन मख बूझे दूजे पाया त्रै गुण पड़े हर एक न जाने बिन बूझे दुख पावने जात जपावे ता आ मलाए गुरु सबदी सहजादू सह सा दुख चुकाए नानक नाए की सच्ची वड्याई नाम मन सुख पावने माज महला तीजा निर्गुण सरगण आपे सोई तत्त छाने सो पंडित होई आप तरे सगले।

नयम तू आपे सच्चा सिर जनहारा परती परे तरे पंडारा गुरमुख दान ना मिले मन भी जे सहदे समाद लगावनिया आंदन गा गाव पर तेरी तद सुनाई प्रीत मेरी तुद बिन अवरन कोई जाचा गुर प्रसादी तू पावनिया गम गोचर मत नहीं पाई अपनी कृपा करे तू ले मलाई पूरे गुर के शब्द ते आइए शब्द सेव सुख पावनिया हरसना गुणवंती गुण गावे नाम सलाए सच्चे पावे गुरमुख सदा रहे रंग राती मन सच्चे सोभा पावनिया मनमुख कर्म करे अहंकारी जुए जन्म सबा जी हारी अंतर दो महांगवारा फिर आवन जावनिया आपे करता दे वड़िया आपे करता दे वड़ियाई निको आप लैक्स तुर पाई नानक ना पिले मिले पवन जनम गुर शब्दी सुख पावनिया माज महला पंजमा कर पहला

सुसुरा प्रधान सुमस्तक जैसा पाव जियो मन मन मन मंदे प्रव अवगाइया ए रस भोगन पातशाइया मंदा मूह न उपजो तरे सच्ची कारे लग जियो करता मन विसाया जन्मे का फल पाया मन पवंदा कांत हर तेरा थिर थुआ सुहाग जियो अटल पदार्थ पाया पै पंजन की सुनाया लाए अंच नानक तारियन जित जिता जन्म पार जियो सुंगा सतगुर प्रसाद माज महला पंजमा कर तीजा हर जप जपे मन तीरे रहाओ सिमर सिमर गुरदेव मिट गए पै दूरे चरनावे पार ब्रह्म की सिर काहे झूरे चरण से संत साल के सगल मनोरत पूरे घट घट एक वर्तदा जल सल मयल पूरे पाप बिना सुसेरिये पवित्र संतन की तूरे सब छुड़ाई खसम आप हर जप पये जप पये थरूरे करते किया कपास दुष्ट मुए हुए मूरे नानक करता सच नाए हर वेखे सदा हजूरे बारह महाज महला पंजमा घर चौथा इक ओंकार सतगुर प्रसाद कित कर्म के चुड़े कर कृपा मेलो राम चार कुंड दस्तर में थकाई प्रवती साम तेंत दिसे बारीक ते नाम काम जल बरसा कमलाती कमलावती उपजे नाही ठा दाम हर नाम मिले साजने कथ पाइये विश्राम जित कर हर कंत प्रग कांतन प्रगटे पाठ नगर से ग्राम शर्म शिंगाल तबोल रस रसन दे दान दे सब काम प्रस्वामी कत जीवनिया नीत सजन सब जाम नानकी विनंती कर कृपा दीजे नाम हर मेल स्वामी संग पर जिसका निशुल निश्चलताम चेत अगुम गोविंद राधि है होवे अंधकना संत जना मिल पाइये रसना नाम पना जन पाया प्रव्यापना आए तिछे गणा एक खंड तस्विन जीवना व्यथा जन्म जना जल थल मई अल पूरिया रव्या व्यवना सुप्र चेतन आदि कितड़े दुर्गना जिन्नी रव्या सुप्रभु जन का भाग मना हर दस का मन दुच दानक प्यास मना चेत मलाई सो प्रभु तिसके पाए डगाम साख तीन क्यों वाड़िए जिन्ना प्रेम बचो हर साजन पुरख वसार के लगी माया तो पुत्र कुल तन संग तना हर अविनाशी हर अविनाशी।

सर्वविघ्नाः अवर्ण कोई प्रीतम जाने जो लगे तन की जरमन सोए नानक की पर बेनती प्रमिल प्राप्त हुए साख सुहावा ता लगे जन संत पेटे हर सोए हर जिस हर जे

तेरे दर्शन होए प्यास प्रवत मिंदू जाको नहीं नाने की अरदास साड़ सुहंदा तिस लगे जिस मन हर चरण निवास सावन सरती कामनी चरण कमल सो प्यार अंतन दत्ता सच रंग इको नाम आधार बिख्या रंग कुड़ा वड़िया जिसने सब विसार हर अमृत बूंद सुहावनी मन साधु पी मनहार अंतन सत्र संग मौलिया समरथ पुरख पार हर मेलनू नु मन लोचदा कर मिला मनहार इन्नी सखी पर पाया हों तन के सब बलहार नानक जी मया कर सवार नहार साम तेना सुहागनी जिन राम नाम रतार पादो कर्म पुलानिया दूजा लगा हेत लख सिंगर मनाया काज नहीं कीत जदन हे बिनत सीत तवे कह सन प्रेत पक्कड़ चलान दूत जम किसी न देनी पेत छड खड़ो तीखने माए जन लगा हेत हाथ मरोड़े तनक पेसा सा हुआ सेत जैसे अजिहा बीज सोलनी करमा सुंदड़ा खेत नानक सरनांगती चरण भोत प्रेत से पादो नरक न पाइए गुर रखन वाला हेत असम प्रेम मा बड़ा क्यों मिले हर जाए मन तन प्यास मन तन प्यास दर्शन कनी कोई आन मिलावे माए संत सहाई प्रेम के

हरे आत्म राम पसारे मेरे गोविंदा, हरे विखे आप हदूरी जियो, हरे अंतर बाजा पौन है मेरे गोविंदा, हरे आप बजाए त्यो बाजे जियो, हरे अंतर नाम निधान है मेरे गोविंदा, गुर शब्दी हर प्रभ गा जय जियो, आपे शरण पवाईंदा मेरे गोविंदा, हर भगत जना हर आखला जय जियो, मठभागी मल संगती मेरे गोविंदा, जन नानक नाम सिदका जय जियो, गौड़ी माज महला चौथा, मैं हार नाम मैं हर बिरो लगाई जियो, मेरा हार प्रभ मैत मिले सुख पाई जियो, हर प्रभ देख जीवा मेरी माई जियो, मेरा नाम सखार पाई जियो, गुण गावो संत जियो, मेरे हर प्रभ के रे जियो, जप गुरमुख नाम जियो, पाग वडेरे जियो, हर हर नाम जियो, प्राण हर मेरे जियो, फिर बौड़ न पौजन फेरे जियो, क्यों हर प्रभ वेखा मेरा मन तन चाओ जियो, हर मेलो संत जियो, मन लगा पाओ जियो, गुर शब्दी पाइए हर प्रीत मराओ जियो, बटभागी जपनाओ जियो, मेरे मन तन वडड़ी गोविंद प्रभु आसा जियो, हर मेलो संत जीवो गोविंद प्रभु पासा जियो, सतगुर मत नाम सदा प्रगासा जियो, जन नानक पूरे अड़ी मन आसा जियो, गौड़ी माज महला चौथा, मेरा बिरही नाम मिले ता जीवा जियो, मन अंदर अमृत गुरमत हर दीवा जियो, मन हर रंग रतड़ा हार रास सदा पीवा जियो, हर पायड़ा मन जीवा जियो, मेरा मन तन प्रेम लगा हर बाण जियो, मेरा प्रीतम मित्र हर सुपुरख सुजान जियो, गुर मेले संत हार सुगड़ सुजान जियो, हौ नाम बिटो कुरबान जियो, हौ हर हर सज्जन हर मीत दसाई जियो, हर दास संत जी हर खोज पवाई जियो, सतगुर तुठड़ा दसे हर रपाई जियो, हर नामे नाम समाई जियो, मैं वेदन प्रेम हर बिरह लगाई जियो, गौर शरदा पूर अमृत मुख पाई जियो, हर हो दयाल हर नाम त्याई जियो, जन नानक हर रस पाई जियो, माज महला पंजवा राग गौड़ी ग्वारी री चौप दे, एक ओंकार सतगुर प्रसाद कहने पद कुशलोत मेरे भाई, क्यों मैं पाइए हर राम सहाई राओ, कुशल न ग्रह मेरी सब माया, उचे मंदर सुंदर छाया, झूठे लालच जन्म गवाया, फास्ती कोड़े देख वेगासा, लस्कर जोड़े खे बनवासा, गल जेबड़ी हो मैं के फासा, राज कमावे दे दस्तारी, माने रंग भोग बहु नारी, ज्यों नरपत सुपने बेखारी, एक कुशल मोको सतगुरु बताया, जो हर जो किस करे सो हर क्या भगता पाया, जन नानक हो मैं मार सुमाया, कहने बिद कुशलो तो मेरे भाई, क्यों पाई है हर राम सहाई राहु, दूजा गौड़ी गुआरी री महला पंजवा, क्यों भ्रमी है भ्रम किसका होई, जा जल थल मही अदर व्यास होई, गुरमुख उभरे मन मुख पद खोई, जिस राख आप राम दयारा, तिस नहीं दूजा को पहुंचन हारा राहु, सब मैं वरता एक अनंता, ता तू सुख सो होए अचिंता, ओ सब किस जाने जो वरतंता, मनमुख मुए जिन दूजी प्यासा, बहु जोनी पवह तोर किरत लख्यासा, जैसा बीजा तैसा खासा, देख दर्श मन भया विगासा, सब नदरी आया ब्रह्म प्रगासा, जन नानक की हर पूर्ण आसा, गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा, कई जन्म पै कीट पतंगा, कई जन्म का जमीन करंगा, कई जन्म परंखी सर्प होयो, कई जन्म है ब्रबिरख जोयो, मिल जगदीश मिलन की बरिया, श्रंकाले दे संजरिया रहाओ, कई जन्म सैल गिर करया, कई जन्म गर्भिर खरिया, कई जन्म सा करो पाया, लख जरासी जोन परमाया, साध संग पयो जन्म प्राप्त, कर सेवा पाज हर हर गुरमत, त्याग मान झूठ महान, जीवित मरहे दरगह प्रवान, जो कश हुआ आसो तुझते होग, अवर न दूजा करना जोग, ता मिलिया जल है मलाए, कौ नानक हर हर गुण गाए, गौड़ी ग्वारी महला पंजवा, कर्म पूम मैं भुवन नाम, पूर्ण होए तुम्हारा काम, फल पावे मिटे जमतरासु, नित गावे हर हर गुण दा जास, हर हर नाम अंतर उरतार, सिंगर कार्ज ले सवार राव, अपने प्रभ से हो सावधान, ता तू दरगह पावे मान, उक्त सियाण प्रसगल त्याग, संजना की चरणी लाग, सर्व जिया सर्व जी है जाकी जो हाथ, जाके हाथ कदे न बिछड़े सब के साथ, वो पाप छूड़ गाओ जिसकी ओट, निमख माहे होवे तेरी छोट, सदा निकट कर जिसनो जान,
प्रभु की आज्ञा सत कर मान, गुर के बचन मिटावो।

नानक जप जाप गौड़ी गुआरी री महला पंजवा गुर का बचन सदा बनासी गुर का बचन कटी जम फासी गुर का बचन जी कह संग गुर कै बचन रचै राम कै रंग जो गुर दिया सो मन कै काम संत का किया सतकर मान रहाओ गुर का बचन टल छेद गुर का बचन कटि ब्रह्म भेद गुर का बचन कतह न जाई गुर का बचन हर के गुण गाय गुर का बचन जी कै साथ गुर का बचन नाथ को नाथ गुर का बचन नरक न पवै गुर का बचन अमृत रस न अमृत रवे गुर का बचन प्रगट संसार गुर का बचन न आवे हार गुर जिस जन होई आप कृपाल नानक सतगुर सदा दयाल गौड़ी गुआरी री महला पंजवा जिन कीता माटी ते रतन गर्भ मह राखिया जिन कर जतन जिन दीनी सुब बबड़ियाई तिस प्रभ कौ आठ पहर ते आई रमैया रेन साध जन पावो गुर मिल अपना खसम ते आवो राव जिन कीता मूढ़ ते भगता जिन कीता बेसुर ते सुरता जिस प्रसाद नवे निध पाई सुब्रमंते विसरत नाही जिन दिया न थावे कौ थान जिन दिया न माने कौ मान जिन कीनी सब पूर्ण आसा सिमरौ जिन रहन सास गिरासा जिस प्रसाद माया सिलक काटी गुर प्रसाद अमृत बिखाटी कौ नानक इसते किश नाही रख नारे कौशलाही गौड़ी गारी री महला पंजवा तिसकी शरण नाही पौ सोग उसते बाहर कछु न होग सजी सियाणप बल बुद्ध विकारू दास अपने की रखन हारू जप मन मेरे राम रंग राम राम रंग कर बाहर सिर सत्संग राऊ तिसकी टेक मन मैं राख गुर का शब्द अमृत राख अबर जतन कहो कौन काज कर कृपा रख आप लाज क्या मनुख कहो क्या जोर क्या झूठा माया का सब सोर कर्ण करावन हार स्वामी सगल कटा के अंतर जामी सर्व सुखा सुख साचा ही गुरु उपदेश मन महले जा को राम नाम निबलागी कौ नानक सोधन बड़ बागी गौड़ी गुआरी री महला पंजवा सुन हर कथा उतारी मैल महाप्रीत भय सुख सैल बड़े भाग पाया साध संग पर पार ब्रह्म सला गौरंग हर हर जा नाम जपत जन तारियो अगन सागर गौर पार उतारियो रहाऊ कार कीर्तन मन शीतल भई जन्म जन्म के गिल विख गए सर्व निधान पेखे मन माही अब ढूंढन काहे को जाए प्रभ अपने जब होहे भय दयाल पूरण होई सेवक काल बंधन काट किए अपने दास सिमर सिमर सिमर गुणदास एको मन एको सब ठाए पूर्ण पूर रहे हो सब जाए गुर पूरै सब परम चुकाया हार सिमरत नानक सुख पाया गौड़ी गुआरी री महला पंजवा अगले मुए से पाछे परे जो ब्रे से बंद लक खरे जे तंदे मह हुए लपटाए उन ते दुगण अड़ी उन माए ओ वेला कश जीत न आवे बिन सजाए ताहू लपटावे राव आशा बंदी मूर्ख दे काम क्रोध में लपटे लपटे उसने सर ऊपर ठांडो धर्म राय मीठी कर कर बिख्या खाए हों बंदो हों साधु बैर हमरी पूम कौन काल पैर ओहो हो पंडित हों खरा चतुर सियाणा करणे हार न बुझे बेगाना अपनी गात मित जा आपे जाने क्या को कहे क्या आख बखाने जित जित लावे तित तित लगना अपना भला सब काहू मंगना सब कुछ तेरा तू करणे हारू अंत नाही कुछ पारा वारू दास अपने कहो की जा दीजे दान कबहू ना बिसरे नानक नाम गौड़ी गुआरी री महला पंजवा आनक जतन नहीं हो तिटारा बहुत सियाणप अगल पारा हर की सेवा निर्मल रेत प्रभ की दरगाह सुबह सेत मन मेरे गह और नाम कहुला लगे तो जन लागे ताता चोला राऊ ज्यों बोहित पैसा गरमाही अंधकार दीपक दीपाही अग्न सीत काला हस दूख नाम जपत मन होवत सुख उतर जाए तेरे मन की प्यास पूर्ण होवे सगली आस डोले नाही तुमरा चीत अमृत नाम जपन गुरमुख मीत नाम औखद सोई जन पावे कर कृपा जिसे आप दिवावे हर हर नाम जा कह हृदय मां बसै दुख दर्द तह नानक नसै गौड़ी गुआरी री महला पंजवा बहुत अरब बहुत दर्ब कर मन ना गन अनक रूप देख न पतियाना पुत्र गलत्र उर्जो जान मेरी ओ बिनसा हो बस मैं ठेरी बिन हर भजन देखो बिल लाते त्रिग तन माया संग बराते राव ज्यों बेगारी कह सिर दी जय धाम
ਹੋਏ ਖਸਮੈ ਕਹਿ ਗ੍ਰਹਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਕ ਸਹਾਮ ਜਾਂ ਸੁਪਨੇ ਹੋਈ ਬੈਸਤ ਰਾਜਾ ਨੇਤਰ ਪਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਿਰਾਰਥ ਕਾਜਾ ਜਾਂ ਰਾਖਾ ਖੇਤ ਉੱਪਰ ਪਰਾਈ ਖੇਤ ਖਸਮ ਕਾ ਰਾਖਾ ਉੱਠ ਜਾਏ ਉਸ ਖੇਤ ਕਾਰਨ ਰਾਖਾ ਕੜੇ ਤਿਸ ਕਹਿ ਪਾਲ ਲੈ ਕਛੂ ਨਾ ਪੜੇ ਜਿਸ ਕਾ ਰਾਜ ਤਿਸੇ ਕਾ ਸੁਪਨਾ ਜਨ ਮਾਇਆ ਦੀਨੀ ਤਿਨ ਲਾਈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਆਪ ਬਿਨਾ ਹੀ ਆਪ ਕਰੀ ਰਾਸ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭਾ ਗਰਦਾਸ ਗੌੜੀ ਗਵਾਰੀ ਨੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਬਹੁ ਰੰਗ ਮਾਇਆ

मन त्रिपतान सो सुख मोको संत बतावो तृष्णा बूजै मन त्रिपतावो रहाउ आस पवन हस्त सवारी चुआ चंदन से सुंदर नारी नट नाटक अखारे गाया ताम है मन संतोष न पाया ताकत सभा मंडल दलीचे सगल मेवे सुंदर बगाई बागीचे अखेड़ बिरत राजन की लीला मन न सुहेला पर पंच हिला कर कृपा संतन सच कहया सर्व सुख आनंद लहया साध संग हर कीर्तन गाइया कौ नानक बड़ भागी पाईए जा कह हर मन सोई सुहेला प्रभु कृपा दे साध संग मेला रहाउ दूजा गौड़ी गुआरे री महला पंजवा प्राणी जाने ही मन ए तन मेरा बोर बोर आहू लपटेरा पुत्र गलतर ग्रस्त का फासा हो न पाइय राम के दासा कवन सुबिद जित राम गुण गाय कवन सुमत जित तरै ही माय रहाउ जो पलाई सुभ्र जाने साच कह सुबिख समान जाने नाही जीत आ रहा रही बले वा साख संसार जो हला हल सो पी वह बौरा अमृत नाम जाने कर कौरा सा संक नाई नेर लख चौरासी परमता फेर एक है जाल फहाए पंखी रास रास भोग करें बोरंगी कौ नानक जिस पाई कृपालु गुरपुर ताके काटे जम जाल गौड़ी गारी मल पंजवा तौ कृपा ते मार्ग पाई है प्रभु कृपा ते नाम ते आई है प्रभु कृपा ते बंधन छूटे प्रभु कृ तौ कृपा ते हुम टूटे तुम का लावो तौ लग सेबू हम ते कछु न होवा दे हुआ दे गौरा देव राउ तुद पावे ता गावा बाणी तुद पावे ता सच बखाणी तुद पावे ता सतगुर मया सर्व सुखा प्रभु तेरी दया जो तुद पावे सो निर्मल कर्मा जो तुद पावे सो सतर्मा सर्व निदान गुण तुम ही पास तू साहिब सेव करदास मन तन निर्मल होए हर रंग सर्व सुखा पावो सत्संग नाम तेरे रहे मन राता ए कल्याण नानक कर जाता गौड़ी गुआरी महला पंजवा आन रसा जेते है जा जेते ता जाखे निमकन दृष्णा तेरी लाथे हार रासन का तू चाख साधु चाखत रहे हुए बिस्माद अमृत रसना पियो प्यारी एह रास राती होए तृपतारी रहाओ रे जेवे तू राम गुण गाओ निमख निमख हर हर हर त्याओ आन न सुनिय कतू जाइया सात संगत बड़ बागी पाइय आठ पैर जेवे अराधु पार ब्रह्म ठाकुर गाधु यहाँ हुआ सदा सुहेली हर गुण गाव दृशन अमोली बनस्पत मौली फल फुल पेडे एह रस राती बौर न छोड़े आन न रस कस लवे न लाई गौ नानक गुर पय है सहाई गौड़ी ग्वारे री महल पंजवा मन मंदर तन साजी बारु ऐस ही मदे बस अपारु ऐस ही पीतर सुनियत असाह कवन वपारी जा काऊहा बेसाह नाम रतन जो रतन को दोहारी अमृत भोजन करे हारी रहाउ मन तन अर्पी सेव करी जय कवन सुजुगत जत कार पी जय पाए लगो तज मेरा तेरा कवन सो जान जो सौदा जो रह महल शाह का किन बिद बावे कवन सुबिद जत पीतर बुलावे तू वड शाह जाके कोट बन जारे कवन सुदाता ली संचारे गोहित गोहित निज कर पाया मूल रतन साच दिखलाया हर कृपा जब मेले रा मेले सा कौ नानकुर कैबे सा गौड़ी गुआर महला पंजवा गुआरेरी रैण दिन सराहे करंगा प्रभ को जाने सदी संगा ठाकुर नाम की ओन वर्तन द्रिप्त गावन हर कै दर्शन हर रसंग राती मन तन हरे गुरपुरे की सरणी परे राव चरण कमल आत्म आधार ही निहारे अज्ञाकारी को बण जी को व्यवहारी अवर न जाने बिन निरंकारी हर कसोक दूं ते मुक्ते सदा लिपते को जोग हर जुगते जिस है सब मैं सब तेरे ते पार ब्रह्म का ध्यान तरते संतन की महिमा कवन बखानो अगाध बोध किस्मत नहीं जानो पार ब्रह्म मोहे कृपा की जय तूर संतन की नानक दी जय गौड़ी गुआरी महला पंजवा तू मेरा सखा तू ही मेरा मीत तू मेरा प्रीतम तुम संहित तू मेरी पात तू है मेरा गहना तुझ बिन निमख न जाई रहना तू मेरे लालन तू मेरे प्राण तू मेरे साहब तू मेरे खानू राव जाओ तुम राखो ते भी रहना जो तू कहो सोई मोहि करना जय पेखो ता तुम बसना निरपव नाम जपो तेरा रसना तू मेरी नाव निर तू भंडार रंग रसा तू मने आधार तू मेरी शोभा तुम संग रचिया तू मेरी ओट तू है मेरा तकिया मन तान अंतर तु ही ते आया मर्म तुम्हारा गुर ते पाया सतगुर ते दृढ़िया टेक नानक दास हर हर हर टेक गौड़ी गुआरे री महला पंजवा व्यापत हर कसोग विस्तारू व्यापत सुरग नरक अवतार व्यापत तन निरतन भेख शोभा मूल व्यापी व्याधि व्यापस लोभा माया
व्यापत बहु प्रकारी संत जी वह प्रभु तुम्हारी राहु व्यापत अंग बुद्ध का माता व्यापत पुत्र कल तृग संग राता व्यापत हस्त घोड़े यार बस्ता व्यापत रूप जोबन मद मस्ता व्यापत भूमर अंकर रंगा व्यापत गीतनाद सुन संगा व्यापत सेज महल सिंगार व्यापांच दूत व्यापत अंधियार व्यापत कर्म करे हों फासा व्यापत ग्रस्त व्यापत उदासा चार व्यवहार व्यापत जात सब किश व्यापत बिन रंग रात बिन हर रंग रात संतन के बंधन का टहर राई ताको का व्यापै माई कौ नानक जन तूर संत पाई ताक निकटना वै माई रहा गौड़ी गुआरी री महला पंजवा नैणो नींद पर दृष्ट बिकार श्रवण सुवण सोए सुन निंद विचार नैनो नींद पर दृष्ट बिकार श्रवण सोए सुन निंद विचार रसना सोए लोभ मीठ साध मन सोया माया विस्माद इस ग्रह में कोई जागत रहे साबत वस्तु अपनी लह रहाउ सगल से ली अपने रस माती ग्रह अपने की खबर न जाती मुसनहार पंच बटवारी सुने नगर परे ठगारी उन तेरा खे बाप न माई उन तेरा खे मीत न पाई दस दर्ब सियान बनावे रहते सत्संग ओए दुष्ट बस होते कर कृपा मुझे सरंग पान संत संतन तूर सर्व निदान पूंजी साबत सतगुर संग साबत पूंजी सतगुर संग नानक जागे पावरम कै रंग सो जागे जस प्राप कृपाल ए पूंजी साबत तन माल रहो दूजा गौड़ी गुआरी री महला पंजवा जा कै वस्त खान सुल्तान जा कै वस्त सगल जान जा कै किया सब किस होए दिस दे बाहर नाही कोई कहो बेनंती अपने सतगुर पाही काज तुहारे दिस निबाहर रहाओ जब ते ऊच जा का दरबार सगल भगत जा का नाम आधार सर्वेंद्र अंतर पूर्ण तानी जा के सुबह गड़गड़ बानी जय समृत दुख डीराट है जय समृत जम किशु न कहे जय समृत होए हो तसु कह हरि जय समृत डूबन पान डूबत पान तरे संत सभा कहो सदा जयकारु हर हर नाम जानु प्राणधार कहो नानक मेरी सुनी अरदास संत प्रसाद मोह कहो नाम निवास गौड़ी गुआरी री महला पंजवा सतगुर दर्शन अगन निवारी सतगुर पेट दम मारी सतगुर संग नाही मन डोले अमृत बाणी गुरमुख बोले सब जग साचा जा सच महराते शीतल शांत गुर ते प्रभ जाते राउ संत प्रसाद जपे हर नाउ संत प्रसाद हर कीर्तन गाऊ संत प्रसाद सगल दुख मिटे संत प्रसाद बंधन ते छुटे संत कृपा ते मिटे मोह परम साध रीण मजन सब धर्म साध कृपाल दयाल गोविंद साधा मैं अमरी जंद कृपा निध कृपाल ते आवो साध संगत का तां बैठन पावो मोहे निर्गुण कहो प्रभु की नी दया साध संग नानक नाम लया गौड़ी गुआरी री महला पंजवा साध संग जप्यो भगवंत केवल नाम दियो गुरमंत पाज अभमान ताज अभमान भय निरवैर आठ पैर पूज गुर पैर अब मत बिनसी दुष्ट बगानी जब ते सुनिया हर जस कानी रहाओ सहज सुख आनंद निधान रखन हार रख ले निदान दुख दर्द बिनसे पै परम आवन जान रखे कर करम पेखै बोलै सुनै सब आप सदा संग ता कौ मन जाप संत प्रसाद भयो प्रगास पूरे गुर पूर रहे एक है गुण तास कहत पवित्र सुनत पनीत गुण गोविंद गावे नित नीत कहो नानक जा कहो हे कृपाल तिस जन की सब पूर्ण काल गौड़ी गुआरी री महला पंजवा बंधन तोड़ बुलावे राम मन मह लागे साज त्यान मिटे कलेस होए सुखी होए रही है ऐसा दाता सब सतगुर कही है सुख दाता जे नाम दर्ज पावे कर कृपा ते सत्संग मिलावे ऐसा दाता सतगुर कही है रहा सो सुख दाता जे नाम ज पावे कर कृपा ते सत्संग मिलावे रहाउ जिस होई दयाल तिसे आप मिलावे सर्व निदान गुरु ते पावे आप त्याग मिटे आवन जान साध का संग पावरम पछाणा जान ऊपर प्रभ भय दयाल जन की टेक एक गोपाल एका लिव एको मन पाओ सर्व निदान जा कै हर नाओ पार ब्रह्म सो लागे प्रीत निर्मल करनी साची रीत गुरपूरा मेटिया अंधियारा नानक प्रभ प्रपारा गौड़ी गुआरी री महला पंजवा जिस मन वसै तरै जन सोए जा कै कर्म प्राप्त होए दुख रोग कछ पाओ ना ब्यापे अमृत नाम हृदय हर जापे पार ब्रह्म परमेश्वर त्याई है गुर पूरे ते मत पाई रहाउ करण करावन हर दयालु जी जानत सगले प्रतपाल आगम अगोचर सदा बेअंता सिमर मन पूरे गुरमंता जाकी सेवा सर्वनदान जाकी से पूजा
प्रभ जाकी सेवा सर्वनदान प्रभ की पूजा पाई है मान जाकी टाल मृति जाय सदा सदा हर की गुण गाय कर कृपा प्रभ अंतर जामी सुख निदान हर लख स्वामी जी जंत तेरी शरणाई नानक नाम मिले बड़ियाई गौड़ी गौरी री महला पंजवा जी जुगत जा कह हाथ सो सिमरो नाथ को नाथ प्रभ चित आई सब दुख जाई पै सब बिन सहर कह नाई बिन हर पौ काही का मन हर विसरत काही सुख जाने रहाउ जिन तारी बहु तरण अगास जाकी जोत जी प्रगास जाकी बख्शना मिट कोय सिमर सिमर प्रभ ने चो होए आठ पहर सिमरो प्रभ नाम अनक तीर्थ मजन स्नान पावरम की सरणी पाही कोट कलंक खेन मैं मिट जाई बेमोताज पूरा बादशाह प्रभ सेवक साचा बेसाह गौर पूरे राखे दे हाथ नानक पावरम सम्राट गौड़ी महल गौरी री महला पंजवा गौर प्रसाद नाम मन लागा जन्म जन्म का सोया जागा अमृत गौण उचरै प्रभु बाणी पूरे गुर ते की समत प्राणी पूरे गुर की समत प्राणी प्रभ सिमरत कुशल सब पाई कर बाहर सुख सहज सुभाई रहाउ सोई पछाता जने उपाया कर कृपा प्रभु आप मिलाया बां बकर लीनो कर अपना कर हर हर कथा सदा जप जपनार मंत्र तंत्र औखद पुना चरण हर हर नाम मंत्र तंत्र औखद पुना चारु हर हर नाम जी प्राण आधार साचा दान पायो हर रंग दुतार तरे साध के संग सुख बैसो संत सजन परवार हर तान खट्यो जा का नाय सुमार जिसे प्राप्त तिस गुरदे नानक बिरथा कोई नाही गौड़ी गुआरी री महला पंजवा हास्त पुनीत होए तत्काल बिनस जाय माया जंजाल रसना जप हो राम गुण नीत सुख पावो मेरे पाई मीत लिख लेखन कागज मस बाणी राम नाम हार अमृत बाणी रहाओ ए कार्ज तेरे जाय बेकार सिमरत राम नाही जाम मार धर्म राय के दूत न जो है माया अगन ना माया मगन न कछु अजमो है उदरय आप तरह संसार राम नाम जप एक अंकार आप कमाओ अबराप देश राम नाम हृदय प्रवेश जा कै माथे निदान सोई पुरख जपै भगवान आठ पैर हर हर गुण गाऊ कहो नानक कहो तिस बल जाऊ गौड़ी राग गौड़ी गुआरी री महला पंजवा चौप दे दो उपदेख ओंकार सतगुरु प्रसाद सोई जो प्रायो सोई अपना जो तज छोड़न तिस मद रचना कहो गुसाई मिलिया के जो विवर्जित तिस नेह राउ झूठ बात सा सच कर जाती सत हो वन मान लगे न राती बावे मार्ग टेढ़ा चरणा सीधा छूढ़ पूठा बुरना दोहां सिरिया का खसम प्रभ सोई जिस मेले नानक सो मुक्ता होई गौड़ी गुआरी री महला पंजवा

दीन दयाल दमोदर राया जियो, कोट जना कर सेव लगाया जियो, भगत बछल तेरा बैदर खाया जियो, पूरन सबनी जाए जियो, क्यों पेखा प्रीतम।

स्वामी मेरे जियो पतित पवित लगे गुर के पैरे जियो भ्रम पौ काट किए निर्वैरे जियो गुर मन की आस पुराई जियो जिन नाव पाया सो तनवंता जियो जिन प्रभ त्याया सो सो भावंता जियो जिस साधु संगत तिस सब सुकरणी।

दिनस सास सास चितारे जियो संत देव संदेशा पै चरणारे जियो तुद बिन कित बिद तरिय जियो संग तुम्हारे मैं करे आनंदा जियो वाण तिन त्रिपवन सुख परमानंदा जियो से सुहावी मन बिग संदा जियो पेख दर्शन हो सुख लही जियो चरण पखार करी नित सेवा जियो पूजा अर्चा बंदन देवा जियो दासन दास नाम जप लेवा जियो बिनो ठाकुर पह कही जियो इच्छ पुन्नी मेरी मन तन हरिया जियो दर्शन पेखत सब दुख पर हरिया जियो हर हर नाम जपे जप तरिया जियो एहो अजर नानक सुख सही है जियो गौड़ी माज महला पंजवा सुन सुन साजन मन मित प्यारे जियो मन तन तेरा एह जियो पीवारे जियो विसर नहीं प्रभ प्राण अधारे जियो सदा तेरी शरणाई जियो जिस मिलिए मन जीवे पाई जियो गुर प्रसादी सो हर हर पाई जियो सब किस प्रभ का प्रभ किया जाई जियो प्रभ को सद बल जाई जियो एहो निदान जपै वड भागी जियो नाम निरंजन एक लिव लागी जियो गुरपुरा पाया सब दुख मिटाया जियो आठ हैर गुण गाया जियो रतन पदार्थ हर नाम तुम्हारा जियो तू सच्चा साहो भगत बन जारा जियो हर तन रास सच वा पारा जियो जन नानक सद बलिहारा जियो रा गौड़ी माज महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद तू मेरा बहुमान करते तू मेरा बहुमान जोर तुम्हारे सुख वसा सच शब्द निशान रहाओ सबे गल्ला जातिया सुन के चुप किया कद ही सुरत ना लधिया माया मोहड़िया दे बुझारित सारता से सखी से अखी।

साध मुठी एक अध नाय रसियड़ा का विरली जाए मुठी बुठी भगत सचे दर सोह दे अनद करे दिन रात रंग रते परमेश्वर जन नानक तिन बल जात। गौड़ी महला पंजवा माझ दुख भंजन तेरा नाम जी दुख भंजन तेरा नाम आठ पहर आराध्य पूरन सत गुर ज्ञान रहाओ जित घट वसै।

मान त्यागो, काम क्रोध संगत दुर्जन की, ताते अहिनस भागो रहाओ, सुख दुख दोनों सम कर जाने, और मान अपमाना हरख सोगते रह, अतीता तिन जगता तपछाना, उस्तत निंदा दो त्यागै खोजै पद।

रचना राम बनाई, एक बिनसे एक अस्थिर माने, अचरज लख्यो ना जाई रहाओ। काम क्रोध मोह बस प्राणी हर मूरत बिसराई, झूठा तन साचा कर मान्यो, जो सुपना रहनाई, जो दिसे सो सग

प्राणी को हर जस मन नहीं आवे, अहनस मगन रहे माया में, कहो कैसे गुण गावे रहाओ। पूत मीत माया ममता स्यो एह विद आप बंधावे, मृग तृष्णा जो झूठो यो जग देख तास उठतावे। भुगत मुकत का कारण स्वामी मूढ़ ताहे बिसरावे, जन नानक कोटन मैं को भजन राम को पावे। गौड़ी महला नौवा साधो एह मन गहो ना जाई, चंचल तृष्णा संग बस्त है या ते थिर ना रहाई रहाओ। कठन क्रोध काट ही के पीतर जे सुध सब बिसराई, रतन ज्ञान सब को हिर लीना तास्यो कछ न बसाई। जोगी जतन करत सब हारे।

को मानस जन्म अमोलक पायो बैठा काहे गवावो रहाओ पतित पुनीत दीन बंध हर सरन ताहे तुम आबो गज को त्रास मिट्यो जह सिमरत तुम काहे बिसरावो तज अभिमान मोह माया फुन भजन राम चित लावो नानक कहत मुक्त पंथ एहो गुरमुख होए तुम पावो गौड़ी महला नौवा को माई भूल्यो मन समझावे वेद पुराण साध मग सुन कर निमखना हर गुण गावे रहाओ दुर्लभ देह पाए मानस की व्यथा जन्म सिरावे माया मोह महासंकट बनता स्यो रुच उपजावे अंतर बाहर सदा संग प्रभ तास्यो नेहो ना लावे नानक मुक्त ताहे तुम मानो हो जेह काट राम समावे गौड़ी महला नौमा साधो राम सरन बिसरामा वेद पुराण पढ़े कोई गुण सिम सिमरे हर को नामा रहाओ लोभ मोह माया ममता फुन औ बिखियन की सेवा हरख सोग पर सह जह नाहन सो मूरत है देवा सुर्ग नरक अमृत बिख एहे सुर्ग नरक अमृत बिख ए सब त्यो कंचन अर पैसा उस्तत निंदा ए सम जाके लोभ मोहे फुन तैसा दुख सुख ए बादे जेह नाहन तेह तुम जानो ज्ञानी नानक मुक्त ताहे तुम मानो एह बिद को जो प्राणी गौड़ी महला नौवा मान रे कहा पयो तै बौरा अहनस औद कटै अहनस औद कटै नहीं जाने पयो लोभ संग हौरा रहाओ जो तन तै अपनो कर मान्यो अर सुंदर ग्रह नारी इनमें कछु तेरो रेब नाहन देखो सोच बिचारी रतन जन्म अपनो है हार्यो गोविंद गत नहीं जानी निमख न लीन पयो चरणन स्यो बिरथा औद सिरानी कहो नानक सोई नर सुखिया राम नाम गुन गावे और सगल जग माया मोहिया निरपै पद नहीं पावे गौड़ी महला नौवा नर अचेत पाप ते डर रे दीन दयाल सगल पै भंजन सरन ताहे तुम पर रे रहाओ वेद पुराण जास गुण गावत ताको नाम ही है मो तर रे पावन नाम जगत में हर को सिमर सिमर कसमल सब हर रे मानस देहे बहुर नह पावे कछु पाओ मुक्त का कर रे नानक कहत गाए करुणा में भव सागर कह पार उतर रे राग गौड़ी अष्टपदिया महला पहला गौड़ी ग्वारे री एक ओंकार सत नाम करता पुरख गुर प्रसाद निद

संत मन मान्या ज्ञान अंजन गुरु शब्द पछान्या राओ एक सुख मान्या सहज मिलाया निर्मल बाणी भरम चुकाया लाल पए सूहा रंग माया नदर पई बिख ठाक रहाया उलट गई जीवत मर जागया शब्द रवे मन हर स्यो लाग्या रस संग्रह बिख पर हर त्यागया पाए बसे जम का पौ पाग्या साध रहे बादम अहंकारा चित हर स्यो राता हुक्म अपारा जात रहे पत के आचारा दृष्ट पई सुख आत्म तारा तुझ बिन कोई ना देखो मीत किस देवो किस देवो चीत किस पूछो किस लागो पाए किस उपदेश रहा लिव लाए गुर सेवी गुर लागो पाए भगत करी राचो हर नाए सिख्या दीख्या भोजन पाओ हुकम संजोगी निज कर जाओ गर्भ गतं सुख आत्म ध्याना जोत पई ज्योति माहे समाना लिखत मिटे नहीं शब्द निशाना करता करना करता जाना नह पंडित नह चतुर सियाना नह भूलो नह भरम भुलाना कथो न कथनी हुकम पछाना नान गुरमत सहज समाना गौड़ी ग्वारेरी महला पहला मन कुंचर काया उद्यान गुर अंकस सच शब्द निशान राज द्वारे सोब सो मान चतुराई नह चीनिया जाए बिन मारे क्यों कीमत पाए रहाओ कर्म है अमृत तस्कर ले नाकार न कोई करे राखे आप वड्याई देई नील अनिल अघन इक ठाई जल निवरी गुर बुझ बुझाई मन दे लिया रहस गुण गाई जैसा घर बाहर सो तैसा बैस गुफा मह आखो कैसा सागर डूगर नर पौ ऐसा मुए को कहो मारे कौन निडरे को कैसा डर कवन शब्द पछाने तीने पौन जिन कहिया तिन कहन बखान्या जिन बुझिया तिन सहज पछान्या देख विचार मेरा मन मान्या कीरत सूरत मुक्त एक नाई तही निरंजन रहया समाई निज कर व्याप रहया निज थाई उस्तत करे केते मुन प्रीत तन मन सूचे साच सोचीत नानक हर भज नीता नीत गौड़ी ग्वारे।

सोच तै विकार, मन भूलो सिरे आवे भार, मन माने हरे कंकार। मन भूलो माया घर जाए, काम विरुद्धो रह ना ठाए, हर पज प्राणी रसन रसाए, गैवर हैवर कंचन सुत नारी।

सुख सहजे जप हृदय मुरार नदर करेता मेल मिलाए गुण संग्रह अवगण शब्द जलाए गुरमुख नाम पदार्थ पाए बिन नावे सब दुख निवास मनमुख मूड माया चितवास गुरमुख ज्ञान तुर कर्म लिख्यास मन चंचल तावत फुन तावे साचे सूचे मैल ना पावे नानक गुरमुख हर गुण गावे गौड़ी गुआरे री महला पहला हम मैं करत्या नह सुख होए मन मत झूठी सच्चा सोए सगल बिगूते पावे दोए सुख कमावे तुर लिखिया होए ऐसा जग देखिया जुआरी सब सुख मागे नाम विसारी रहाओ अदिष्ट दिसे ता कहे आ जाए बिन देखे कहना व्यर्थ आ जाए गुरमुख दिसे सहज सुभाए सेवा सुरत एक लेव लाए सुख मांगत दुख आगल होए सगल विकारी हार परोए एक बिना झूठे मुक्त ना होए कर कर करता देखे सोए कृष्णा अगन शब्द बुझाए दूजा परम सहज सुभाए गुरमति नाम हृदय वसाए साची बाणी हर गुण गाए तन मह साचो गुरमुख पाओ नाम बिना नाही निज ठाओ प्रेम परायण प्रीतम राओ नदर करेता बुझे नाओ माया मोह सर्व जंजाला मनमुख कुचील कुचित बिकराला सतगुर सेवे चूके जंजाला अमृत नाम सदा सुख नाला गुरमुख बुझे एक लिव लाए निज कर वासे साथ समाए जमण मरणा ठाक रहाए पूरे गुरते एह मत पाए कथनी कथो न आवे और गुर पुछ देखा नाही दर होर दुख सुख पाणे तिसर जाए नानक नीच कह लिव लाए गौड़ी महला पहला दूजी माया जगत चितवास काम क्रोध अहंकार विनाश दूजा कौन कहा नहीं कोई सब मह एक निरंजन सोई रहाओ दूजी दुर्मत आखे दोए आवे जाए मर दूजा होए तरण गगन नह देखो दोए नारी पुरख सबाई लोए रव सस दे

गुर के शब्द हुकम पछाण सगल रूप वर्ण मन माही कहो नानक एको साला ही गौड़ी महला पहला अध्यात्म कर्म करे ता साचा मुक्त भेद क्या जाने काचा ऐसा जोगी जुगत विचार पंच मार साच उर तार रहाओ जिसके अंतर साच वसावे जोग जुगत की कीमत पावे रव सस एको ग्रह उद्यान करनी कीरत कर्म समान है एक शब्द एक भिख्या मागे ज्ञान ध्यान जुगत सच जागे तै रच रह न बाहर जाए कीमत कौन रह लिव लाए आपे मेले परम चुकाए गुर प्रसाद परम पद पाए गुर की से

खिमा गही ब्रत सील संतोखं रोग ना व्यापै ना जम दोखं मुक्त पय प्रभ रूप न रेखं जोगी कौ जय कैसा डर होए रूख बिरख ग्रह बाहर सोए।

मन पावै काल जाल ब्रह्म अग्नि जारे जरा मरण गत गर्भ निवारे आप करे पितरी ने तारे सतगुर सेवे सो जोगी होए पैर अच रह सो निर्भव होए जैसा सेवे तैसो होए नर नह केवल निर्भव जैसा सेवे जैसा सेवे तैसो होए नर नह केवल निर्भव नाओ अनाथ है नाथ करे बल जाओ पुनरप जन्म नाही गुण गाओ अंतर बाहरे को जाने गुर के शब्दे आप पछाणे साचे शब्द दर निशाने शब्द मरे तिस निज घर वासा आवै ना जावे चुके आसा गुर के शब्द कमल पर गासा जो दिसे सो आस निरासा काम क्रोध बिख भूख प्यासा नानक बिरले मिले उदासा गौड़ी महला पहला ऐसो दास मिले सुख होई दुख विसरे पावे सच सोई दर्शन देख पई मत पूरी अठ साठ मजन चरन है धूरी रहाओ नेत्र संतोख एक लिव तारा जेहवा सूची हर रस सारा सच करनी अभ अंतर सेवा मंत्र तास्या अलक पेवा जह जह देखो तह तह साचा बिन बुझे जगरत जग काचा गुर समझावे सोझी होई गुरमुख विरला बुझे कोई कर कृपा राखो रखवाले बिन बुझे पशु भय बेताले गुर कहया अवर ना गुर कहया अवर नहीं दूजा किस कहो देख करो अन पूजा संत हेत प्रभ त्रिभवन तारे आत्म चीने सो तत बिचारे साच हृदय सच प्रेम निवास प्रणवत नानक हम ताके दास गौड़ी महला पहला ब्रह्म गर्भ किया नहीं जान्या वेद की विपत पड़ी पछुतान्या जह प्रभ सिमरे तही मन मान्या ऐसा गर्भ बुरा संसार है जिस गुर मिले तिस गर्भ निवार रहाओ बाल राजा माया अहंकारी जगन करे बहुपार अफारी बिन गुर पूछे जाए प्यारी हरि चंद दान करे जस लेवे बिन गुर अंत न पाए अपेवे आप पुलाए आपे मत देवे दुर्मत हरनाखस दुराचारी प्रभ नारायण गर्भ प्रहारी प्रहलाद उधारे कृपा तारी पूलो रावण मुग्ध अचेत लूटी लंका शीस समेत गर्भ गया बिन सतगुर हेत सहस बाहो मद कीट महखासा हरण आखस ले न

दैत संघार संत ने सारे आपे सतगुर शब्द बिचारे दूजे पाए दैत संघारे गुरमुख साच भगत निस्तारे बूढ़ा दुर्योधन पत खोई राम ना जान्या करता सोई जन को दुख पचे दुख होई जन मेजे गुर शब्द ना जान्या क्यों सुख पावे भरम भुलान्या एक तिल भूले बहुर पछुतान्या कंस केस चांडूर ना कोई राम ना चीन्या अपनी पत खोई बिन जगदीश ना राखे कोई बिन गुर गर्व ना मेटिया जाए गुरमत धर्म धीरज हर नाए नानक नाम मिले गुण गाए गौड़ी महला पहला चोआ चंदन अंक चढ़ावो पाठ पटंबर पहरे हढ़ावो बिन हर नाम कहा सुख पावो क्या पहरो क्या ओढ़ दिखावो बिन जगदीश कहा सुख पावो रहाओ कानी कुंडल गल मोतियन की माला लाल निहाली फूल गुलाला बिन जगदीश कहा सुख पाला नैन सलोनी सुंदर नारी खोड़ सिगार करे अत प्यारी बिन जगदीश भजे नित खुआरी दर घर महला सेत सुखाली अहनस फूल बिछावे माली बिन हर नाम सो देह दुखाली हैवर गैवर ने जे वाजे लस्कर ने बखवासी पाजे बिन

ऐसा राम भगत जन होई हर गुण गाए मिले मल धोई रहा ऊंधो कवल सगल संसार है दुर्मत अगम जगत पर जा रहे सो ओ उभरे गुर शब्द विचार है प्रिंग पतंग कुंचर अरमीना मृग मृग मरे सह अपना कीना कृष्णा राच तत नहीं दीना काम चित कामन हित कारी क्रोध विनाश सगल विकारी पत मत कोहे नाम विसारी पर कर चीत मन मुख डोलाए गल जेवरी तंद लपटाए गुरमुख छूट हर गुण गाए ज्यो तन विधवा पर कौ दे काम दाम चित परवस सही बिन फिर त्रिपत न कभू होई पढ़ पढ़ पोथी सिमृत पाठा वेद पुराण पढ़े सुन थाटा बिन रस राते मन बहु नाटा ज्यो चात्रिक जल प्रेम प्यासा ज्यो मीना जल माहे उलासा नानक हर रस पी तृप्ता सा गौड़ी महला पहला हटकर मरे न लेखे पावे बेस करे बहु भस्म लगावे नाम विसार बहुर पछुतावे तू मन हर जियो तू मन सुख नाम विसार सहे जम दुख राओ चोआ चंदन अगर कपूर माया मगन परम

सेवे घाटे घाट तिसको वाहो वाहो जे वाट दिखावे तिसको वाहो वाहो जे शब्द सुनावे तिसको वाहो वाहो जे मेल मिलावे वाहो वाहो तिसको जिसका एहो जियो गुर सबदी मत अमृत पियो नाम बढ़ाई तुद भाणे दियो नाम बिना क्यों जीवा माए आंदिन जपत रहो तेरी शरण आए नानक नाम रते पत पाए गौड़ी महला पहला हम मैं करत पेखी नहीं जानिया गुरमुख भगत बिरले मन मान्या हो करत नहीं सच पाईए हम मैं जाए परम पद पाईए रहाओ हम मैं कर राजे बहुतावे हम मैं खपे जन्म मर आवे हम मैं निवरे गुर शब्द विचारे चंचल मत त्यागे पंच संघारे अंतर साच सहज कर आवे राजन जान परम गत पावे सच करनी गुर परम चुकावे निरपौ कै कर ताड़ी लावे हाव हाव कर मरना क्या पावे पूरा गुर पेटे सो झगर चुकावे जेती है तेती क्यों नाही गुरमुख ज्ञान भेट गुण गाही हाँ मैं बंधन बंध पवावे नानक राम भगत सुख पावे गौड़ी महला पहला प्रथमे ब्रह्मा काल घर आया ब्रह्म कमल पयाल ना पाया आज्ञा नहीं लीनी परम भुलाया जो

ओ अविनाशी अलख अपेवा, सुल्तान खान बादशाह नहीं रहना, नामो भूले जम का दुख सहना, मैं तर नाम ज्यो राखो रहना, चौधरी राजे नहीं किसे मुकाम, सह मरे संचे माया दाम, मैं तन दीजे हर अमृत नाम, रयत महर मुकदम सिक दारे, निचल कोई न दिसे संतारे, अप्रयो काल कूड़ सिर मारे, निचल एक सच्चा सच सोई, जिन कर साजी तिन्हे सब गोई, ओह गुरमुख जापे सां पत होई, काजी सेख पेख फकीरा, बड़े कहावे हो मैं तन पीरा, काल ना छोड़े बिन सत गुर।

ब्रह्मणी इन वेद कौन कौन नहीं तरिया, हर जस संत भगत निस्तरिया निस्तारिया। इन वेद कौन कौन नहीं तारिया, हर जस संत भगत निस्तारिया। प्रभ पाए हम अवर ना पारिया, साच महल गुर अलख लखाया। नेचल महल नहीं छाया माया, साच संतोखे भरम चुकाया। जिनके मन वसया सच सोई, तिनकी संगत गुरमुख होई। नानक साच नाम मल खोई, गौड़ी महला पहला। राम नाम चेतरा पैजा का, उपजंप दर्शन की जय ताका। राम ना जपो अपाग तुम्हारा, जुग जुग दाता प्रभ राम हमारा। रहाओ गुरमत राम जपै जान पूरा, तित कट अनहत बाजे तूरा। जो जन राम भगत हर प्यार, से प्रभ राखे कृपा तार। जिनके हृदय हर हर सोई, तिनका दस परस सुख होई। सर्व जिया मह एको रवे, मनमुख अहंकारी फिर जोनी पवे। सो बूझे जो सतगुर पाए, हों मैं मारे गुर सब दे पाए। अर्ध उर्ध की संध क्यों जाने, गुरमुख संध मिले मन माने। हम पापी निर्गुण को गुण करिए, प्रभ होए दयाल नानक जन थरिए। सोलह अष्टपदिया ग्वारे री गौड़ी किया, गौड़ी बैरागण महला पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, ज्यो गाई को गोयली राखे कर। सारा अहनस पाले राखे लेहे, राख लेहे आत्म सुख तारा। इत उत राखो दीन दयाला, तौ शरणागत नदर निहाला। रहाओ जह देखो तह रव रहे, रख रख राखण हारा। तू दाता भुगता तू है, तू प्राण अधारा। किरत पया अध उर।

पताला गुरमत नाम नाम विसरै सहजे पत पाइये अंतर शब्द निदान है मिले आप गवाइये नदर करे प्रभ अपनी गुण अंक समावे नानक मेल।

बिचारा जे लख कर्म कमावे बिन गुर अंधियारा रहाओ। अंधे अकली बाहरे क्या तेन स्यो कही है बिन गुर।

रोता। आवत को जाता कहे, जाते को आया, पर की को अपनी कहे, अपनों नहीं पाया।

खीर विरोलिए माखन नहीं रीसे इस पद जो अर्थ आए ले सो गुरु हमारा नानक चीने आपको सो अपर अपारा सब आपे आप वर्तदा आपे परमाया गुर कृपा ते बूझिए सब ब्रह्म समाया रा गौड़ी ग्वारेरी महला तीजा अष्टपदिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद मन का सूतक दूजा पाओ पर में भूले आवो जाओ मन मुख सूतक कभे ना जाए जिस चर शब्द ना पीजे हर कह नाए रहाओ सबो सूतक जेता मोह आकार मर मर जमे वारो वार सूतक अगन पौने पानी माहे सूतक भोजन जेता किस खाहे सूतक कर्म ना पूजा होए नाम रते मन निर्मल होए सतगुर सेविए सूतक जाए मरे ना जन्मे काल ना खाए सासत सिमृत सोध देखो कोए।

तारा गुरमुख शोभा साच द्वारा पंडित हर पढ़त ज हो विकारा गुरमुख पौ जल उतर हो पारा रहाओ गुरमुख विच हो मैं जाए गुरमुख मैल न लागे आए गुरमुख नाम वसै मन आए गुरमुख कर्म धर्म सच होई गुरमुख अहंकार जलाए दोई गुरमुख नाम रते सुख होई अपना मन पर बोधो बूझो सोई लोग समझावो सुने न कोई गुरमुख समझो सदा सुख होई गुरमुख डंफ बहुत चतुराई जो किछ कमावे सो थाए ना पाई आवे जावे ठौर ना काई मनमुख कर्म करे बहुत।

में वड्याई सायर की पुत्री बेदार गवाई नानक बिन नावे झूठी चतुराई गौड़ी महला तीजा इस जुग का धर्म पढ़ो तुम भाई पूरे गुर सब सोजी पाई ऐथे अगे हर नाम सखाई राम पढ़ो मन करो विचार गुर प्रसादी मैल उतार रहाओ वाद विरोध ना पाया जाए मन तन फीका दूजे पाए गुर के शब्द सच लिवलाए हों मैं मैलायो संसारा नित तीरथ नावे ना जाए अहंकारा बिन गुर पेटे जम करे खुआरा सो जन साचा जे हों मैं मारे गुर के शब्द पंच संघारे आप तरह सगले कुल तारे माया मोहे नट बाजी पाई मन मुख अंध रहे लपटाई गुरमुख अलपत रहे लिवलाई बहुते भेख करे भेख धारी अंतर तिसना फिरे अहंकारी आप ना चीने बाजी हारी कापड़ पहरे करे चतुराई माया मोहे अत भरम भुलाई बिन गुर सेवे बहुत दुख पाई नाम रते सदा बैरागी ग्रही अंतर साच लिवलागी नानक सतगुर सेवे से वड़ भागी गौड़ी महला तीजा ब्रह्मा मूल वेद अभ्यासा तिसते उपजे देव मोहे प्यासा तिसते उपजे देव मोह प्यासा त्रै गुण परमे नाही निज घर वासा हम हर राखे सतगुर मिलाया आन दिन भगत हर नाम दृढ़ाया रहाओ त्रै गुण बाणी ब्रह्म जंजाला पड़े वाद वखाणे सिर मारे जम काला तत ना जाने बन्हे पंड पराला मानमुख ज्ञान कुमार पाए हर नाम बिसारिया बहु कर्म दृढ़ाए पव जल डूबे दूजे पाए माया का मोहताज पंडित कहावे बिख्या राता बहुत दुख पावे जम का गल जेवड़ा नित काल संतावे गुरमुख जम काल नेड़ ना आवे हों मैं दूजा शब्द जलावे ना मेरा ते हर गुण गावे माया दासी भगता की कार कमावे चरणी लागे ता महल पावे साधी निर्मल सहज समावे हर कथा सुने से धनवंत दिसे जुग माही तिन को सब निभे आन दिन पूज कराही सहजे गुण रभे साचे मन माही पूरे सतगुर शब्द सुनाया त्रै गुण मेटे चौथे चित लाया नानक हों मैं मार ब्रह्म मिलाया गौड़ी महला तीजा

खाए। मनमुख खादे दूजे पाए रहाओ, गुरमुख प्राणी अपराधी सीधे, गुर कै शब्द अंतर सहज रीधे। मेरा प्रभ पाया गुर कै शब्द सीधे, सतगुर मेले प्रभ आप मिलाए। मेरे प्रभ साचे कै मन पाए, हर गुण गावे सहज सुभाए। बिन गुर साचे परम भुलाए, मनमुख अंधे सदा बिख खाए। जम डंड सहे सदा दुख पाए, जमुआना जो है हर की सरनाई। हौ मैं मार सच लिवलाई, सदा रहै हर नाम लिवलाई। सतगुर सेवे से जन निर्मल, पवित्र मन।

जाए, बंधन ना टूटे, मुक्त ना पाए। मुक्त दाता सतगुरु जुग माहे, गुरमुख प्राणी परम गवाए। सहज तुन उपजे हर लेवलाए, रहाउ त्रै गुण काले की। सिर कारा नाम ना चेते हे उपावन हारा, मर जम्हे फिर वारो वारा। अंधे गुरु ते परम ना जाई, मूल छोड़ लागे दूजे भाई। बिख का माता बिख माहे समाई, माया कर मूल जंत्र परम आए। हर जियो विसरिया दूजे पाए, जिस नदर करे सो परम गत पाए। अंतर साच बाहर साच वरताए, साच ना छपे जे को रखे छपाए। ज्ञानी बूझे सहज सुभाए, गुरमुख साच रहे आले बलाए। हों मैं माया शब्द जलाए, मेरा प्रभ साचा मेल मिलाए। सतगुर दाता शब्द सुनाए, धावत राखे ठाक रहाए। पूरे गुर ते सोची पाए, आपे करता श्रेष्ठ सिर जिन गोई। तिस बिन दूजा अवर ना कोई, नानक गुरमुख बूझे कोई। गौड़ी महला तीजा, नाम अमोलक गुरमुख पावे। नामो सेवे नाम सहज समावे, अमृत नाम रसना नित गावे। जिसनों कृपा करे सो हर रस पावे। अंदिन हृदय जपो जगदीसा, गुरमुख पावो परम पद सुखा। रहाओ हृदय सुख भया परगास, गुरमुख गावे सच गुण तास। दासन दास नित होवे दास, ग्रह कुटुंब मैं सदा उदास। जीवन मुक्त गुरमुख को होई, परम पदार्थ पावे सोई। त्रै गुण मेटे निर्मल होई, सहजे साच मिले प्रभ सोई। मोह कुटुंब स्यो प्रीत न होए, जा हृदय वस्या सच सोए। गुरमुख मन बेद्या स्थिर होए, हुकम पछाण बूझे सच सोए। तू करता मैं अवर ना कोए, तुझ सेवी तुझ ते पत होए। कृपा करे गावा प्रभ सोए, नाम रतन सब जग महलोए। गुरमुख बाणी मीठी लागी, अंतर बिगसे अंदन लिव लागी। सहजे सच मिलिया परसादी, सतगुर पाया पूरे वड भागी। हों मैं ममता दुर्मत दुख नास, जब हृदय राम नाम गुण तास। गुरमुख बुद्ध प्रगति प्रभ जास, जब हृदय रव्या चरण निवास। जिस नाम दे सोई जन पाए, गुरमुख मेले आप गवाए। हृदय साचा नाम बसाए, नानक सहजे साथ समाए। गौड़ी महला तीजा, मन ही मन सवारिया पै सहज सुभाए। शब्द मन रंग्या ले बलाए, निज घर वस्या प्रभ की रजाए। सतगुर सेविया जाए अभिमान, गोविंद पाइय गुणी निधान। रहाओ मन बैरागी, जा शब्द भौ खाए। मेरा प्रभ निर्मला सब तै रहया समाए। गुर कृपा ते मिले मिलाए, हर दासन को दास सुख पाए। मेरा हर प्रभ इन विद पाया जाए, हर हर कृपा ते राम गुण गाए। त्रिग बहु जीवन जित हर नाम ना लगे प्यार। त्रिग सेज सुखाली कामन मोह गुबार। तिन सफल जन्म जिन नाम आधार। त्रिग त्रिग ग्रह कुटुंब जित हर प्रीत ना होए। सोई हमारा मीत जो हर गुण गावे सोए। हर नाम बिना मैं अवर ना कोए, सतगुर ते हम गत पत पाई। हर नाम ते आया दुख सगल मिटाई, सदानंद हर नाम लिव लाई। गुर मिलिए हम को शरीर सुध पई। हों मैं तृष्णा सब अगन बुझई, बिनसे क्रोध खिमा गह लई। हर आपे कृपा करे नाम देवे, गुरमुख रतन को विरला लेवे। नानक गुण गावे हर

जो गुरमुख पाए चलन, आप छोड़ सेवा करन, जीवत मुए रहन, जिसदा पिंड पुराण है तिस की सिरकार, ओह क्यों मनह विसारिये, हर रखिये हृदय धार, नाम मिलिये पत पाइये, नाम मनिये सुख होए, सतगुर ते नाम पाइये कर्म मिले प्रभ सोए, सतगुर ते जो मोह फेरे, ओए भ्रम दे ना टिकान, धरत असमान ना चलई विच वेष्टा पए पचान, एहो जग भरम भुलाया मोठ गौली पाए, जिन्ना सतगुर भेटिया तिन नेड़ ना पिटै माए, सतगुर सेवन सो सोहणे हौ मैं मैल गवाए, शब्द रते से निर्मले चले सतगुर पाए, हर प्रभ दाता एक तू तू आपे बख्श मिलाए, जन नानक शरणागति ज्यो पावे तिवै छडाए, रा गौड़ी पूर्वी महला चौथा कर हले, ओंकार सतगुर प्रसाद कर हले, मन परदेसिया क्यों मिलिए हर माए, गुर भाग पूरे पाया गल मिलिया प्यारा आए, मन कर हला सतगुर पुरख त्याए, रहो मन कर हला विचारिया हर राम नाम से आए, जिथे लेखा मंगिए हर आपे ले छाए, मन कर हला अत निर्मला मल लागी हों मैं आए, पर तख फिर कर नाल प्यारा बिछड़ चोटा खाए, मन कर हला मेरे प्रीतमा हर हृदय पाल पाल आए, उपाय के तैना लभई गुर हृदय हर देखाए, मन कर हला मेरे प्रीतमा दिन रैन हर लिव लाए, घर जाए पावे रंग मली गुर मेले हर मेलाए, मन कर हला तू मेत मन कर हला तू मीत मेरा पाखंड लोभ तजाए, पाखंड लोभी मारिए जम डांड दे सजाए, मन कर हला मेरे प्राण तू मैल पाखंड भरम गवाए, हर अमृत सर गुरु पूरिया मिल संगति मल लह जाए, मन कर हला मेरे प्यारिया एक गुर की सिख सुनाए, एहो मोह माया पसरिया अंत साथ ना कोई जाए, मन कर हला मेरे साजना हर खर्च लिया पत पाए, हर दरगह तैनाया हर आप लया गल लाए, मन कर हला गुर मन्या गुरमुख कार कमाए, गुर आग्या कर जोदड़ी जन नानक हर मेलाए, गौड़ी महला चौथा मन कर हला विचारिया विचार देख समाल, बन फिर थके बन वासिया फिर गुरमत हृदय निहाल, मन कर हला गुर गोविंद समाल रहाओ, मन कर हला विचारिया मन मुख फाथिया महाजाल, गुरमुख प्राणी मुक्त है हर हर नाम समाल, मन कर हला मेरे प्यारिया सतसंगत सतगुर पाल, सतसंगत लग हर त्याइये हर हर चले तेरे नाल, मन कर हला वड भागिया हर एक नदर निहाल, आप छड़ाए छुट्टिये सतगुर चरण समाल, मन कर हला मेरे प्यारिया विच देही जोत समाल, गुर नौनिद नाम विखालिया हर दात करी दयाल, मन कर हला तू चंचला चतुराई छड़ विकराल, हर हर नाम समाल तू हर मुक्त करे अंत।

मन मंदर मैं दीपक जल्यो जीत हार की सो जी करी तो इस घर की कीमत परी करन करावन सब किसे कै आपे बुद्ध विचार विवेकै दूर ना नेरै सब कै संगा सच सलाहा सच सलाहन नानक हर रंगा गौड़ी महला पंजवा गुर सेवा ते नामे लागा तिसको मिलिया जिस मस्तक भागा जिसके हृदय रव्या सोए मन तन शीतल नह चल होए ऐसा कीर्तन कर मन मेरे इहा उहा जो काम तेरे इहा उहा जो काम तेरे रहाओ जास जपत पव अपदा जाए तावत मनुआ आ बैठाए जास जपत फिर दुख ना लागे जास जपत एह हाँ मैं भागे जास जपत वस्या भे पंचा जास जपत हृदय अमृत संचा जास जपत एह तृष्णा बुझै जास जपत हर दरघै सिजै जास जपत कोट मिटहे अपराध जास जपत हर होवे साध जास जपत मन शीतल होवै जास जपत मल सगली खोवै जास जपत रत्न हर मिलै बहु ना छोड़े हर संग हिलै जास जपत कई बैकुंठ वास जास जपत सुख सहज निवास जास जपत एह अग्न ना पोहत जास जपत एह काल ना जोहत जास जपत तेरा निर्मल माथा जास जपत सगला दुख लाथा जास जपत मुश्किल कछु बन ना बने जास जपत सुन अनहत सुने जास जपत एह निर्मल सोए जास जपत कमल सीधा होए गुर शुभ दृष्ट सब उर गुर शुभ दृष्ट सब ऊपर करी जिसके हृदय मंत्र दे हरी अखंड कीर्तन तेन भोजन चूरा कहो नानक जिस

विश्वास ऐसी दृढ़ता ताके हुए जाको दया मया प्रभ सोए रहाओ साजन दोस्त जाके एक समान है जेता बोलन तेता ज्ञान है जेता सुनना तेता नाम जेता पेखन तेता ध्यान सहजे जागन सहजे सोए सहजे होता जाए सो होए सहज बैराग सहजे ही हसना सहजे चूप सहजे ही जपना सहजे भोजन सहजे पाओ सहजे मिट्यो सगल दूराओ सहजे हुआ साधु संग सहज मिलियो पार ब्राह्मण संग सहजे ग्रह मह सहज उदासी सहजे दुबिदा तन पीना सी जा कहर सहज मन पया आनंद ताको पेट्या परमानंद सहजे अमृत पियो नाम सहजे पीनो जियो को दान सहज कथा मह आत्म रसिया ताके संग अभिनाशी वसिया सहजे आसन अस्थिर पाया सहजे अनहत शब्द बजाया सहजे रुण चुण कार सुहाया ताके कर पार ब्रह्म समाया सहजे जाको परयो कर्मा सहजे गुर पेट्यो सच धर्मा जाके शब्द पया सो जाने नानक दास ताके कुर्बान गौड़ी महला पंजवा प्रथमे गर्भ वास्ते टरिया पुत्र क्लत्र कुटुंब संग जुड़िया भोजन अनेक प्रकार बहु कपरे सर पर गवन कर है गे बपुरे कवन स्थान जो कभू ना टरे कवन शब्द जित दुर्मत हर रहाओ इंद्रपुरी मह सर पर मरना ब्रह्म पुरी नह चल नहीं रहना शिवपुरी का होएगा काला त्रैगुण माया बिंस बिताला गिर तार तरण गगन अर तारे रव सस पवन पावक नीरारे दिन सरैन बत अर भेदा सस सिमृत बिन सह बिन सहेगा बेदा तीरथ देव देहुरा पोथी माला तिलक सोच पाक होती धोती दंडौत प्रसादन भोगा गवन करै गो सगलो लोगा जात वर्ण तुर्क अर हिंदू पशु पंखी अनेक जोन जिंदू सगल पासार दिस पासारा बिंस जाए गो सगल आकारा सहज सिफ्त भगत तत् ज्ञान ज्ञाना सदा आनंद नेचल सच थाना तहा संगत साध गुण रसै अनपो नगर तहा सद वसै तह पौ परमा सोग न चिंता आवन जावन मित न होता तह सदा आनंद अनहत आखारे भगत वसे कीर्तन आधारे पार ब्रह्म का अंत न पार कौन करे ताका विचार कहो नानक जिस कृपा करे निहचल थान साध संग तरे गौड़ी महला पंजवा जो इस मारे सोई सूरा जो इस मारे सोई पूरा जो इस मारे तिसे वड़ियाई जो इस मारे तिसका दुख जाई ऐसा कोई जे दुविधा मार गवावे इसे मार राज जोग कमावे रहाओ जो इस मारे तिस को पौना

सो धनवंता जो इस मारे सो पतिवंता जो इस मारे सोई जति जो इस मारे तिस होवै गति जो इस मारे तिस का आया गनी जो इस मारे सो नहीं चलता नहीं जो इस